5:35 होने को है और आप सुन रहे हैं भोर सुहानी मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। अगला गीत हमने लिया है फिल्म शागिर्द से और इस गीत को भी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की नौवीं तिथि यानी 31 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा अर्पण। श्री राम चरित मानस के अंतर्गत अयोध्या कांड का भाग 39 आप सुनेंगे सुबह 6:44 पर। गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम होगा सुबह 7:10 पर। आज सवेरे कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर।

म्यूजिकल दिल्लगी हम आपके लिए लाएंगे सुबह 8:45 पर। दिल का मेल बॉक्स, ये कार्यक्रम सुना जा सकता है सुबह 10:30 पर। तस्वीर कार्यक्रम में सुबह 11:10 पर आपको जानकारी देंगे झारखंड के देवघर के बारे में।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल में आपके हमारे कलाकार होंगे गीतकार शैलेंद्र। इस कार्यक्रम को हमारे श्रोता सुन सकते हैं 1:10 पर संगीत.com। इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 2:30 पर और मन भवन कार्यक्रम होगा 3:10 पर।

फिल्मी गीतों को सुना जा सकता है शाम 4:10 पर। परिक्रमा कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 4:30 और गाते गुनगुनाते हम आपके लिए लाएंगे शाम 5:10 पर। शाम 5:30 का वक्त रहेगा फोन इन प्रोग्राम का हेलो फार्मर्स। विश्लेषण कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:10 पर। शाम 6:30 पर मार्केट मंत्रा और सुर्खियों में कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:10 पर। सांझ ढले कार्यक्रम होगा शाम 7:25 पर। मधुरिमा कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:10। स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 और स्पॉटलाइट 9:15 पर। पब्लिक स्पीक फोन इन प्रोग्राम रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। विश्व दर्पण रात 10:10 पर। हर श्रृंगार कार्यक्रम का समय रहेगा 10:30 और गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 11:40। तो ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर

0: संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकु महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं, जीवन के प्रति पूरी तरह जागृत होना है। ये संसार त्यागने का नहीं, उसे नए नेत्रों से देखने का है। जिस दिन ये दिखाई देने लगेगा कि प्रत्येक क्षण में वही एक चेतना कार्य कर रही है, उसी दिन संसार और ईश्वर के बीच का विभाजन समाप्त हो जाएगा। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

जब हम जीवन के प्रति जागृत हो जाएंगे तब कोई एक स्थान मंदिर नहीं रहेगा, पूरा आकाश मंदिर बन जाएगा। प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहेगी, हमारा जीवन ही प्रार्थना बन जाएगा। और ईश्वर कोई विश्वास नहीं रहेगा, वो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का सत्य बन जाएगा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:29:57 अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ईश्वर का आनंद असीम है, निरंतर है और नित्य नवीन है। जब आप उस चेतना में होते हैं तो आपका शरीर, मन या कुछ भी आपको अशांत नहीं कर सकता। ऐसी है ईश्वर की कृपा और महिमा। जो कुछ भी आप समझ नहीं पाए हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वो सब आपको स्पष्ट कर देंगे।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री राम ने उन्हें अपने घर लौट जाने को सहमत किया और आप लक्ष्मण तथा सीता समेत गहन वन की ओर चले। राह में उन्हें अनेक वनवासी मिलते हैं, जिन्हें दोनों भाइयों के रूप स्वरूप में राज चिन्ह देखकर बड़ा सोच होता है। ऐसे राजसी लक्षणों वाले कुमार तापस वेश में वन में पैदल चले जा रहे हैं, ये देख वनवासियों को ज्योतिष शास्त्र भी असत्य प्रतीत होता है। वनवासी उन्हें रास्ता दिखाने बताने को अनायास ही प्रेरित हो जाते हैं। आज्ञा चाहते हैं कि जहां तक उन्हें जाना है वहां तक पहुंचा कर

उन्हें प्रणाम कर वे वापस लौट आएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। कृपा सिंधु उनसे विनय भरे वचन बोलकर उन्हें लौटा देते हैं, किंतु वन में यहां वहां बसे गांवों और पूर्वों के बालक, वृद्ध, नर नारी, किशोर किशोरियां बार बार उनके दर्शनों को दौड़ते आते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता कर अपना प्रेम दर्शाते थकते नहीं।

इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज़्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अरब डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि सांप्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र

0: समर्पिता।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेफ इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86+8000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27+200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलीशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। ICC बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasumaliyev Adulbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him. Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadur Japarov for 26th SCO summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with the SCO leaders on the sidelines of the summit. He will also participate in several other programs. Mr. Modi will address the SCO summit tomorrow. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will first interact with the Friends of India in Bishkek today. He will then visit the Mahatma Gandhi Memorial Park and pay floral tributes at the statue of Mahatma Gandhi. The statue was unveiled by Mr. Modi during his visit to Kyrgyzstan in the year 2015. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the several leaders of SCO member countries today. These include meetings with the presidents of Armenia, Kyrgyzstan and Iran, as well as a bilateral meeting with the President of Russia. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games.

ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। अब आप ही बताइए, ये भी कोई तय करने वाली बात है? नहीं ना। गोल्ड से प्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूजा है आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। सूर्योदय का समय हुआ था 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:44। सुनते हैं कारवां फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

7:21 गोल्ड सुप्रभात में आप सुनते हैं रफू चक्कर फिल्म से आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का गाया ये गीत।

एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी, 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर तस्वीर, 1:10 पर कार्यक्रम होगा कलाकार बेमिसाल, 3:10 पर मन भावन, 5:10 पर गाते गुनगुनाते और शाम 7:25 पर सांझ ढले।

0: सुप्रभात, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। प्रोग्राम में लाएंगे आप तक देश और दुनिया के समाचार, साथ ही वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया। गुड मॉर्निंग रेनू।
1: Good morning, Vishal, and a very warm welcome to all our listeners who are tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. And dear listeners, we are bringing to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we'll be giving you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 31st of August. So please stay with us for the next half an hour and let's begin with the news headlines first, Vishal.
0: जी रेनू, सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के विभिन्न सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के साथ ही अन्य

अनेक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर कल शाम किर्गिस्तान पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमलियेव आदिलबेक अलेशोविश ने किया। उनके स्वागत में एक पारंपरिक किर्गिज नृत्य प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया।

0: भारत और किर्गिस्तान के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने हैं और ये दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। और जानकारी के साथ हैं बिश्केक से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
1: किर्गिस्तान में भारत और भारतीय संस्कृति को लेकर लोगों में काफी आकर्षण है। लोग भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने के लिए हिंदी सीखने को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। भारत का राजदूतावास हिंदी सिखाने के लिए कोर्स भी संचालित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में किर्गिस्तान की महिलाओं ने बताया कि वे भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करती हैं और इसलिए हिंदी सीख रही हैं।
2: नमस्ते, मेरा नाम जारा है। भारत की दूतावास में हिंदी सीख रही हूँ। मैं किर्गिस्तान से हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।
3: नमस्ते, मेरा नाम मीरा है। मैं बिश्केक से हूँ। मुझे भारत संस्कृति पसंद है।
1: इन महिलाओं ने संस्कृत का श्लोक भी गाकर सुनाया। आज सवेरे के लिए बिश्केक किर्गिस्तान से मैं विकल्प शुक्ला।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर थे और इस दौरान कल दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एक महत्वपूर्ण समझौता पारंपरिक इलाज की भारतीय पद्धति और आयुर्वेद के क्षेत्र में है। इस समझौते से दोनों देशों को कितना फायदा होगा और भारत के आयुर्वेद की वैश्विक पहचान को कितना बढ़ावा मिलेगा, इस बारे में ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी ने खास बातचीत की उज्बेकिस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि डॉक्टर आशीना खलकतीना से।
4: नमस्कार, मेरा नाम है आशीना खलकतीना। आई एम द हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन उज्बेकिस्तान। हम सीख रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन एक पार्ट है, एक कोई थोड़ा सा उसको बढ़ाना है। हमें सीखना चाहिए। अभी कब से इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे आयुष, सारे आयुर्वेदा और दूसरे जो एरियाज हैं, इनको सब लाना चाहिए दुनिया के पास में। तो यहाँ उज्बेकिस्तान में देयर इज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन डेवलपिंग इट्स हेल्थ सिस्टम एंड फाइंडिंग वेज टू प्रिवेंट इलनेस एंड सो दैट पीपल आर हेल्थी फ्रॉम डे वन।
5: President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles Giriraj Singh will also be present on the occasion.
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। करीब एक महीने में अमेरिका की यह पहली सैन्य कार्रवाई है। ईरान की मीडिया ने बताया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में लारक द्वीप के पास विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में अपने कई जवानों और नागरिकों की शहादत और घायल होने की बात कही है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा।
5: Nepal has intensified efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli 3A site, following Wednesday's flash floods. Rescuers, including experts from India and China, have been attempting to make contact but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower projects. Wednesday's disaster has killed at least 794 people and more than 2,500 people are missing in Nepal. In Tibet, the official death toll is 16, with 546 reported to be missing, while rescuers are struggling to find survivors. Bodies have been recovered from all 8 affected districts of Nepal as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded.
0: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार श्रीलंका से वापस ले लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में मेजबान देश सहित 6 टीमों के साथ महिला टूर्नामेंट का पहला संस्करण आयोजित किया जाना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी की अगली बोर्ड बैठक में टूर्नामेंट के आयोजन स्थल के बारे में फैसला लिया जा सकता है। मेजबानी छीने जाने से श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को वित्तीय नुकसान होने की आशंका है।
5: And more news on cricket, Vishal. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs in Dubai last night after posting 159 for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs. India bowled Thailand out for just 65 in 15.3 overs. Shefali Verma was the star with the bat, smashing 64 runs and giving India a flying start after Smriti Mandhana was run out for 19. Shefali Verma was declared player of the match. And today, Bangladesh will take on Indonesia in a Group B match in Dubai. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time.
0: और रेनू, खेलों की दुनिया से स्क्वाश में भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है. भारत के अभय सिंह ने कल मलेशिया के सेरेम्बन में आयोजित तुमाकु मुहरिज ट्रॉफी 2026 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया. शीर्ष वरीयता प्राप्त अभय ने पीएसए चैलेंजर टूर 15 के फाइनल में हांगकांग चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त हेनरी ल्यूंग को 3-2 से हराया. ये अभय सिंह का तीसरा तुमाकु मुहरिज ट्रॉफी खिताब भी था. इससे पहले उन्होंने 2022 और 2024 में भी ये टूर्नामेंट जीता था.
5: एंड आफ्टर क्रिकेट स्क्वाश, लेट्स गो ऑन टू फुटबॉल. In football, India under 20 men's national team will begin their AFC under 20 Asian Cup China 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dostlik Stadium in Tashkent today. Drawn in Group B alongside host Uzbekistan and Bangladesh, India entered the qualifiers with the objective of returning to the AFC under 20 Asian Cup for the first time since 2006.
0: और अब रुक करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों का. और सबसे पहले क्या खबरें हैं आपके पास रेनू, बेंगलुरु और हैदराबाद की बात करें तो?
5: जी, लेट्स बिगिन विद बेंगलुरु मेट्रो. यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील एच डी कुमारस्वामी हेल्ड डायलॉग विद जेन जी यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड लॉयर्स एंड रिस्पॉन्डेड टू इश्यूज रेज्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन बेंगलुरु. व्हेन आस्क्ड अबाउट द एनआईसीई रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कुमारस्वामी रेज्ड कंसर्न्स about a long pending dispute with the farmers whose land was acquired for the project. And there's another news from Bengaluru Metro. Karnataka Forest Department has issued safety guidelines for planning trekking to wildlife habitats. It has identified around 39 designated trekking routes within the forest limits where these safety guidelines will be imposed. These trails will be regulated based on ecological sensitivity, terrain, weather and wildlife movement. Measures will be taken to prevent any danger to the lives of the trekkers. And moving on to Hyderabad Metro, Telangana's Endowments Minister Konda Sureka inaugurated a special officer's office at Praja Bhavan to coordinate preparations for the Godavari Pushkaralu 2027. The minister reviewed arrangements with Endowments department officials and said this office will act as a coordination hub between government departments, district administration, local bodies and Endowments department for the mega religious event, which will be held from June 26th to July 7th next year. And let's move on to some metro news regarding Delhi, Mumbai and Kolkata to you, Vishal.
0: Renu, सबसे पहले दिल्ली की खबरों को ले लेते हैं. दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 MPD के कार्यान्वयन में व्यापक जन भागीदारी को सुगम बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है. DDA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर MPD 2047 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का एक व्यापक सेट भी उपलब्ध कराया है. इनमें लैंड पूलिंग, पारगमन उन्मुख विकास और झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास समेत प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई है. प्राधिकरण ने MPD 2047 फीडबैक सुविधा भी शुरू की है, जिसके जरिए नागरिक और हितधारक अपने सुझाव भी दे सकते हैं. राजधानी के ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल पर अब तक लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण कर 100 एकड़ भूमि रिक्लेम की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वैज्ञानिक और समयबद्ध रोडमैप के माध्यम से वर्षों पुरानी समस्या को

0: खत्म करने पर काम किया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि गाजीपुर से निकले इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़कों के बेस और निचले इलाकों के भराव में किया जा रहा है। सरकार ने भविष्य में नए कूड़े के पहाड़ बनने से रोकने के लिए 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली में कचरे का प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है। उत्तरी जिला पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ और मनोप्रभावी पदार्थों शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के तहत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम मामलों में 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध शराब बरामद की। वहीं मादक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ NDPS अधिनियम मामलों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रुख करते हैं महाराष्ट्र का, मुंबई से जुड़े समाचार। चीन में फंसे महाराष्ट्र के 69 नागरिक शनिवार देर शाम कोडारी आवर्जन केंद्र के रास्ते सीमा पार कर नेपाल में प्रवेश कर गए हैं। इन सभी के 31 अगस्त तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने आपदा प्रभावित महाराष्ट्र के 404 नागरिकों को पंजीकृत किया है, जिनमें से 262 पर्यटक अभी भी नेपाल या चीन में थे। अब तक 211 नागरिक सुरक्षित लौट चुके हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासनों के बीच समन्वय स्थापित करके नेपाल, चीन और तिब्बत में फंसे नागरिकों का पता लगाने और उनकी सहायता करने पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करने और कार्यों को शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया। गोरेवाड़ा में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री फडणवीस ने कहा कि गोरेवाड़ा को विदर्भ में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। और अब समाचार कोलकाता से। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक के फील्ड अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण हो सके। निर्देश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, SDO, BDO, नगर आयुक्त और पुलिस अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को सप्ताह में 2 बार आम नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना होगा। इसके अलावा अधिकारियों को सभी शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाइयों को अपोनार सरकार अपोनार पाशे पोर्टल पर भी दर्ज कराना होगा। मेट्रो न्यूज के बाद अब बात मौसम की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो आंशिक रूप से आज बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई के मौसम की बात करें तो आसमान में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
1: एंड विशाल, यू स्पोक अबाउट द वेदर इन दिल्ली, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि सुबह जब हम आए हैं तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि आज बाहर ही बैठ कर क्यों ना आज सवेरे किया जाए।
0: उमस भरी गर्मी अब विदा हो रही है धीरे धीरे।
1: जी, सो गुड न्यूज ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। चेन्नई is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The temperature will be 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky and the temperature will be between 20 degrees to 30 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm and the temperature will be 23 degrees to 30 degrees Celsius.
0: मौसम की जानकारी के बाद अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि ये आज की तारीख यानी 31 अगस्त को कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं दर्ज हैं इतिहास में। और 1889 में आज ही के दिन दूसरी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कांग्रेस में ऊर्जा एनर्जी को मापने के लिए जूल और शक्ति के लिए वॉट को आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाया गया था।
1: वेरी ट्रू। एंड ऑन 31st ऑफ अगस्त इन द ईयर 1897 Thomas Edison received a patent for the kinetograph. The kinetograph was the world's first early motion picture camera.
0: और 1920 में आज के दिन अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में पहली बार रेडियो पर समाचार प्रसारित किए गए थे
1: जी एंड इन 1955 ऑन दिस डे द फर्स्ट सोलर पावर्ड कार वाज डेमोंस्ट्रेटेड बाय विलियम जी कॉब ऑफ जनरल मोटर्स ही बिल्ट अ टाइनी 15 इंच मॉडल कॉल्ड द सन मोबाइल दैट रैन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन On this day, that is 31st of August in the year 1957, the Federation of Malaya, now Malaysia, gained independence from British rule.
0: और 31 अगस्त 1962 में कैरेबियाई देश टोबैगो और त्रिनिदाद ब्रिटेन से आजाद हुए थे 1983 में आज के दिन भारत के उपग्रह इनसेट 1B को अमेरिका के स्पेस शटल चैलेंजर से प्रक्षेपित किया गया था और 1990 में आज के दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना भी घटी थी दशकों से विभाजित पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था इस एकीकरण संधि यूनिफिकेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके बाद दोनों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के एक होने का मार्ग प्रशस्त हुआ था और 1991 में आज के दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और क्या संयोग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है इन्हीं दो देशों की यात्रा पर है
1: जी बिल्कुल एंड सो डियर लिसनर्स दैट इज व्हाई वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज डेट्स यू नो ये जो तारीख होती हैं ये इतिहास में ये जो इवेंट्स है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट ऑफ बर्थ एनिवर्सरीज बर्थडेज एंड डेथ एनिवर्सरीज
0: जी अब कुछ उन व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिनकी आज जन्मतिथि है या फिर आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे सामने जो है प्रसिद्ध कवियत्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम का है जिन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री भी माना जाता है
1: जी
2: ये जिंदगी एक रात थी हम तो जागते रहे किस्मत को नींद आ गई
1: Oh my God, how true. And Amrita Pritam is whom we are going to talk about today. It is her birth anniversary. She was an Indian novelist, essayist and poet who wrote in Punjabi and Hindi. She is best remembered for her poem Aj Akhan Varis Shanu, that is Today I Invoke Varisha or Ode to Varisha, an elegy to the 18th century Punjabi poet, an expression of her anguish over massacres during the partition of India. And as a novelist, her most noted work was Pinjar or The Skeleton in 1950, in which she created her memorable character Puro, an epitome of violence against women, loss of humanity, and ultimate surrender to existential fate. And Vishal, aap jante hain, ye jo Pinjar hai, jo inhone likhi thi, iske upar movie bhi bani thi, aur humne isi movie se ek bahut प्यारा सा गाना अपने लिसनर्स के लिए चलवाना चाहेंगे

0: अमृता प्रीतम का जो मुकाम है न केवल साहित्य की दुनिया में, वो देश में तो है ही है, इसके अलावा इनकी लोकप्रियता सीमा पार पाकिस्तान में भी उतनी ही है। और अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में रही हैं जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, और जो इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट है वो बहुत ही बेहद बहुचर्चित आत्मकथा है जिसमें अमृता प्रीतम ने अपने जीवन संघर्षों और विचारों को साझा किया है।
1: And known as the most important voice for women in Punjabi literature in 1956, she became the first woman to win the Sahitya Akademi Award for her magnum opus, A Long Poem Sohyade, that is Messages.

0: facts don't mean a thing. आज पुण्यतिथि है प्रख्यात उर्दू कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक कश्मीरी लाल जाकिर की। इन्होंने 8 दशक तक उर्दू और हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से अधिक किताबें लिखीं। ये लगभग 3 दशक तक हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक पद पर भी रहे। इनके उपन्यास कर्मावाली पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 100 से अधिक नाटक का मंचन किया। बाद में इसी पर दूरदर्शन ने एक धारावाहिक भी बनाया था।
1: And today is the birthday of Yuvan Shankar Raja, who is an Indian film score and soundtrack composer and singer-songwriter. He predominantly scores music for Tamil films. Being the youngest son of the legendary composer Ilaiyaraja, he began his musical career in 1996 at the age of 15.

0: आज ही जन्मदिन है बंगाली फिल्मों के जाने माने निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष का। चोखेर वाली, रेनकोट और अबू हुमन जैसी फिल्मों के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में रही है। ऋतुपर्ण घोष उन निर्देशकों में से एक थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर कभी फिल्में नहीं बनाई। इनकी एक अपनी अलग सोच थी, शैली थी और अपने मिजाज के अनुरूप ही इन्होंने फिल्में बनाई। रिश्तों की जटिलता और लीक से हटकर विषय जो थे इनकी फिल्मों के, वही इनकी खासियत थी। और 19 साल के फिल्मी करियर में ऋतुपर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया।
1: वेरी ट्रू विशाल। अनदर रीजन मुझे लगता है कि क्यों इनकी मूवीज इतनी अलग होती थी फ्रॉम कमर्शियल सिनेमा। आफ्टर परसुइंग अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड ही रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर हिज सेकेंड फीचर फिल्म 19 अप्रैल, विच वन द नेशनल Film Award for Best Feature Film. Here we are listening to a beautiful song from the movie Raincoat, Mathura Nagarpati, and please enjoy the song too, listeners.

0: श्रोताओं, आज सवेरे में बस आज इतना ही। अब दीजिए अनुमति रेनू और मुझे विशाल को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: सो स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप विद समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज़। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य में

0: अराक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
5: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने

0: की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
2: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
3: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331-0481-0112-3-1-4-4-4-4। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं।

0: नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: calm since June. On to sports. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in a dominant fashion, beating Thailand by 94 runs in Dubai last night after posting 159 for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs. India bowled Thailand out for just 65 in 15.3 overs. Nanapat Konchakorai Kongkai with 41 runs was Thailand's top scorer but lacked support from the other end as wickets fell at regular intervals. In squash, India's Abhay Singh won the men's singles title at the Tuanku Muriz Trophy 2026 in Seremban, Malaysia yesterday. The top-seeded Abhay defeated third-seeded Henry Leung of Hong Kong, China 3-2 in the final of the PSA Challenger Tour 15 event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed Prime Minister's visit to the Central Asian country of Uzbekistan. The Hindu headline writes, India-Uzbekistan upgrade ties, agree on uranium deal. The dailies also have an inbox picture of PM Modi being conferred with Uzbekistan's highest honor for foreign leaders in recognition of his leadership and contribution to bilateral ties. PM Modi hails grassroots innovation, anti-drug drive and women's empowerment in Mann Ki Baat program, cites the statesman. As Nepal flood toll mounts, India deploys forensic tunnel rescue teams, notes the Tribune. In a first, railways to build 6 freight lines with private firms using highways hybrid funding model, writes the Indian Express. And finally, Hindustan Times refers to an Army Cheetal helicopter carrying out a daring mission at 18,600 feet in Ladakh to evacuate an injured mountaineer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SEO summit and meet several SEO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है, जबकि 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। और ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने दुबई में T20 एशिया कप के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिज़िस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं। वज़ीरों की काबीना के चेयरमैन कासिम अलीफ आदिल बेक अले शोविच ने हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के खैर मकदम के लिए रिवायती किर्गिज़ रक्स का भी एहतमाम किया गया।

जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिजिस्तान के सदर सदिर जपारूव की दावत पर वहां गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके

0: पर एससीओ रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी कई दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे और कल एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब मोदी आज बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्मे पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। साल 2015 में किर्गिजिस्तान के अपने दौरे के मौके पर वजीर आजम ने इस मुजस्मे की नकाब कुशाई की थी। जनाब मोदी आज शंघाई तावन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस के सदर के साथ बाहमी बातचीत के साथ साथ आर्मेनिया, किर्गिजिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी आज छठे वर्ल्ड नामोड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शंघाई तावन तंजीम एससीओ की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताशकंद का अपना दो रोज़ा सरकारी दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कल दो तरफा ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक जामे दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तफाक किया। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: इस दौरे में 11 माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनका ताल्लुक अहम मादनियात और यूरेनियम से लेकर तिजारत, दिफा, डिजिटल वसीले से रुपए पैसे के लेन देन और तालीम, नीज हिंदी और संस्कृत से लेकर खेलकूद और विरसे के तहफ़ से है। इस दो रोज़ा दौरे से भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को एक वसी और जामे फ्रेमवर्क मिला है। उम्मीद है कि जामे दिफाई शराकतदारी और $5 अरब के तिजारती निशाने तवील मुद्दती तवानाई तआवुन और रियासत और शहर की सतह पर मजीद सरगर्मियों की वजह से उज़्बेकिस्तान और वस्त एशियाई खित्ते के साथ भारत की सरगर्मियों को एक नई रफ्तार हासिल होगी। इस दौरे की एक अहम बात यह भी रही कि सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओली दाराजाली दोस्त लीग से नवाजा। इस अवार्ड के तहत भारत उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और तआवुन को मुस्तहकम बनाने में जनाब मोदी के तआवुन का एतराफ किया गया है। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। अमरीका के अपने दौरे में शिकागो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान की लड़ाई नीज आबनाए हुरमुज को बंद किए जाने के तनाजुर में जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की कैफियत और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों के बावजूद उम्मीद है कि भारत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखेगा। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मगरबी एशिया महाजाराई की वजह से आबनाए हुरमुज में खलल पड़ने से शुरू में भारत के लिए खाम तेल, पेट्रोलियम अशिया और कीमियावी खाद जैसी अहम अशिया की सप्लाई पर असर पड़ा था, लेकिन मुल्क इन अशिया को दूसरे रास्तों से लाने का बंदोबस्त करने में कामयाब रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगी। वो इस मौके पर मुल्क भर के 18 NIFT कैंपस के ग्रेजुएशन के तलबा को डिग्री अता करेंगी। कपड़े की सनतों के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और कपड़े की सनतों की वजारत की सेक्रेटरी नीलम शामी राव भी इस मौके पर मौजूद होंगी। इस तकरीब में दीगर मुमताज शख्सियतें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान, सीनियर अफसरान, असातिज़ा, दानिश्वर हजरात और तलबा शिरकत करेंगे। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 794 तक जा पहुंची है और 2500 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। तिब्बत में 16 अफराद हलाक और 546 लापता हैं। भारत और चीन समेत बचाव टीमें पनबिजली प्रोजेक्टों की सुरंगों में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रोजेक्टों में त्रिशूली 3A भी शामिल है। लापता लोगों के बारे में ख्याल है कि ये लोग पनबिजली प्रोजेक्ट का रुकन हैं। सभी 8 मुतासर ज़िलों से लाशें बरामद कर ली गई हैं। जैसा कि बचाव कारकुन अब भी बाकी मादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसी दौरान त्रिशूली दरिया में ताज़ा सैलाब से गोरखा ज़िले में झूलने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी शाहराह के मकी अलग थलग होकर रह गए हैं। नेपाल में शदीद सैलाब आने और

0: पूर्वी इलाकों में मूसलाधार बारिश के तनाजुर में बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 फाटक और कोसी बैराज के 20 फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इन दोनों दरियाओं में पानी की सतह और उनसे छोड़े जाने वाले पानी की मकदार भी कम हो गई है। इधर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली गुमराहकुन इत्तलात के तनाजुर में सुपौल जिला इंतजामिया ने यह वजाहत की है कि कोसी दरिया में पानी मामूल की रफ्तार से चढ़ रहा है और कोसी बैराज पूरी तरह महफूज है। सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। पानी की सतह में और इजाफा होने के इम्कान के मद्देनजर मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों की इंतजामिया सख्त चौकसी बरत रही है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के ज़ेरे असर उड़ीसा में आज भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने बरगढ़ में रेड अलर्ट जबकि मगरबी उड़ीसा के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बारिश ऐसे वक्त हो रही है कि जब केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर के बाज़ हिस्से हालिया सैलाब के असर से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। इस तरह निचले इलाकों में फिर से पानी भर जाने के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा को आज फिर मूसलाधार बारिश का सामना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बहुत सी जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और अलग अलग जगहों पर इंतहाई शदीद बारिश की भी पेशगोई है। आज बारगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है जबकि सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, क्योंझार, सुवर्णपुर, नुआपाड़ा, बालनगीर और कालाहांडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश की वजह से मकामी सतह पर नशेबी इलाकों में सैलाब आ सकता है और पानी भर सकता है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय बहरिया आज मुंबई में बहरी गोदी में निपुण जहाज को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये निस्तार दर्जे का दूसरा गोताखोर इमदादी जहाज DSV है। निपुण को कामकाज में शामिल किए जाने से भारत के बहरी मफादात वाले खसूसी गोताखोर और जेरेआब मिशनों को जारी रखने की भारत की बहरी सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: निपुण को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने मुल्क ही में डिजाइन और तामीर किया है। ये बहरी जहाज दिफाई जहाजों की तामीर में भारत की खुद किफालत के मैदान में एक अहम संगी मील की हैसियत रखता है। निपुण खसूसी तौर पर गोताखोरी और जेरेआब कार्रवाइयों के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज गोताखोरी के जदीद तरीन निजाम से लैस है जिसमें समुन्द्र में जेरेआब हथियारों को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इस जहाज में समुन्द्र में खसूसी हालात में गोताखोरी को मदद देने की भी सलाहियत मौजूद है। निपुण से जेरेआब बचाव कार्रवाइयों में मदद देने की भारतीय बहरिया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: अमरीका ने कल रात आबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के फौजी ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाबे इस्लामी के फौजियों को आबनाए हुरमुज में समुद्री बारूदी सुरंगों के साथ रॉकेट दागनी की तैयारी करते हुए देखा गया था। इसी के बाद ईरान के दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया है कि इस हमले में कई ईरानी अहलकार और सिविलियन हलाक और जख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन में अमरीका के फौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। दोनों तरफ के इन हमलों से महाज़ाराई में फिर से शिद्दत आ गई है। इससे कबल अमरीकी फौज ने आबनाए हुरमुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद ईरान को यह सख्त वार्निंग जारी की है कि इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने में मुलव्वस किसी भी बहरी जहाज या कश्ती को बिला ताखीर और मुनज़्ज़म अंदाज से तबाह कर दिया जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बैंकिंग और कर्ज की फराहमी के जरिए माली शमूलियत में इजाफे और शहरियों को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने टी20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94

0: रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सिक्किम निशानेबाजों ने 13वीं शुमाल मशरकी जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम दी है। ये चैंपियनशिप कल आसाम के शहर गुवाहाटी में इख्तिताम पजीर हुई। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर मुकाबले में इनफरादी जुमरे के तहत कांसे का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया में सेरेम्बन के मुकाम पर तनाकू मुरहिस ट्रॉफी 2026 में मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया कलीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उज़्बेकिस्तान के दौरे की तकमील की खबरें सरेवक्त शाये की हैं। अखबार इनकलाब के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान यूरेनियम की सप्लाई का मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर भी आज के अखबारात में नुमाया है। जनाब मोदी आज शंघाई तआवुन तंजीम में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि वो किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में आज चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। अखबार इनकलाब के मुताबिक सियासी जमातों के नकद अतियात के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दरख्वास्त में इनकम टैक्स कानून की उस शिक को चैलेंज किया गया है जिसमें सियासी जमातों को 2000 रुपए से कम के नकद अतियात गुमनाम तौर पर वसूल करने की इजाजत है। इसी अखबार ने एक खबर यह भी खासतौर पर शाये की है कि दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी। अगर किसी वोटर या उसके किसी जानने वाले का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो उसे दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक पहुंच गए हैं जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान भारत की इकतसादी शरह तरक्की 7% या इससे ज्यादा रहने का इम्कान है। नेपाल में अचानक सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 794 तक पहुंच गई है जबकि 2500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमरीकी फोर्सेज ने अबनाए हुरमुज में लारक जजीरे पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला किया है जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

स्वीकार करने की हिम्मत यानी एक्सेप्टेंस और सुधार करने की नीयत हो तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। म्यूजिकल दिल लगी में आइए सुनते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत।

कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पर आज को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बना लीजिए। 8:53 और 33 सेकेंड म्यूजिकल दिल लगी में आप सुनते हैं कभी कभी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में गाया ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए वे भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। ओडिशा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल

0: बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार जन सुनवाई शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लड़ाक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymalev Adelbek Eleshchovich, Chairman of the Cabinet of Ministers. Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadir Zaparov for 26th SCO Summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with SCO leaders on the sidelines of the summit. Mr. Modi will address the SCO summit tomorrow. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will first interact with the Friends of India in Bishkek today. He will then visit the Mahatma Gandhi Memorial Park and pay floral tributes at the statue of Mahatma Gandhi. The statue was unveiled by Mr. Modi during his visit to Kyrgyzstan in the year 2015. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the several leaders of SCO member countries today. These include meetings with the presidents of Armenia, Kyrgyzstan and Iran, as well as a bilateral meeting with the President of Russia. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games today. The event celebrates the rich and vibrant cultural heritage of Central Asia. Vikalp Shukla, Akashvani News, Bishkek.
1: Prime Minister Narendra Modi concluded a successful 2-day state visit to Tashkent, Uzbekistan, following talks with President Shavkat Mirziyoyev to deepen bilateral ties. Both leaders agreed to elevate India-Uzbekistan relations to a comprehensive strategic partnership. The outcomes of the visit extend well beyond the signing of 11 agreements, from critical minerals and uranium to trade, defense, digital payments and education, from Hindi and Sanskrit to sports and heritage conservation. The 2-day visit has given a broad and comprehensive framework to the India-Uzbekistan relationship. A major highlight of the visit came when President Shavkat Mirziyoyev conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliye Darajali Dostlik, on Prime Minister Narendra Modi. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27. Addressing Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said India is likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the U.S.-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will address the combined convocation of National Institute of Fashion Technology, NIFT, in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will be conferred degrees on the occasion. Union Minister for Textiles Giriraj Singh, Secretary Ministry of Textiles Neelam Shami Rao will also grace the occasion along with other distinguished dignitaries, members of the Board of Governors, senior officials, faculty members, scholars and graduating students. Odisha faces another spell of heavy to very heavy rain today, with the weather system over the northwest Bay of Bengal continuing to influence the state. The IMD has forecast extremely heavy rainfall at isolated places today, with a red warning in force for Bargarh and orange warnings for several districts of western Odisha. The fresh spell comes when parts of Kendrapara, Bhadrak and Jajpur are still recovering from the recent floods, raising concerns of renewed inundation in vulnerable areas. Nepal has intensified efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli 3A site, following Wednesday's flash floods. Rescuers, including experts from India and China, have been attempting to make contact but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower projects. Wednesday's disaster has killed at least 794 people and more than 2,500 people are missing in Nepal. And in women's cricket, India began the T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium last night. Batting first, India scored 159 for the loss of 9 wickets in 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों एक राज की बात बताऊं, जवान रहना है तो इश्क कर लो। बुढ़ापा उम्र से नहीं बोरियत से आता है। क्रीम से भले चेहरा चमकता है पर पैशन से आंखें चमकती हैं। जिसके पास कोई पैशन नहीं है ना, वो 25 में भी बूढ़ा महसूस करता है, और जिसके पास पैशन है वो 60 में भी जिंदा दिल रहता है। पैशन से इश्क करो तो थकान नहीं होती। लोग थक कर सोते हैं, आप जुनून में जागते हैं। नौकरी पेट भरती है, पैशन जवान रखता है। तो बस इश्क कर लो अपने काम से, अपने हुनर से। दुनिया चाहे जो भी कहे, पर आईने में आप हमेशा जवान दिखेंगे। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 9:11:52 हो चुके हैं और ये वक्त है म्यूजिकल दिल लगी का।

और अब मैं आपको बता दूं आज एक ऐसी योजना के बारे में, एक ऐसी परियोजना के बारे में जिससे ये आसान किया गया कि हर नागरिक तक सस्ती दवाएं पहुंच सके। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना देश की सभी नागरिकों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करवाती है और ये एक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। तो भाई गुणवत्ता भी अच्छी हो और कीमतें भी कम हो, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। इन केंद्रों पर जिन्हें हम जनौषधि परियोजना से जुड़े हुए ये केंद्र हैं, जनौषधि केंद्र हैं जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं, इन केंद्रों पर मिलने वाली जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50% से 90% तक सस्ती होती हैं। यहां 2000 से अधिक प्रकार की दवाइयां और 300 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी दवाइयां NABL मान्यता प्राप्त लैब से जांच के बाद ही केंद्रों तक पहुंचती हैं। देश भर में अब तक 15,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं जिन्हें मार्च 2027 तक बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य है। अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्र को खोजने के लिए आप जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके करीब कहां पर ये औषधि केंद्र है और यहां से दवाइयां आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो फिलहाल और भी काम की बातें बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा

0: हमारा संकल्प।
1: नौ बजकर 27 मिनट 57 सेकंड हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये है म्यूजिकल दिल लगी। भाई कभी सोचा है कि बरसात में जब सब कुछ धुलकर और भी हसीन हो जाता है तब हमारी आंखें क्यों लाल हो जाती हैं कभी कभी? क्योंकि बारिश की जो बूंदें हैं ना जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी ही अपने साथ कई कीटाणु भी लाती हैं और हमारी आंखें सबसे नाजुक सबसे पहले इन्फेक्शन पकड़ लेती हैं। तो अब बात आंखों की, उन दो खूबसूरत खिड़कियों की जिनसे आप ये पूरा सावन देख चुके हैं। हर मौसम देखते हैं, पूरी दुनिया देखते हैं, कैसे रखना है इनका ख्याल, चलिए सुनिए ध्यान से। बरसात में हवा में नमी और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इस मौसम में आंखों में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। हाथों को आंखों पर नहीं लगाना होता है, बार बार हाथों से आंखों को छूना नहीं होता है। हाथों में सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं। आंखों में खुजली हो तो रूमाल से हल्के से साफ करें, उंगली से ना मलें। बरसात का पानी जो है वो खतरनाक होता है। बाइक चलाते समय या बाहर निकलते वक्त आंखों में बरसात का पानी ना जाने दें, इसमें गंदगी और केमिकल्स होते हैं जिससे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। चश्मा जरूर पहने, तौलिया और रुमाल अलग रखें। अपना रुमाल और तौलिया जो है वो तकिया जो है, ये दो तीन चीज़ें हैं जो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है और इस मौसम में काजल लाइनर कम लगाना चाहिए। आंखों में पसीना और मेकअप मिलकर इन्फेक्शन करता है। साफ पानी से कई बार आपको आंखों को धोना चाहिए, कम से कम 2-3 बार ठंडे और साफ पानी से आंखों को धोइए, लेकिन गंदा पानी इस्तेमाल करने से बचिए। आंखों में लाली, खुजली या दर्द हो तो खुद से दवा नहीं डालनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और भी ऐसी काम की बातें हैं मेरे पास, जुड़े रहिएगा म्यूजिकल दिल लगी के सफर में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

9:54 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और दोस्तों, कभी भी खूबसूरती पार्लर से नहीं आती, ये तो आप जानते ही है ना। तो भाई किससे आती है? एक हल्की सी मुस्कान से, जो आप चेहरे पर हमेशा बनाए रखते हैं। पर हाँ, जब तेज धूप आपकी मुस्कान को थका देती है, जब पसीना आपके चेहरे का ग्लो चुरा लेता है, तो थोड़ा सा ख्याल तो बनता है ना। तो आज मैं कोई महंगा नुस्खा नहीं बताऊंगी, बल्कि दादी माँ की पोटली से निकले वो छोटे छोटे राज बताऊंगी, जिससे आप बिना मेकअप के भी सबसे खूबसूरत लग सकते हैं। गर्मी में पसीना, धूल और तेज धूप स्किन को काला और बेजान बना देते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, चलिए आज आपको देती हूँ। गर्मी की जो हमारी त्वचा होती है, उसमें सबसे बड़ी दुश्मन पता है क्या होती है? धूप। घर से निकलते ही 20 मिनट पहले SPF 50 वाला सनस्क्रीन आपको जरूर लगा लेना चाहिए। चाहे धूप ना भी हो, हर 3 घंटे में दोबारा इसे लगा लो, तो स्किन जो है वो बेजान होने से बची रहेगी। एक छोटी स्प्रे बॉटल लो, गुलाब जल भर कर उसे फ्रिज में रख दो। दिन में 3-4 बार चेहरे पर स्प्रे कर लो, ये टोनर का काम करेगा। पसीने से होने वाले दाने भी नहीं होंगे। धूप से लौटने के बाद 1 चम्मच एलोवेरा जेल, खीरे का रस, इन दोनों को मिलाओ। 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखो। इससे टैनिंग हटेगी और जलन भी शांत होगी। गर्मी में फाउंडेशन स्किन को बंद कर देता है। सिर्फ बीबी क्रीम लगाइए, ताकि आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद ना हो। ज्यादा तला भुना, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। इसकी जगह नारियल पानी या छाछ आप पी सकते हैं। चेहरा अंदर से ग्लो करेगा। रात को सोने से पहले चेहरे पर बर्फ के टुकड़े से 1 मिनट तक मसाज कर लें। इससे पोर्स टाइट होंगे और सुबह चेहरा ऑयली नहीं लगेगा। है ना मजेदार नुस्खे? आज ही से अपनाना शुरू कर दो, फिर देखना

दोस्तों पता है रिश्ते भी इस बरसात के मौसम जैसे होते हैं, कभी धूप कभी छांव कभी हल्की नोकझोंक की बूंदाबांदी, पर अगर थोड़ी सी देखभाल कर ली जाए तो यही रिश्ते सबसे हसीन लगते हैं। आजकल हम सबके पास टाइम नहीं होता, फोन के लिए टाइम है पर एक दूसरे के लिए नहीं, बस यहीं से दूरियां शुरू होती हैं। तो सुनिए रिश्तों को मजबूत करने के छोटे छोटे मंत्र। सुनना सीखिए सिर्फ बोलना नहीं, अक्सर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं समझने के लिए नहीं। जब परिवार का कोई सदस्य कुछ कहे तो फोन साइड में रखकर आंखों में देखकर सुनिए। कभी कभी सिर्फ सुन लेना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को तवज्जो ही नहीं देते, ध्यान से सुनते ही नहीं, बस सुनना शुरू कर दीजिए, आधे झगड़े तो वहीं खत्म हो जाएंगे। दिन भर 15 मिनट निकालिए बिना मोबाइल बिना टीवी के, सिर्फ चाय पियो, दिन कैसा था पूछो, ये 15 मिनट आपके रिश्ते को पूरे दिन के लिए चार्ज कर देंगे। शुक्रिया और सॉरी बोलने में कंजूसी मत करो, आज तुम अच्छे लग रहे हो, खाना बहुत टेस्टी बना था, ये छोटे छोटे से शब्द हैं जो किसी भी रिश्ते में बहुत बड़ी मिठास घोलते हैं। उसके पति ने ये किया, उसकी पत्नी ने वो किया, हम जब दूसरों से तुलना करते हैं ना तो प्यार कहीं ना कहीं मरने लगता है। हर रिश्ता अलग होता है, अपनी कहानी खुद लिखिए, दूसरों को कॉपी मत करिए। गुस्सा आए तो उसी दिन बात खत्म कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसा करते हो कि जगह मुझे इस बात से बुरा लगा, ये कहिए। याद रखिए परफेक्ट रिश्ता कोई नहीं होता, बस एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को अपनाते हुए परफेक्ट बनना होता है ना।

दोस्तों पता है जब घर में शोर बढ़ता है तो बच्चे खामोश हो जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चा तो छोटा है, उसे क्या समझ आएगा, और पति पत्नी की लड़ाई कमरे में किचन में बच्चों के सामने ही कर देते हैं। हमें लगता है बच्चा खेल रहा है, सुन नहीं रहा, पर सच ये है कि बच्चा हर शब्द नहीं पर हर भाव समझ रहा होता है। माँ की आंखों में आंसू, पापा की ऊंची आवाज, ये सब उसके छोटे से दिल पर बहुत गहरा निशान छोड़ते हैं। जानते हैं बच्चों पर क्या क्या असर पड़ते हैं? बच्चा खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है मम्मी पापा मेरी वजह से लड़ रहे हैं। वो अंदर ही अंदर जो है घुटना शुरू कर देता है, चुप हो जाता है। डर उसके मन में बैठ जाता है। वो हर समय डरा रहता है कि कहीं फिर से लड़ाई ना हो जाए। रात में चौंक कर उठता बच्चा जो है वो शायद यही डर उसके मन में बैठा है, और इसीलिए वो बार बार रात में भी नींद से उठता है, स्कूल में ध्यान नहीं लगता, और इसी डर की वजह से ऐसा सब कुछ होता है। उसका भरोसा टूट जाता है। जिस घर को वो सबसे सेफ जगह मानता है वही उसे सबसे ज्यादा डर लगने लगता है। बड़े होकर उसे रिश्तों पर भरोसा करने में बहुत दिक्कत होती है। उसे लगता है प्यार का मतलब लड़ाई ही है। गुस्सा या बिल्कुल खामोश हो जाना, ऐसी चीजें भी बच्चों में देखी जाती हैं। कुछ बच्चे बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर चिल्लाते हैं क्योंकि उन्होंने घर में यही देखा है, और कुछ बच्चे बिल्कुल शांत महसूस करते हैं जो अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो याद रखिए, आप पति पत्नी बाद में हैं, पहले किसी के मम्मी पापा हैं। लड़ाई करनी है तो अकेले में करिए, सुलह भी करें तो अकेले में करें, पर बच्चे के सामने हमेशा एक टीम बनकर रहें, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी उड़ीसा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के

0: Bengal continuing to influence the state. The IMD has forecast extremely heavy rainfall at isolated places today, with a red warning in force for Bargarh and orange warnings for several districts of western Odisha. The fresh spell comes when parts of Kendrapara, Bhadrak and Jajpur are still recovering from the recent floods, raising concerns of renewed inundation in vulnerable areas. Nepal has intensified efforts to free hundreds of people trapped inside tunnels at hydropower projects, including the Trishuli 3A site, following Wednesday's flash floods. Rescuers, including experts from India and China, have been attempting to make contact but have so far received no response from inside the tunnel. Hundreds of the 2,500 people reported missing are believed to be employees of Nepal's hydropower projects. Wednesday's disaster has killed at least 794 people and more than 2,500 people are missing in Nepal. And in women's cricket, India began the T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium last night. Batting first, India scored 159 runs for the loss of 9 wickets in 20 overs. In reply, Thailand were bowled out for just 65 runs in 15.3 overs. And in football, India under-20 men's national team will begin their AFC under-20 Asian Cup China 2027 qualifiers against Syria at the Dostlik Stadium in Tashkent today. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2,500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरु मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मलेशिया के सेरेम्बन में भारत के अभिज सिंह ने तुआंकू मोहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीती। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल सम्पन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की

0: उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था।
3: ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। जुलाई के आखिर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जल डमरू मध्य से जुड़े 2 सप्ताह के अमरीकी सैन्य अभियान को रोकने के बाद लराक पर ये हमला हुआ। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। ये घटनाक्रम टकराव में तेजी को दर्शाता है जो जून से काफी हद तक शांत बना हुआ था। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSEB निपुण को शामिल करने जा रही है।
4: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल समाचार।
5: दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकु मोहरीज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लियोंग को 3-2 से हराया। हॉकी में जर्मनी ने पुरुष विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। और फुटबॉल में भारत की U20 पुरुष राष्ट्रीय टीम आज ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में सीरिया के खिलाफ AFC U20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत करेगी। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सिक्किम के निशानेबाजों ने 13वीं उत्तर पूर्व जोन निशानेबाजी चैंपियनशिप में असाधारण प्रदर्शन किया।
6: नॉर्थ ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का समापन कल गुवाहाटी असम में हुआ। सिक्किम के लक्ष्मण अधिकारी ने इस चैंपियनशिप में मास्टर पुरुष 10 मीटर एयर पिस्तौल व्यक्तिगत वर्ग में ब्रोंज पदक जीता। ये नॉर्थ ईस्ट जोन पर सिक्किम का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी निशानेबाज द्वारा जीता गया पहला पदक है। सिक्किम के 2 निशानेबाजों अनु छेत्री और छिरिंग यांगदेन भूटिया ने 13वीं नॉर्थ ईस्ट जोनल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के

0: लिए क्वालिफाई किया है। अनु छेत्री ने 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में क्वालिफाई किया, जबकि छिरिंग यांगदेन भूटिया का चयन 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के लिए हुआ है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमरीका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। मलेशिया के सेरेम्बम में भारत के अभिषेक सिंह ने तुआंकू मोहरीज स्क्वाश ट्रॉफी जीती। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. In squash, India's Abhay Singh wins men's singles title at Tuanku Muriz Trophy 2026 in Seremban, Malaysia. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasim Aliyev Adilbek Elishinovich, Chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम कूल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आशरेखा क्रिस्टल वॉइस। 10:31 हो चुके हैं और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप हमें भेज सकते हैं अपनी फरमाइश। व्हाट्सएप नंबर बता दूं, 9868867539, यानी 9868867539, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। एक ही मेल करिए या एक ही व्हाट्सएप करिए, काफ़ी है। बार बार आपके ईमेल्स और मैसेजेस अगर मैं सिर्फ देखती रह जाऊंगी तो फिर नाम कब पढ़ूंगी, है ना? आप ही के कम नाम पढ़े जाएंगे, फिर मत बोलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कुछ नामों के साथ, कुछ मैसेजेस के साथ जो हम तक पहुंचे हैं। विरमगाम गुजरात से अजीत, प्रमिला, भावेश और सनी भावसार का हमें मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है दत्ता ढोंडके ने आष्टी जालना महाराष्ट्र से। धर्मेंद्र शेपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार का हमें भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, चामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू ने, और अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी, मोहम्मद अफजाल मलिक का हमें मैसेज पहुंचा है कोल सिटी बरका काना से। हमें लिखा है लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, आजाद नगर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर अंसारी, साबिर राही और मेराज जहाने, और ये मैसेज हमें रुपेश संगई, महेश प्रगेश और प्रीतेश संगई का पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र परभणी से मिला। और मुंबई से अनुबरजात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा, और हमारे पास ये मैसेज गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका, वाणी थांदी का मिला है नवाशहर पंजाब से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की, सुदासु अर्नवानंद, सत्यमानंद का पाकुड़ झारखंड से, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत गुड्डी भगत का मैसेज, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जोड़ा का मैसेज, मोहम्मद सईद अब्बासी ने

साथ परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, अबान और पूरे परिवार का ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मैसेज। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना ने हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से लिखा है और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप का मैसेज और सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग का मैसेज ये मिला है। अफरोज शेख का नेमुआ सुपौल बिहार से मैसेज। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल, भानु प्रकाश का मैसेज और नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम का मैसेज हमें पहुंचा है। अक्सा अदीब के साथ, शाइना हसन के साथ और कौन कौन है भाई, सहारनपुर कुमार हेड़ा से सैयद मसरूर के साथ हमें ये मैसेज मिला है। संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, अनिल जैन के साथ माल्यान सरधना मेरठ से लिख रहे हैं और आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन भी हैं साथ। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, सीमा, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर से मैसेज पहुंचा। ग्राम हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा का मैसेज और हमें लिखा है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और यासीन का मैसेज, यासीन हाशमी का मैसेज हमें गंजुनवारा कासगंज से मिला है और हमें लिखा है एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद और आबाद खान का मैसेज। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी के साथ। तो भाई हितेंद्र दास का मैसेज हमें पहुंचा है आसाम से और हमें लिखा है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, संजय, अरुण और पवन, सुनील जैन, विपिन गुप्ता और रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या का और उनके मम्मी पापा भी। भाई थोड़ा कोशिश करिए कि कम नाम शामिल करें एक मैसेज में। अनन्या राजवीर गायकवाड़ का महाराष्ट्र पुणे से सुनील और सुषमा के साथ मैसेज पहुंचा है। इसके अलावा ये किसका मैसेज है जरा देखें तो नाम नहीं मिल रहा है आपका ढूंढे से भी तो। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का हमें नई दिल्ली से मैसेज पहुंचा है और जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का उत्तम नगर दिल्ली से होली चौक से मैसेज। अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री का हमें बलाशाह से सूरज लोढ़े, प्राची और एक लवे लोढ़े का मैसेज। इसके अलावा सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी का मैसेज। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सदाम का मैसेज। कुमार हेड़ा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान के साथ हमें लिख रहे हैं। मारहरा दरवाजा एटा से मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा का मैसेज और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का मैसेज। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे शाहजीनगर देगलुरू महाराष्ट्र से और एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा, हबीबा का पटियाला रोड गंजरनवाड़ा उत्तर प्रदेश से मैसेज। ये मैसेज हमें बड़ा बम चौक से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का मैसेज मिला है और हमें लिखा है ये किसने, राजेंद्र कुमार सचदेवा भवानीगढ़ पंजाब से हमें लिख रहे हैं। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें मैसेज पहुंचा रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज और बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार का गांधी चौक बाड़मेर से हमें मैसेज मिला है। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डागरी से डागरी बाबूराम जयपाल का मैसेज और हमें प्रदीप सलूजा का मैसेज मिला है जनकपुरी से। हमें ये किसने लिखा है देखें जरा, भगवती सोलंकी, मधुरानी, अनीता वर्मा, कौशल्या देवी, दयावती का मैसेज मिला है दिल्ली से और ये मैसेज दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। पंकज मोहट अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं और प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, भगवती सोलंकी, स्वामी अनिल त्यागी, सत्यप्रकाश गोयल दिल्ली से हमें लिख रहे हैं।
मकवतीर जी गड़बड़ मत करिए, एक जगह से मैसेज लिखिए अच्छा लगेगा। और इसके अलावा हमारे पास बहादुरगढ़ हरियाणा से मैसेज पहुंचा है अनिल आनंद अरविंद चौधरी का, और ये मैसेजेस और भी हैं बहुत सारे, लेकिन शामिल करूंगी एक गीत के बाद। फिलहाल ये गीत जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, इंसान जाग उठा फिल्म से चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माए लिखा है, और ये गीत की फरमाइश हमें भेजी है कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निपिसानी और मोहम्मद अफजाल मलिक ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

और अब कुछ और मैसेजेस। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशवर धान खुराना का बिहारी कॉलोनी दिल्ली शांधरा से मैसेज पहुंचा है। और हमें भवपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन, नेहा राजू, जगदीश देवांगन का मैसेज मिला। गुरमीत सिंह मीथा साउथ एक्सटेंशन से लिख रहे हैं और संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरया, जालंधर से हमें लिख रहे हैं। साथ में ये मैसेज हमें मिला है परवेज आलम, ग्राम बलमी सिरसिया, जिला पूर्वी चंपारण बिहार से। अनवर साबरी, शनु साबरी, मुदस्सिर साबरी,

मुजक्किर और जरीफ अंसारी का मैसेज दाऊद सराय सहारनपुर से। डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार चगराओं पंजाब से। और टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का मैसेज मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बेटा बजाज का मैसेज। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का मैसेज। और नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला और विशाल का मैसेज। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मोहरकर का मैसेज। और हमें ये लिखा है फिर से सेम मैसेज, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का हमें शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मैसेज मिला है। और हमें राजेश कुमार वर्मा ने भी लिखा है इनके साथ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। और साथ में ये मैसेज हमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल का, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का मैसेज नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। गुगांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार, पुष्पेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार दूती का मैसेज हमें मिला। और हमें लिखा है राम नरेश चिक, रेखा चिक, करण, रचना, पूजा, ज्योति, सृष्टि और सावी चिक का मैसेज संगम विहार हनुमान मंदिर से। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति, पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी का रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं। अतर सिंह, राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, आद्विक समयपुर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। शिषपाल वर्धन का हमें मैसेज मिला है, शिषपाल अकेला गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं। और हमारे पास ये डॉक्टर सुधाकर, राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत, राजे यादव देशमुख, जगूताई, राजे यादव और कुमार संचिता, प्रथमेश, सर्वधर्षिता सानवी और प्रणाली का मैसेज पहुंचा है पूरे परिवार के साथ मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। ये मैसेज हमें लिखा है किसने, फिर से वही ढेर सारे रिपीट मैसेजेस, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत सादिया का मैसेज। और हमें ये मैसेज पहुंचा है फिर से वही सेम टू सेम, तो चलिए अब एक गाना सुना देती हूँ। हाँ, ये मिला नया मैसेज, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा का, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और हमें गौरी शंकर वर्मा का मैसेज मिला है नांगलोई से, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू का मैसेज, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी का, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य का, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। भाई आप पे तो मुझे पेमेंट लगा देना चाहिए, इतने सारे मैसेजेस एक ही मेल में आपने शामिल किए हैं। और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बाल करण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा का मैसेज। और कन्नौर कस्बा गुन्नौर यूपी से हमें फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फायरा फारिया और ताहिरा का मैसेज। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से लिख रहे हैं। और बाकी के मैसेजेस को कोशिश करूंगी शामिल करने की बाद में, लेकिन फिलहाल ये गीत हमारे पास जिसका इंतजार है आपको, इसकी फरमाइश हमें भेजी है, आज देखते हैं किसका मैसेज है ये, मोहम्मद सईद अबासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार ने ऊपरकोट मोहल्ला बुलंद शहर चौखुंडे से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत प्यार किए जा फिल्म से।

और अब हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, सबको शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह ने हमें मैसेज पहुँचाया है, कहाँ से, तोल लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। और हमारे पास अविराज सिंह भी हैं इनके साथ, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का मैसेज, और सूरत सिटी से अल्प जैन, अदिति, हिना और रश्मि जैन का मैसेज, और भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा, दत्तरेंगी से, मुकेश जैन, मुकेश, जतिन, ऋषभ, गुडविल, कमल नाब का हमें मैसेज मिला है, कहाँ से, बिहार से, और चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, कुमार सौरव महतो जमशेदपुर से हमें लिख रहे हैं, साथ ही खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा नानक चंद्रजी, और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का का मैसेज हमें, रेणु गोयल ने रोहिणी दिल्ली से लिखा है, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से, सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, सरिता और सुजाता चौरसिया का मैसेज। और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है, कहां से, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान का मैसेज हमें मिला है। और साथ में ये मैसेज किसने लिखा है, जगदीश कुमार, राहुल, रितिका नांगलोई से हमें लिख रहे हैं, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का मैसेज हमें मिला है, हर दिल अजीज होस्ट जी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का मैसेज, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी का मैसेज, मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन का मैसेज, और रामगढ़ कैंट से एडवोकेट एस एन मोदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर तस्नीम कौशल का हमें मैसेज मिला है, और दिव्या, सोनल, चेतना, पूनम, निमेश, परमिला जैन का, मलाड मुंबई से, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बिरडी से, नाना जी लाम से, मीना तेजस लाम से का, जय हर्षिता के साथ, और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस का हमें जनकपुरी सहारनपुर से मैसेज मिला है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल, कृष्णा राकेश का मैसेज, और सूरत सिटी से हमें अल्पा जैन, अदिति, हिना, रश्मि का मैसेज मिला है। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, नामदेव, संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव का बघेरा दुर्ग से, लेकिन सोच रही हूँ कि अब एक प्यारा सा गीत आप तक पहुँचा दूँ, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है किसने, ये रहा, सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग की पसंद, ये गीत ये रहा आपके लिए।

0: तो भाई अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, तो जल्दी से कुछ और नाम शामिल कर लूं। बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष का हमें मैसेज मिला है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, और हमें लिखा है बिट्टू भाटिया, रजत भाटिया, रीता भाटिया ने मयंक भाटिया के साथ झज्जर हरियाणा से। और हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, हमें काठमांडू नेपाल से माधव थापा किरण शर्मा का मैसेज भी पहुंचा है, लेकिन अब वक्त ज़्यादा नहीं है तो बातें फिर कभी। लेकिन 11:10 पर फिर मिलूंगी लेकर तस्वीर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिजिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिजिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल राजधानी बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितम्बर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: इससे पहले उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा ने दिखाया है कि उज़्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगाव लगातार बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इस बीच नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। अमरीका ने कल रात होर्मूज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी सेना ने लड़ाक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी प्रसारक के अनुसार इस हमले में ईरान के कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। गृह मंत्री अमित

शाह ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एक बेहतरीन प्रशासक और विद्वान थे। उनकी अमिट विरासत नए नेताओं के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने कल थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मुझे ये म्यूजिक इतना पसंद है ना कि दिल करता है बस झूमते झूमते आपके साथ इस सफर में चलती रहूं। तस्वीर का ही सफर है। 11:11 और 11 सेकंड हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस, और इस सफर में हम आपको किसी ना किसी खूबसूरत जगह की सैर पर तो लेकर चलते ही हैं। तो भाई आज कहाँ ले चलूंगी ये भी बताऊंगी जरूर, लेकिन पहले ही बता दूं कि भाई अगर आप घूमते फिरते हैं, अगर आप अलग अलग जगहों की सैर पर जाते हैं, तो ये न सिर्फ आपकी आंखों के लिए एक ट्रीट होती है बल्कि आपका ब्रेन भी कुछ ना कुछ सीखता है, लर्न करता है। और इसके अलावा कहीं थोड़ी बहुत अगर टेंशन आप लेकर चल रहे हैं तो वो भी आपको घूमने फिरने से दूर हो जाती है, और सेहत तो दुरुस्त रहती ही है। तो भाई जब भी मौका मिले निकल पड़िए घूमने फिरने, और अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमा देती हूँ। आज हम ले चलेंगे आपको झारखंड के देवघर। जी हाँ, झारखंड का देवघर बहुत ही खूबसूरत जगह है। हरे भरे और खूबसूरत वातावरण में बसे इस छोटे से शहर में हर साल कई हिंदू तीर्थयात्री आते हैं। देवघर नाम का अर्थ है देवताओं का निवास, जिससे लगता है कि इस इलाके में लोगों से ज्यादा देवता रहते हैं। लेकिन सिर्फ एक मंदिर बैद्यनाथ मंदिर है यहाँ पर, जिसकी वजह से इस शहर को बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। देश के 12 प्रमुख शिवलिंगों में से एक इस ऐतिहासिक मंदिर में स्थित है, जिसकी व्यापक रूप से पूजा की जाती है। हर साल जुलाई और अगस्त के बीच लाखों शिव भक्त देवघर की घुमावदार सड़कों पर उमड़ते हैं और अपने प्रिय भगवान को गंगा जल से स्नान कराते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ आपका जाना जो है वो सचमुच एक यादगार अनुभव हो सकता है। देवघर के हरे भरे नजारों का आप आनंद ले सकते हैं। हाइकिंग, रोपवे की सवारी, बोटिंग, ऐसी कई लोकप्रिय गतिविधियां हैं जिनमें आप यहां जाकर हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज आपको लेकर देवघर की यात्रा पर। हमारे साथ इस खूबसूरती में डूब जाइए और हर कोने को अनुभव कीजिए। लेकिन ऐसे ही नहीं, गीतों के साथ साथ हम इस सफर को पूरा करेंगे। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ।

दोस्तों, देवघर प्रशासन ने इस जगह को पर्यटन के लिहाज से बढ़ावा देने के लिए शानदार काम किया है। यहाँ कई उत्कृष्ट होटल्स हैं जहाँ पर्यटक आराम से ठहर सकते हैं और कई रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ वो स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आने वालों के लिए परिवहन के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हैं। देवघर एक छोटा सा जिला होने के बावजूद पर्यटकों को बहुत कुछ देता है। ये खास तौर से एक धार्मिक क्षेत्र है जो बैद्यनाथ मंदिर और श्रावणी मेले के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ कई और मंदिर भी हैं, आश्रम है, पर्यटन स्थल है, पार्क, नदियाँ, बहुत कुछ है। हर साल कई पर्यटक प्रसिद्ध श्रावणी मेले और देवसंग मठ दुर्गा पूजा में भाग लेने के लिए देवघर आते हैं। अक्टूबर से मार्च के महीने की अगर मैं बात करूं तो इस तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए ये बेस्ट टाइम माना जा सकता है। अक्टूबर से फरवरी तक का शीतकाल, जब मौसम सुहावना और शांत होता है, देवघर का सबसे खूबसूरत समय होता है। पहले महीने मार्च को छोड़कर यहाँ की गर्मियां बहुत गर्म और असहनीय होती हैं। तापमान कभी कभी 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे आनंद लेना असंभव हो जाता है। देवघर के मानसून की बारिश बहुत कम होती है, लेकिन उमस जरूर रहती है और घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मौसम के अनुसार अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर देखने के लिए क्या है ये भी जरूर बताऊंगी, पर इस गीत के बाद।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: ग्यारह बजकर 25 मिनट 19 सेकेंड्स हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्शरेखा क्रिस्टल वॉइस, और हम तस्वीर की सफर में आज निकले हैं देवघर की सैर पर। तो देवघर में घूमने के लिए क्या क्या है ये भी बता दूं आपको। बात करें इस जगह की तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कई श्रद्धालु इस पवित्र मंदिर में प्रार्थना करने के लिए हर साल पहुंचते हैं। नंदन पहाड़ नामक एक छोटी पहाड़ी नंदी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। पहाड़ी पर स्थित मंदिरों में शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिक की कई मूर्तियां देखी जा सकती हैं। पहाड़ी से आसपास के क्षेत्र सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य भी दिखाई देते हैं। यहां पर राधा कृष्ण को समर्पित एक और भव्य मंदिर है जिसे नौलखा मंदिर के नाम पर जाना जाता है। ये भव्य मंदिर अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है जो बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवगंगा आप चाहे तो देखने जा सकते हैं। बाबा मंदिर के पास ही एक पवित्र सरोवर है जहां श्रद्धालु दर्शन से पहले स्नान करते हैं। बैद्यनाथ मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है शिवगंगा। इस तालाब का रावण से जुड़ा एक लंबा इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि शिव और विष्णु का मिलन यहीं हुआ था। अनुकूल चंद्र से ने सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायियों के लिए ये एक पवित्र स्थान है। देवघर के आसपास भी घूमने की बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे कि झारखंड का मंदिर नगर देवघर भारत का एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, और इस नगर में हर साल लगभग 7 से 8 मिलियन श्रद्धालु पहुंचते हैं, और खास तौर से श्रावण महीने में यहां काफी भीड़ रहती है। यहां आसपास के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो बासुकीनाथ मंदिर है जो कि देखने लायक है, और ये जगह झारखंड में दुमका जिले में देवघर दुमका राजमार्ग पर स्थित है। बासुकीनाथ हिंदुओं का लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। बासुकीनाथ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण ये मंदिर है, और देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों तीर्थयात्री हर साल मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं जो यहाँ के मुख्य देवता हैं। श्रावण माह की अगर मैं बात करूं तो इस भव्य मंदिर में भीड़ काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यटक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर मैं बात करूं तपोवन गुफाओं की और पहाड़ियों की तो देवघर में ये भी देखने लायक जगह है। देवघर में से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर तपनाथ महादेव नामक शिव मंदिर है, और कई गुफाएं भी मौजूद हैं। इनमें से एक गुफा में शिवलिंग स्थापित है, और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि यहां तपस्या करने के लिए आए थे। धनबाद आप जा सकते हैं, भारत की कोयला राजधानी है ये, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये भटिंडा जलप्रपात, मैथन बांध और टॉप चांची झील के लिए काफी फेमस है। भारत की कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध धनबाद झारखंड के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। धनबाद एक प्रमुख वाणिज्यिक कोयला उत्पादक है, और सबसे अधिक संख्या में कोयला खदानों, कारखानों और औद्योगिक केंद्रों का स्वामी होने के लिए जाना जाता है। कोयला उद्योगों की मौजूदगी की वजह से इस शहर ने अपार व्यावसायिक सफलता भी पाई है। सबसे अच्छा समय यहां घूमने का है अक्टूबर से मार्च, और अगर मैं बात करूं तो शिखर जी आप जा सकते हैं। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ पर्वत पर स्थित शिखर जी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, और जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है ये। ऐसा माना जाता है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था, साथ ही कई अन्य भिक्षुओं ने भी यहां पर मोक्ष पाया था, और यही वजह है कि ये जैन तीर्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थलों में से एक है। शिखर जी की ऊंचाई 1350 मीटर के लगभग है जो इसे राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है, और अगर आप चाहें तो हजारीबाग पहुंच जाइए। प्रसिद्ध होने की वजह है इस जगह के राष्ट्रीय उद्यान, कैनरी पहाड़ियाँ, हजारीबाग झील, ये झील जो है ये भी काफी फेमस है और इसके लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। रांची से 93 किलोमीटर दूर छोटा नागपुर पठार में स्थित हजारीबाग घने जंगलों और चट्टानी संरचनाओं और झीलों सहित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक सुंदर जगह है। हजारीबाग के जंगल ज्यादातर अनछुए हैं और हरियाली से परिपूर्ण है। अपने सर्वोत्तम और शुद्धतम रूप में है ये जगह। हजारीबाग समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर मध्य पठार, छोटा नागपुर पठार के तीन भागों में से एक जिसे माना जाता है, इस पर स्थित है और यहाँ चट्टानी रूप से मजबूत अखंड पहाड़ियां हैं जो मिट्टी और चट्टानों के स्पर्श के साथ हरे भरे नजर आते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं और अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ जाएंगे तो ये मौसम यहाँ जाने के लिए सबसे सही है। बोकारो स्टील सिटी आप जा सकते हैं। झारखंड में भारत की इस्पात राजधानी इसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क, पारसनाथ पहाड़ियां, बोकारो इस्पात संयंत्र, ये सभी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। बोकारो झीलों, हरियाली और खूबसूरत पार्कों से घिरे इस शहर की अगर मैं बात करूं तो इसे विश्राम और शांत के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। 1960 और 1970 के दशक में भारत की औद्योगिक क्रांति का केंद्र होने के साथ साथ बोकारो ने देश के सबसे सुनियोजित शहरों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। दामोदर नदी के किनारे बसा ये शहर देश में इस्पात और लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ कुछ सबसे बड़े कारखाने भी मौजूद हैं। चारों ओर से हरे भरे क्षेत्र से घिरा होने के कारण ये शहर कई खूबसूरत झीलों और पार्कों से सुशोभित है, तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो त्रिकुट पहाड़ है देवघर की एक पहाड़ी जो सुरक्षित प्राकृतिक विश्राम स्थल है। ट्रैकिंग और वन्य जीव रोमांच जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए देवघर के दर्शनीय स्थलों के लिए एक बेस्ट प्लेस है। देवघर के पास स्थित त्रिकुट पहाड़, ये तीन चोटियां हैं जिनमें सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 2470 फीट की ऊंचाई पर है। शिखर पर प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम स्थित है। ये एक तीर्थस्थल होने के साथ साथ प्राकृतिक विश्राम स्थल भी है। शिखर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, तो आपको इस जगह को भी जरूर देखना चाहिए। और भी बहुत कुछ बताऊंगी मैं आपको देवघर के बारे में, लेकिन इस गीत के बाद।

भाई देवघर घूमते घूमते अगर भूख लग जाए तो क्या खाना है ये भी बता देती हूँ। देवघर के पारंपरिक भोजन में भारतीय और क्षेत्रीय व्यंजनों का मिश्रण है। आसपास के कई भोजनालय छोला भटूरा, दही भल्ले और जलेबी जैसे क्षेत्रीय व्यंजन परोसते हैं। पनीर बटर मसाला, चिकन टिक्का मसाला जैसे लोकप्रिय भारतीय व्यंजन भी यहाँ मिल जाएंगे। आ गया ना मुँह में पानी, तो पहुँचाइए देवघर। देवघर के निवासी यहाँ के विविध व्यंजनों से बेहद प्रभावित है। आधुनिक जीवन शैली की वजह से देवघर के निवासी फास्ट फूड के भी शौकीन है। यहाँ के पारंपरिक खान पान में रोटी, चावल, दाल और सब्जी के अलावा स्थानीय फास्ट फूड के रूप में धूसका और बड़ा बहुत लोकप्रिय है। देवघर की प्रसिद्ध मिठाइयों में खोआ पेड़ा, खीर मोहन का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। पिछले कई दशकों से देवघर और उसके आसपास अलग अलग स्वादों और किस्मों के लजीज व्यंजनों को परोसने वाले कई भोजनालय खुल चुके हैं। स्वाद के अलावा इन रेस्टोरेंट्स का माहौल और परिवेश भी यकीनन आपको पसंद आने वाला है। यहाँ कीमतें भी काफी वाजिब हैं, तो अगर आपको यहाँ जायका चखना है तो बिल्कुल आप इन रेस्टोरेंट्स का रुख कर सकते हैं।

दोस्तों भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ मंदिर बैद्यनाथ धाम मंदिर इसी तीर्थ नगर में स्थित है, जिसे देवघर यानी भगवान का निवास स्थान कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से श्रद्धालु भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने और स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को देखने के लिए इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। देवघर अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन

स्थल है। देवघर के पास दो नदियां बहती हैं, यमुनाजोर और धारुआ। मंदिरों का शहर देवघर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम की वजह से एक लोकप्रिय जगह है। ये भूमि परंपराओं में डूबने या ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए आदर्श प्लेस है। और अगर मैं बात करूं, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, जो अपनी समृद्ध धार्मिक विरासत, आध्यात्मिक मेलों और विभिन्न समुदायों के मेल मिलाप के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी गलत नहीं है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है इस जगह का। देवघर को बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम के रूप से तो जाना ही जाता है। ये देश की 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ हर साल सावन महीने में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है, जहाँ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और भी कुछ बताऊंगी जरूर, लेकिन इस गीत के बाद।

दोस्तों, देवघर में विभिन्न संस्कृतियों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, गुजराती और पंजाबी समुदाय के लोग लंबे समय से रहते हैं। यहाँ खास तौर से हिंदी, खोरठा और बंगाली भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि अंगिका और संथाली भी यहाँ की स्थानीय बोलियां हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ के त्योहारों और मेलों की, तो दीपावली, होली, छठ, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि के पर्व पूरे उत्साह के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ के आश्रम जैसे रिखिया योग आश्रम, सत्संग आश्रम और देवसंग आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र भी हैं। और अगर मैं बात करूं तो बाबा बैजनाथ धाम पर तो श्रावण के मौसम में, श्रावण माह पर या फिर किसी भी शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप इन किसी भी खास मौकों पर यहां पहुंच जाइए, क्योंकि देवघर इन सभी मौकों पर आपका दिल खोलकर स्वागत करता है। और फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद आगे सफर में क्या है जरूर बताऊंगी।

तो दोस्तों, तस्वीर के सफर में इतना ही। फिर किसी रोज आपसे मुलाकात जरूर होगी। आज के लिए मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ इस गीत के साथ विदा। इसके बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और फिर वक्त रहेगा घर आंगन का। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले

0: और आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ रेनू
2: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा और रेनू
1: मेरा प्यार भरा नमस्कार
2: जी।
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। तुम कर पल्लव झंकृत सितार, मैं व्याकुल विरह रागनी, तुम पत हो मैं रेनु,
2: तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की वेणु, तुम पथिक दूर के
1: शांत, और मैं बाट जोहती आशा, मैं बाट जोहती आशा।

0: दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज थी लता मंगेशकर की। और बात नीति शास्त्र की, तो नीति शास्त्र के अनुसार किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से, अपने मन से तीन प्रश्न पूछा जाए। पहला, कि मैं ये कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं, तो यानी इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए।
1: और फिर दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, यानी भविष्य का आकलन करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा प्रश्न जो स्वयं से पूछा जाना चाहिए दोस्तों, वो ये है, क्या मैं इसमें सफल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, यानी आत्ममूल्यांकन, अपनी क्षमताओं का ईमानदारी से आकलन करना, यही है सफलता का मूल मंत्र। और इसी से जुड़ा हमारा आज का प्रश्न भी है।
0: प्रश्न है कि आपको बताना है कि आपके अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के आपके अपने अनुभव क्या हैं।
1: और दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है वही fmgoldga@gmail.com।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अखियों के झरोकों से, आवाज थी हेमलता और शैलेंद्र की। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखियूल की चिंगारी बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। ये उद्गार है हिंदी और पंजाबी की प्रख्यात कवित्री लेखिका अमृता प्रीतम के।
1: जी, और अमृता जिन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया अपनी शर्तों पर, अपनी मान्यताओं पर, वो हमेशा स्त्री आजादी का एक संपूर्ण प्रतीक बनकर रही। वे एक विद्रोही लेखिका थी जिन्होंने अपने जीवन के हर एक शब्द को पूरी निर्भीकता और स्वायत्तता के साथ जिया,
0: वो भी उस समय जब सब कुछ इतना आसान नहीं था, बल्कि उसके लिए लड़ जाना होता था, जिद पर अड़ जाना होता था, जैसा अमृता ने किया। वो अपने बारे में अपना पता बताते हुए स्वयं कहती हैं कि जहां आजाद रूह की झलक पड़े, समझना वो मेरा घर है। पंजाबी भाषा की पहली प्रमुख कवित्री और लेखिका अमृता का लेखन भावनाओं, संवेदनाओं और प्रेम से ओतप्रोत रहा। वो जैसी थीं उन्होंने वैसा ही लिखा, बगैर किसी आवरण के। अमृता के लिए आजादी का मतलब था भावनात्मक आजादी और फिर सामाजिक आजादी। उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए ये दोनों आजादी हासिल की,
1: और जो पीड़ा उन्होंने अंदर महसूस की उस दौर की और महिलाओं पर जो उन्होंने देखा, उसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए उन्होंने वारिस शाह को संबोधित करते हुए बेहद मार्मिक और अमर कविता लिखी, अज आँखां वारिस नशानू, जो पंजाब की सांझी संस्कृति के टूटने और लाखों बेटियों के दर्द को दर्शाती है। उनकी भाषा और चिंतन में पंजाब की मिट्टी, सूफी संतों की उदारता और मानवता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट और उपन्यास पिंजर सच्चाई और साहस के अनूठे दस्तावेज हैं। कोरे कागज, सागर और सीपियां, 49 दिन, उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं।
0: उनकी रचनाओं में पीड़ा, विद्रोह और निश्चल प्रेम का अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी चित्रण मिलता है। वो पंजाबी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। उन्हें पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

0: कादम्बरी फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज में। और आज है कजरी तीज। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला ये त्यौहार प्रतीक है सौभाग्य, सुहाग और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का, जिसे सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं।
1: जी, आज के दिन विशेष की बात हो रही है और मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।
0: जी, और इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता गौरी के भवानी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती को सुहाग की 16 सामग्रियां जैसे सिंदूर, चूड़ियां, रोली आदि जो अर्पित की जाती हैं, और ताकि वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहे। इस त्यौहार का संबंध सावन भादों में घिर आई काली घटाओं से भी है, जिसमें महिलाएं एकत्रित होकर पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर इस समय नवविवाहित मायके में आने की उनकी परंपरा है और विरह और प्रेम को की अभिव्यक्ति का सुंदर चित्र खींचते हैं ये कजरी गीत।
1: जी, और इस उत्सव में दिन भर निर्जला या जलीय व्रत रखकर महिलाएं जो है 16 श्रृंगार करती हैं और अर्घ्य देखती हैं शाम को चंद्रमा को। और इस प्रकार रेनू जो इस त्योहार का जो संबंध है वो प्रकृति से है। भाई, नीम के पेड़ पर या उसकी डाली को देवी नीमड़ी माता मानकर पूजा जाता है। देखिए, आजकल जो है तरह तरह का फ्लू फैला हुआ है ना,
0: जी, जी।
1: तो देखिए, हमारे जो पर्व हैं, त्योहार है, वो हमारी संस्कृति जो है वो सीधा प्रकृति से जुड़ी है। नीम का इस समय प्रयोग करना चाहिए ताकि आप तरह तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनसे बच सकें। और जो नीमड़ी माता है उनकी जो पत्तियों से जो आपने बता रही है ना, नीम रोगनाशक हाँ। है और वातावरण शुद्ध करने का भी काम करता है। तो उसकी पूजा करना का अर्थ है कि उनको जीवन में उतारना, अंगीकार करना, स्वीकार करना, ताकि आपका परिवार बीमारियों से दूर रहे और उत्तम स्वास्थ्य जो है उसको मिले।

0: दुल्हन एक रात की, इस फिल्म से आपने ये गीत सुना। फिल्म थी, आवाज़ थी लता मंगेशकर की।
1: जी, और रेनु, आज जो क्वेश्चन हमने पूछा था, प्रश्न पूछा था कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, आपके अपने अनुभव क्या है, और ईमेल आईडी थी fmgoldga@gmail.com और fmgoldair@gmail.com। और हमारे पास श्रोताओं के, सुनने वालों के बहुत सारे जवाब आ गए हैं, ईमेल आ गई है, तो क्यों ना हम पढ़ दें।
0: हाँ बिल्कुल, और मेरे पास ये जो पहली मेल मुझे मिली है, ये है नवीन भाटिया की, एज इट इज, जैसा कि वो हमेशा पहले लिखते हैं। और उन्होंने लिखा है कि कड़ी मेहनत और लगन और साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद और उसमें उस पर अटूट विश्वास, ये है सफलता का मूल मंत्र उनके अनुसार।
1: जी, और राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी वासीसार हरियाणा से कह रहे हैं कि हर इंसान में कोई प्रतिभा या कोई कमी अवश्य होती है, अपनी प्रतिभा को पहचान कर निखर कर आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए, ये कुछ नहीं कह सकता, और ऐसा सोचकर कमजोर ना करें, और पता नहीं आप कहाँ कहाँ से इतने बढ़िया गीत सुनते हैं और अपनी मेहनत से निकाल कर लाते हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं तो उसका धन्यवाद हम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली मेल
0: है मेरे पास, ये भी नियमित श्रोता है हमारे, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी और शांति नगर से, सोनीपत से ये लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि समय का सदुपयोग और अच्छी सोच से जो है वो सफलता मिलती है। तो समय का सदुपयोग तो सही बात है रश्मि जी, समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, अगर समय पर हर काम करते हैं तो सफलता।
1: और गौरी शंकर जी नागलोई से कह रहे हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करोगे सफलता अवश्य मिलेगी, अगर एक काम में कामयाबी न मिले तो दूसरे काम में भी कोशिश करो, समय जरूर लगता है, कामयाबी जरूर मिलेगी, बातें सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। और इसके अलावा एक और हमारे पास जो मेल आई है वो है अलमास महाराष्ट्र से, कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सफलता का मूल मंत्र है लगातार चलते रहना, क्योंकि थमता वही है जो हार मान लेता है। और एक और हमारे पास जो मेल आई है वो है उमेश कुमार खयाला से, वो कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत और सही दिशा और धैर्य से काम करना। जी, बहुत हमारे श्रोता हमें सिखाते हैं, हम सीखते हैं अपने श्रोताओं से, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी से अपना भाई मोबाइल आपके हाथों में, अपना मोबाइल का मेल बॉक्स खोलिए और फटाफट कर दीजिए मेल जवाब कि आपके हिसाब से सफलता का मूल मंत्र क्या है। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
0: जी बिल्कुल, और सफलता तो देखिए कुछ कुछ अपने अपने ऊपर तो निर्भर होती ही है, परिवार के संस्कार और जो परिवार उसके पीछे होता है, माता पिता की जो सीख होती है वो भी बहुत कुछ कारण होती है। ऐसी ही बात आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे के अगर अच्छे संस्कार दिए जाए, परवरिश दी जाए, तो बच्चों में स्वतः ही संस्कार और अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है। झारखंड की धनबाद की रहने वाली ऐसी ही दो सगी बहने हैं, प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल, जिन्होंने अपने घर से मिले संस्कारों की खुशबू पूरी दुनिया में बिखेर दी। जी हाँ, इन दोनों बहनों ने अभी हाल ही में

0: श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का ऑनलाइन सस्वर पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया
1: जी। और क्योंकि देखिए अभी हम रक्षाबंधन का त्योहार अभी मनाया है और आने वाला जो ये सप्ताह है इसमें जन्माष्टमी मनाया जाएगा, तो अभी गीता की चर्चा के बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वैश्विक ऑनलाइन गीता का ये ऐतिहासिक ऑनलाइन कार्यक्रम जो है सेंट्रल चिन्मय मिशन द्वारा आयोजित किया गया था। इसके दुनिया भर में बहुत सारे प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसमें ये दोनों बहनें शामिल थी। उत्कृष्ट और सटीक पाठ के लिए गिनीज बुक की ओर से दोनों बहनों को आधिकारिक प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।
0: बिल्कुल। और प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल की असाधारण सफलता के पीछे उनके माता पिता की अनूठी परवरिश और घर का आध्यात्मिक माहौल है। उनके घर में पिछले 6 वर्षों से लगातार गीता पाठ और आध्यात्मिक प्रवचन होते रहते थे, जिससे दोनों बहनों ने इन कठिन श्लोकों को खेल खेल में ही आत्मसात कर लिया। फिर माता पिता के मार्गदर्शन से दोनों बहनों ने कठिन अभ्यास किया और इसी का परिणाम था कि उन्होंने शब्दों की पूर्ण शुद्धता और सटीक उच्चारण के साथ महज 5 मिनट में गीता के 15वें अध्याय का पाठ शुरू कर लिया।

0: गोपाल कृष्ण फिल्म से भी आपने सुना हेमलता को, और दिल्ली जिसकी फिजाओं में हमेशा साहित्य और कला रची बसी रही है, एक बार फिर उसे महसूस करने का अवसर मिलने वाला है। जी हाँ, दिल्ली में रचनात्मकता का एक नया उत्सव शुरू होने जा रहा है, दिल्ली कंटेम्प्रेरी आर्ट वीक। इंडिया गेट के पास स्थित ऐतिहासिक बीकानेर हाउस में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला ये आर्ट वीक दिल्ली और दक्षिण एशियाई समकालीन कला को बढ़ावा देने वाला सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक है।
1: और इस आयोजन में दिल्ली की 6 प्रमुख जो महिलाओं द्वारा संचालित आर्ट गैलरी है, वो एक साथ मिलकर समकालीन कला शैलियों का प्रदर्शन कर रही हैं। और जो इस साल की प्रदर्शनियों में जलवायु, पर्यावरण, पहचान, स्मृतियों और विस्थापन जैसे गंभीर विषयों को मूर्तियों, पेंटिंग्स और फोटोग्राफी के जरिए उकेरा जाएगा। और इस पर 2 विशेष क्यूरेटेड प्रदर्शनियां भी शामिल हो रही हैं, यानी वो प्रदर्शनी जो विशेषज्ञ द्वारा एक खास थीम, कहानी या विचार के आधार पर तैयार की जाती हैं। और सुनने वालों को बता दें कि इसके अलावा इस इवेंट के दौरान यहाँ आर्ट लवर्स के लिए क्यूरेटेड वॉक थ्रू कार्यशालाएं और विचार विमर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो अगर आप इस कला की अनूठी दुनिया को करीब से देखना और महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ जाने के लिए हम बता दें कि एंट्री बिल्कुल फ्री है, यानी आपको कोई टिकट नहीं लेना है। लेकिन यदि आप आर्ट एक्सपर्ट्स के साथ पूरी प्रदर्शनी को समझने के लिए पब्लिक वॉक थ्रू में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और समय भी रश्मि जी एक बार बता देते हैं हम श्रोताओं को, समय है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां जाकर कला की इस दुनिया का अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए।

0: आशा भोसले और रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बम्बई का बाबू।
1: और हमने प्रश्न पूछा था रेनू, सफलता का मूल मंत्र क्या है, और हमारी जो मेल थी वो थी
0: fmgold@gmail.com।
1: जी, और एक और मेल आ गई है हमारे पास। तो कामायनी हमें कह रही है कि मेरे विचार से सफलता का मूल मंत्र है खुद पर भरोसा रखना। कई बार आप अपने पर भरोसा ही खो देते हैं, लेकिन आपका भरोसा ही आपको सफल बनाता है। और इसके अलावा भी मेरे पास मेल्स आ गई हैं, और ये बता रही हैं सुरभि, वो कह रही हैं कि भाई सफलता का मूल मंत्र जो है वो है कि नतीजे की चिंता मत कीजिए, सफलता एक दिन खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। ये तो वही बात हो गई, हमने अभी गीता की बात की थी।
0: बिल्कुल, नीति शास्त्र में कहते हैं कि सफलता का कोई जो है वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है।
1: जी, गीता कहती है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे साथ राघव जुड़ गए हैं दिलशाद गार्डन से, वो कह रहे हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाना उसका सबसे आसान रास्ता है। तो आप भी जल्दी से अपना मोबाइल खोलिए और मेल कर दीजिए हमें, सफलता के बारे में अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए, और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
0: जी बिल्कुल, और बात करते हैं अब कार्यक्रम में आगे केरलम के सबसे अनोखे प्रसिद्ध मंदिर मन्नारशाला की।
1: जी,
0: मन्नारशाला नाग मंदिर, ये स्थान अपनी सदियों पुरानी परंपराओं, घने जंगलों और विशेष मान्यताओं के लिए जाना जाता है। पौराणिक काल के इस ऐतिहासिक मंदिर की सांस्कृतिक परंपराएं पूरी दुनिया में अनूठी हैं।
1: जी, और इस मंदिर परिसर के चारों ओर जो फैला हुआ घना जंगल है ना, उसके रास्तों पर नाग देवताओं की 30,000 से अधिक पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। ये भारत में सर्प मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पूजा पाठ का सारा काम जो है वो पुरुष पुजारी नहीं करते, बल्कि एक महिलाएं संभालती हैं, और उन्हें भक्त आदर से मन्नारशाला अम्मा कहते हैं। और परिवार की जो सबसे बड़ी बहू होती है ना, वही बनती है यहाँ की मुख्य पुजारी। और ये पवित्र स्थान जो है वो कहते हैं अगर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगनी हो, और अनूठी परंपराओं के कारण जो भक्त हैं उनके बीच में गहरी आस्था का ये केंद्र है।
0: बिल्कुल, और अक्टूबर नवंबर यानी मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो तुलाम महीने के आइलम नक्षत्र पर यहाँ सबसे बड़ा और भव्य उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा कन्नी महीने यानी सितंबर अक्टूबर की आइलम जो नागराज का जन्मोत्सव माना जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दिन नागराज और नाग यक्षी की मूर्तियों को एक भव्य सांस्कृतिक जुलूस में मंदिर के पुश्तैनी घर ले जाया जाता है, जिसका नेतृत्व करती है मन्नारशाला अम्मा। सांस्कृतिक रूप से मन्नारशाला केरल की प्राचीनतम सर्प कापू यानी कि सर्प उपवन परंपरा का प्रतीक है, और ये परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति, घने जंगलों और जीवों, विशेषकर सांपों की रक्षा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो आप जब भी केरलम की यात्रा की योजना बनाइए तो केरलम के

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तेरे मेरे सपने। और बात संगीत की हो ही रही है तो संगीत की दुनिया की साउंडस्केप ऑफ इंडिया, यह है म्यूजिक शोकेस का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो इन दिनों चल रहा है नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, और आज है उसका आखिरी दिन।
1: और भाई संगीत के इस महाकुंभ में भारत के में जो है अब 15 से अधिक राज्यों से बहुत सारे बैंड और 150 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही इंडोनेशिया, मिस्र और नेपाल और यूके जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
0: इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संगीत की विविधता को वैश्विक मंच पर लाना और कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रमोटर्स और फेस्टिवल बुकर्स से जोड़ना है। इसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक आदिवासी लोक संगीत से लेकर समकालीन स्वतंत्र संगीत की उन अनसुनी आवाजों को सामने लाना है जो मुख्य धारा से दूर हैं।
1: और यहाँ पर जो होगा विशेष लाइव प्रस्तुतियाँ होंगी, पैनल चर्चाएं होंगी, नेटवर्किंग सत्र होंगे और ग्लोबल म्यूजिक डेलीगेट्स के साथ बिजनेस मैच मेकिंग जैसी गतिविधियां भी होती हैं। इस बार की जो थीम है ना रेनू, वो है जॉय ऑफ डिस्कवरी, और इस थीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संगीत प्रेमियों और वैश्विक इंडस्ट्रियल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कुछ नया और अनूठा खोजना है। तो दोस्तों, अगर आप भी संगीत की दुनिया की गहराइयों को समझना चाहते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत का आनंद लेना चाहते हैं एक ही जगह, तो भाई जाइए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और इसका भरपूर आनंद लीजिए। और यहाँ पे प्रवेश पूरी तरह से फ्री है और यहाँ जाने के लिए आपको कोई टिकट भी नहीं खरीदना है, लेकिन भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा। और यदि आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ और सुनते रहिए मधुर संगीत और उसका आनंद लेते रहिए।

0: ये मीठा सा गीत सुना आपने, फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आंखें और आवाज़ सुमन और मुकेश की। और लक्ष्मी जी, वैसे तो समय अब हमारी समाप्ति की ओर है कार्यक्रम का, लेकिन फिर भी एक मेल ले लेते हैं। ये मेल है इदरीस सैफी जी का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं और लिख रहे हैं ये कि आत्मविश्वास, मेहनत और कोशिश, यही है सफलता का मूल मंत्र।
1: जी बिल्कुल, और साथ में हम तो ये कहेंगे गिरकर उठना सीखिए, क्योंकि असफलता भी सफलता की तो तैयारी ही करवाती है। मेहनत के साथ धैर्य बनाए रखिए, और बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं मिलता। और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, दूसरों की राय से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और याद रखिए, सफलता का मंत्र है सीखते रहो, बदलते रहो और रुकना मत। और लेकिन हमें रुकना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि समय हो रहा है, घड़ी हमें कह रही है विदा लेने का।
0: बिल्कुल, क्योंकि अनुशासन भी सफलता की एक मूल मंत्र उसमें से है, कि अनुशासन का जीवन में बिल्कुल पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर अनुशासन रहता है तो ही आप समय पर हर चीज करते हैं और वही आपके सफलता का कारण होता है। लेकिन इसी को अजमाते हुए हम भी अब घड़ी
1: लेते हैं जी, और समेटते हैं ये कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन।
0: तो
1: और
0: मुझे यानी रेनू को
1: और रश्मि कुकरेति को दीजिए अनुमति, हमारा दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
2: घर आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4,000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप सभी का स्वागत है कलाकार बेमिसाल में।

प्यार तो हमें भी है बहुत सारा, बहुत ज्यादा ऐसे गानों से। वैसे इस गाने को लिखा किसने है? इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने, और दोस्तों इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। इस गाने में पर्दे पर नजर आए शम्मी कपूर और माला सिन्हा, और इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। दोस्तों अगर राज कपूर की बात की जाए तो उन्हें शोमैन कहा जाता है। उनकी जो बनाई फिल्में हैं बेहतरीन हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास उनके बिना अधूरा है। राज कपूर फिल्म के हर पक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, कहानी, कलाकार, लोकेशन, एडिटिंग और म्यूज़िक। इसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई थी, और अक्सर वो इसी टीम के मेंबर्स के साथ काम करना ही पसंद करते थे। ख़ास तौर से पर्दे के पीछे वाली उनकी जो टीम हुआ करती उसमें अक्सर चुनिंदा लोग ही हुआ करते थे। राज कपूर के साथ काम करना किसी अचीवमेंट जैसा था, और राज कपूर की इसी टीम के एक परमानेंट, जिसे कहते हैं ना स्थाई मेंबर हुआ करते थे, एक गीतकार उनके मनपसंद, उनका नाम था शैलेंद्र। जी हाँ, राज कपूर की ज्यादातर फिल्मों के जो गाने हैं शैलेंद्र ने ही लिखे हैं। तो आज कलाकार बेमिसाल शैलेंद्र के नाम।

हिंदी सिनेमा का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है ये। जी हाँ, आज भी बरसों बाद इस गाने को सबसे ज्यादा खूबसूरत गाना माना जाता है प्रेम के मामले में। और इस गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। फिल्म का नाम है श्री 420। ये वो फिल्म थी जिसकी चर्चा विदेशों तक हुई और आज भी इस गाने को वहाँ चलाया जाता है दुकानों पर। जी हाँ, इसका जलवा इतना ज़बरदस्त रहा है। दोस्तों, गीतकार शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा था और संगीत शंकर जयकिशन का था। गीतकार शैलेंद्र, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं, कलाकार बेमिसाल में, उनका पूरा नाम था शंकर दास केसरी लाल। शैलेंद्र अपने ज़माने के एक बड़े शायर भी थे। जी हाँ, और फिल्म प्रोड्यूसर भी रहे हैं वो। 30 अगस्त 1923 को जन्मे थे शैलेंद्र। उनके परिवार का ताल्लुक आरा बिहार से था। उनके पिता एक मिलिट्री हॉस्पिटल में काम किया करते थे, लेकिन आमदनी बहुत कम होने की वजह से उनका परिवार मथुरा जाकर बस गया। यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई के दौरान शैलेंद्र की दोस्ती इंद्र बहादुर खरे से हुई, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़े कवि और हिंदी के प्रोफेसर हुए। इंटर कॉलेज में दोनों दोस्त मथुरा के एक रेलवे लाइन के पास बैठकर कविता लिखा करते थे। बरसों तक ऐसा किया उन्होंने। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद शैलेंद्र मुंबई चले गए और उनके दोस्त कवि सम्मेलनों में नाम कमाने लगे। शैलेंद्र उनका उपनाम था, यानी कि पेन नेम, और आगे चलकर इसी नाम से उन्होंने बहुत बड़ी पहचान बनाई।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आज बातें हो रही हैं शैलेंद्र की। गाता

लता मंगेशकर और किशोर दा की आवाज़ में गाइड फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी, और ये गाना फिल्माया गया था वहीदा रहमान और देव आनंद पर। एक ड्रीम फिल्म कही जा सकती है गाइड। जी हाँ, इसका कोई ऐसा गाना है जो आपको अच्छा ना लगा हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके हर एक गाने में जैसे रूह फूंकती है शैलेंद्र ने, और संगीत तो है ही लाजवाब एस डी बर्मन साहब का। गाइड को उसके म्यूजिक के लिए भी बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। दोस्तों, बातें हो रही हैं शैलेंद्र की, कैसे वो मुंबई आए इसके बारे में हम बात कर रहे थे। मुंबई आने के बाद करियर के शुरुआती दौर में शैलेंद्र ने घर का खर्च चलाने के लिए भारतीय रेलवे में सहायक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नौकरी करते करते गजल कविताएं और गाने भी लिखते रहे। ये 1947 की बात है। शैलेंद्र अक्सर मुशायरों में शिरकत किया करते थे। ऐसे ही एक प्रोग्राम में शैलेंद्र ने एक गजल जलता पंजाब सुनाई। यहाँ राज कपूर भी मौजूद थे। राज कपूर ने अपनी फिल्म आग के लिए, उन दिनों आग बना रहे थे वो, और इसे खरीदने की कोशिश की कि भाई बड़ी अच्छी सी गजल है, ये मुझे बेच दो। लेकिन शैलेंद्र ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा अपनी गजल को, और फिल्मों से जुड़ने से भी इनकार कर दिया। ये 1948 की बात है। लेकिन फिर फिल्मों से कैसे जुड़े बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले ये गाना, कहीं ना जाना।

अब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके जुल्म और सितम सर आंख पर ही रखते हैं ना, लाख शिकायतें हों लेकिन फिर भी बातें भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं। दोस्तों, इस गाने को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, और इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं। असली नकली फिल्म का ये गाना है और बातें हो रही हैं शैलेंद्र की। शैलेंद्र ने मना कर दिया था राज कपूर को कि मैं अपनी गज़ल आपको नहीं बेचने वाला हूं और ना ही मुझे फिल्मों में आना है। लेकिन साल 1949 में शैलेंद्र के हालात बदले और मन भी बदल गया। उनके घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए और इस बार उन्होंने खुद राज कपूर को अप्रोच किया। राज कपूर उन दिनों बरसात बना रहे थे, उनके दो गाने अभी भी लिखे जाने बाकी थे। राज कपूर ने शैलेंद्र को, मतलब शैलेंद्र की बात को मान लिया और वो जो दो गाने थे उनको लिखने की जिम्मेदारी शैलेंद्र को सौंप दी। दोनों गाने हिट रहे और शैलेंद्र राज कपूर की टीम का हिस्सा बन गए। इस टीम में राज कपूर, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन थे। तीनों जब भी एक साथ आते कमाल के गाने सुनने को मिलते। राज कपूर की ज़्यादातर फिल्मों के गाने शैलेंद्र ने ही लिखे हैं और शैलेंद्र के आने के बाद राज कपूर की जो फिल्मों का म्यूज़िक है वो भारत के अलावा बाहरी देशों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिलहाल तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ चोरी चोरी फिल्म का गाना। आपको तो कहीं नहीं है जाना, यहीं रहना है ना।

चोरी चोरी फिल्म का एक गाना है जो आपने सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में, और एक बार फिर से शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र की जोड़ी जिन्होंने ये शानदार गाना तैयार किया। दोस्तों, शैलेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब और लोकप्रिय गीतकारों में से एक माने जाते हैं। बरसात से शुरू हुआ था उनका सफर, इसके बाद उन्होंने आवारा, बादल, आनंद मठ, दो बीघा जमीन, श्री 420, मधुमति, कागज के फूल, असली नकली, प्रोफेसर, राजकुमार, संगम, मेरा नाम जोकर, जानवर, लव इन टोक्यो, तीसरी कसम, जूल थीफ और गाइड जैसी फिल्मों के गाने लिखे। शैलेंद्र हिंदी के साथ ही भोजपुरी सिनेमा के भी पसंदीदा गीतकार रहे। कई आइकॉनिक भोजपुरी जो फिल्में हैं उनके गाने शैलेंद्र ने लिखे, जैसे कि पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो और गंगा मितवा विधान नाच नचाबे आदि। इन सब फिल्मों के जो गाने हैं वो शैलेंद्र ने लिखे हैं। फिलहाल तो मैं आपको सुनाती हूँ प्रोफेसर फिल्म का वो गाना जिसको सुनने के बाद बहुत सारी लड़कियाँ रुक जाती हैं चलते चलते। हाँ

0: से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज।
1: मोहब्बत तो हमें है इन गानों से। दोस्तों, इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से गाने को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, और ये फिल्म प्रोफेसर का गाना है और इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने। दोस्तों, गीतकार शैलेंद्र प्रोड्यूसर भी रहे हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बनाई, तीसरी कसम, जो कि कमर्शली कामयाब नहीं रही, लेकिन इसे नेशनल अवार्ड मिला था। ऐसा कहा जाता है कि शैलेंद्र ने इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था और जब ये फ्लॉप हो गई तो उन्हें बेहद दुख हुआ था। हालांकि पूरी तरह से ये बात सच नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी आइकॉनिक मानी जाती है, क्लासिक मानी जाती है उनकी ये जो फिल्म थी। और 2016 में उनका एक गीत था, मेरा जूता है जापानी। दोस्तों, इसे हॉलीवुड फिल्म डेडपूल में शामिल किया गया था। मथुरा में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, गीतकार जन कवि शैलेंद्र मार्ग मथुरा। शैलेंद्र को 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया है, यहूदी अनाड़ी और ब्रह्मचारी के गानों के लिए। अपने गीतों के लिए शैलेंद्र आज भी बहुत ही शिद्दत से दोस्तों याद किए जाते हैं। और जो प्रोग्राम के लास्ट में एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ, ये गाना बहुत ही ख़ास है। ये गाना ख़ास इसलिए है क्योंकि इसकी एक लाइन शैलेंद्र लिख गए थे अपने जीवन काल में। ये लाइन है, जीना यहाँ मरना यहाँ। मेरा नाम जोकर फिल्म का एक गाना है जो कि 1970 में रिलीज़ हुई थी, और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी शैलेंद्र के जाने के बाद, लेकिन इस गाने को पूरा किया उनके बेटे शैलेंद्र ने। तो ये जो मुखड़ा है, ये शैलेंद्र का लिखा हुआ है, जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ गाना।

तो दोस्तों ये था गाना मेरा नाम जोकर फिल्म से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुकेश की आवाज़ में गाना था जिसे संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है शैलेंद्र ने। आपको कहीं जाना नहीं है, अभी उर्दू में खबरें होंगी और उसके बाद लेकर आऊँगी 2:30 पर आपके लिए संगीत.com। तो जुड़े रहें हमारे साथ यूं ही।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के

0: रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया है कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुक्ते नज़र इख्तियार करें। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सुतून को नोटिफाई किया है। भारतीय बहरिया ने INS निपुण को बहरिया में शामिल किया है। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है और 4000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और फुटबॉल में आज ताशकंद में भारत AFC Under-20 एशिया कप क्वालिफाई मुहिम का आगाज मुल्क शाम के खिलाफ मुकाबले से करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की। इस मौके पर योगा और मानस एकेडमी समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत के साथ काम करने वाले 4 वफद मौजूद थे। इसके बाद वजीर आजम मोदी ने बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत नजर किए। वजीर आजम मोदी आज शंघाई तआवुन तंजीम के मेंबर मुल्कों के कई रहनुमाओं के साथ दोतरफा बातचीत भी करेंगे। इनमें रूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के सुदूर के साथ मीटिंगें भी शामिल हैं। जनाब मोदी कल शंघाई तआवुन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह मीटिंग से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि टेक्सटाइल और मलबूसात का शोबा न सिर्फ भारत के सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है बल्कि ये लाखों अफराद के गुजर बसर का जरिया भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFTA के जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत और एक अकदार से मरबूत रहने के साथ साथ एक आलमी नुक्ते नज़र इख्तियार करें। फैशन सनत में खवातीन के उभरते रोल पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तकरीब में मौजूद तकरीबन 4000 तलबा में से 85% खवातीन है।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: विकसित भारत 2047 के नजरिए में तआवुन की खातिर नौजवानों पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा महज नौकरी तलाश करने वाले न बने रहें बल्कि वो नौकरी फराहम करने वाले और दीगर के लिए रोजगार के मौके कायम करने वाले बने। सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता 4 दहाई में NIFTA के तलबा और पेशावर अफराद ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अहम हुसूलियां भी हासिल की है और मुल्क का नाम रोशन किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉ प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया एक ऐसे सरकर्दा मुंतजिम और स्कॉलर थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपने पुख्ता अज़्म और दहाइयों पर मबनी अपनी अवामी जिंदगी में आईनी अकदार को तरजीह दी। जनाब शाह ने मजीद कहा कि उनकी मीरास रहनुमाओं को तरगीब देती रहेगी। हुकूमत ने आज 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के साथ सेमिकॉन 2.0 स्कीम को नोटिफाई किया है ताकि मुल्क में चिप मैन्युफैक्चरिंग के इको निज़ाम को फरोग दिया जा सके। इसके साथ ही आइंदा बरसों में भारत आलमी सेमीकंडक्टर सनत के बाजार का तकरीबन 10% हो सकता है और आलमी सेमीकंडक्टर के मामले में भारत एक ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के सभी 6 सुतूनों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात कही। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क को आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में पुख्ता तौर पर शामिल करने पर है। उन्होंने कहा कि आलमी सेमीकंडक्टर सनत के मुतालिका फरीकों के दरमियान ये एतमाद है कि भारत आइंदा दहाइयों में अहम सरमायाकारी के लिए एक सही और मुनासिब मकाम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: भारतीय बहरिया ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार जुमरे के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण को बहरी बेड़े में शामिल किया। इससे मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि हिकमत अमली की तब्दीलियों के इस दौर में निपुण जेरे आप खसूसी सलाहियतों में एक जबरदस्त इजाफा होगा जो गहरे पानी में कसीर रुखी कार्रवाइयों के लिए दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि निपुण से गोताखोरी और जेरे आप बचाव कार्रवाई के तौर पर कार्रवाई की मगरबी बहरी कमान की सलाहियतों में खातिर खा इजाफा होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम ने निपुण मुल्क में ही डिजाइन और तैयार किया है। नेपाल में गुज़श्ता हफ्ते तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 अफराद से ज्यादा का अब भी अता पता नहीं है। नेपाल की कुदरती आफात के खतरे को कम करने और उसके बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी के मुताबिक इतवार को 2,502 की तादाद से अब यह तादाद बढ़ गई है। नेपाल के सभी 8 अजला से लाशें बरामद कर ली गई हैं और बचाव कारकुन लापता और फंसे हुए लोगों की तलाश की खातिर कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान तकरीबन एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्टों में कम अज कम 933 वर्करों के फंसे होने का अंदेशा है। भारत की बचाव टीमें और दीगर माहिरीन पनबिजली प्रोजेक्टों की मलबे से बंद हुई सुरंगों के आसपास तलाशी की कार्रवाई कर रहे हैं। महकमे मौसमियात IMD आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के मशरकी हिस्सों में मौसमियाती तब्दीली का बड़ा असर पड़ रहा है। कुछ इलाकों में डैम के गेट्स को खोलना पड़ा, जबकि सैलाब की सूरत हाल के सबब कई इलाके मुश्किल हालात से दो चार हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मशरकी मध्य प्रदेश में तेज बारिश के सबब दरियाओं और डैम में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब कई इलाके मुश्किलात से दो चार हैं। शाहडोल में बाणसागर डैम में पानी की सतह बढ़ने की वजह से उसके गेट्स कुछ देर के लिए खोलने पड़े। चित्रकूट में मंदाकिनी दरिया में पानी की सतह तकरीबन 30 फुट बढ़ गई है। गोर्गी डैम टूटने के सबब कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि पानी के तेज बहाव से रामघाट के बड़े पुल को नुकसान पहुंचा। वजीर आला मोहन यादव ने कल चित्रकूट का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और राहत कैंप में लोगों का हाल जाना। महकमा मौसमियात ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: फुटबॉल में भारत के मर्दों की 20 साल तक की उम्र की कौमी टीम आज ताशकंद के दोस्त लेक स्टेडियम में मुल्क शाम के खिलाफ चीन के AFC अंडर 20 एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स मुहिम का आगाज करेगी। भारत को ग्रुप बी में मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारतीय टीम का मकसद 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी करना है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने T20 एशिया कप 2026 में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। कल रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड को 94 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा 64 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NIFT के तलबा पर जोर दिया है कि वो मुल्क की मालामाल सकाफती विरासत को बरकरार रखते हुए आलमी नुक्ते नज़र इख्तियार करें। हुकूमत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए के कुल अखराजात के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के सभी 6 सुतून नोटिफाई किया है। भारतीय बहरिया ने INS निपुण को बहरिया में शामिल किया है। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब के बाद राहत और बचाव कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है और 4,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और फुटबॉल में आज ताशकंद में भारत AFC अंडर 20 एशिया कप क्वालिफायर मुहिम का आगाज मुल्क शाम के खिलाफ मुकाबले से करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister

0: के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें

0: विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
0: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की

0: आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371-7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। संगीत.com में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, संगीत का असर सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं होता, बल्कि पौधों को भी बहुत खुशी मिलती है गाने सुनकर। खास तौर से क्लासिकल संगीत अगर पौधों को सुनाया जाए तो वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा साइंस कहता है। वैसे आपका मन कौन से गाने को सुनने के बाद खुश हो जाता है? मेरा मन तो इस गाने को बार बार सुनना चाहता है जो मैं सुनाने वाली हूँ अपना। आप मुझे बताना।

किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाज में सिलसिला फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी, और इसका संगीत दिया है शिव हरी ने। इस गाने को लिखा है किसने? जावेद अख्तर साहब ने। और दोस्तों आप जानते हैं कि सिलसिला फिल्म के इस गाने का जम्मू कश्मीर के एक शाही घराने से कनेक्शन है। इस गाने के मुखड़े की जो धुन है एक पारंपरिक डोगरी लोकगीत बाथरी दा आया बंजारा से प्रेरित थी, जिसे जम्मू कश्मीर के शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर करण सिंह ने एक एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया था। वैसे ये जो गाना है ना, ये जावेद अख्तर साहब का लिखा पहला रिलीज्ड गाना भी है। जी हाँ, वैसे उन्हीं का लिखा एक और गाना मैं आपको चाहती हूँ सुनाना, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में कुछ बताऊंगी आपको।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गाना है जो आपने सुना बिल्कुल अभी कुमार सानू की आवाज़ में। इस गाने को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और म्यूज़िक दिया है आर डी बर्मन साहब ने। ये गाना फिल्माया गया है मनीषा कोइराला और अनिल कपूर पर। वैसे जिसने इस गाने को एक बार सुन लिया वो कभी भूल ही नहीं सकता, कैसे भूलेगा, इतना सुंदर गाना जो है। दोस्तों ये जो गाना है ये देखने और सुनने दोनों ही रूपों में बेहद खूबसूरत है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, शायद आप जानते हो शायद आप ना जानते हो कि इस गाने में महबूबा की तारीफ में जो शब्द बोले गए हैं जिन्हें अंग्रेजी में मेटाफर्स और हिंदी में उपमा कहा जाता है वो संगीत के इतिहास में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। सुना होगा ना आपने ध्यान से, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन। सुना है कभी ऐसा गाना? नहीं ना। नहीं, गाने तो और भी बहुत हैं महबूबा की तारीफ में, लेकिन इस गाने की बात कुछ और ही है। वैसे ऐसा ही एक और गाना मैं चाहती हूँ सुनाना, आप कहीं ना जाना, सुनते रहना आकाशवाणी एफएम गोल्ड 90.4।

मुझे ना जाने क्यों महसूस होता है कि 90s के दौर में जो गाने बने हैं वो बहुत ही अनोखे से बहुत ही अलग दुनिया में ले जाते हैं आपको, है ना। वैसे तो हर दौर में एक से बढ़कर एक गाना आया है। वैसे ये जो गाना है इसे गाया है कुमार सानू ने, और फिल्म का नाम है दिलवाले, जिसे आपने ये सुना। नदीम श्रवण का संगीत था इस गाने में। और गाने सुनाऊंगी आपको। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप संगीत.com में। बातें हो रही हैं कुछ गानों की, गानों से जुड़ी कुछ कहानियां मैं आपको सुना रही हूं। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म जूली की। 1975 में ये जो फिल्म है जूली रिलीज हुई थी, और अपनी तरह की एक अनोखी फिल्म मानी जाती है। कहानी और संगीत दोनों ही मामलों में लाजवाब। जूली का जो संगीत है वो राजेश रोशन ने दिया था, और ये उनके करियर के शुरुआती दौर की फिल्म थी। एक बहुत ही मजेदार सी बात ये रही जूली के साथ कि ये जो फिल्म है उसी साल रिलीज हुई थी जिस साल शोले पर्दे पर आई थी। कामयाबी के मामले में आप तो जानते हैं कि जूली वैसे तो सुपरहिट थी, लेकिन शोले का मुकाबला नहीं कर पाई। उसका मुकाबला तो बहुत सारी फिल्में नहीं कर पाई हैं, मगर इस मामले में जूली ने शोले को पीछे कर दिया था। उस साल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर शोले को नहीं बल्कि जूली को मिला था, यानी कि राजेश रोशन को।

जैसे कि राजेश रोशन ने इस फिल्म का जब म्यूजिक दिया तो बहुत कुछ अच्छा हुआ, उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जूली के लिए। और ये जो गाना आपने सुना है किशोरदा की आवाज में, ये गाना आनंद बख्शी ने महज 10 मिनट में लिख दिया था। वैसे दोस्तों, एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड पर आधारित इस फिल्म में कई चीजें बहुत नई हुई थी, जैसे कि किसी भी हिंदी फिल्म में जो पहला इंग्लिश गाना था वो जूली में ही रखा गया था। हाँ, वो सुना है ना आपने गाना माय हार्ट इज बीटिंग, ये जो गाना है ये प्रीति सागर ने गाया था और इंग्लिश गाना पहली बार किसी हिंदी फिल्म में शामिल हुआ था। वैसे फिलहाल मैं आपको हिंदी गाना सुनाती हूँ और इस गाने के बारे में खास बात यह है कि इत्तफाक से इसे फिल्म मिली। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। गाना सुनो फिर बताती हूँ।

दोस्तों, कुमार सानू की आवाज में इस गाने को आपने सुना, जिसका संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिलहाल मेरे वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि ये एक एल्बम बनी थी पूरी तरह से और कोई फिल्म तैयार नहीं हुई थी तब तक। लेकिन गुलशन कुमार ने जब गाने सुने तो सोचा कि चलो भाई, इस एल्बम को लेकर फिल्म बनाते हैं, तो ऐसे इस एल्बम को फिल्म मिल गई थी। ऐसा होता है कभी कभी। चलिए, फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना

0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
2: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20-25% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
3: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता है। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the Friends of India in Bishkek on the first day of his 2-day visit to Kyrgyzstan. 4 delegations working with India in various fields were present on the occasion. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with leaders of the Shanghai Cooperation Organization member states. These include meetings with the heads of state of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. Tomorrow, the second and final day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. In Nepal, the death toll from last week's devastating floods and mudslides has risen to 903, while more than 4,247 people remain untraceable. According to the Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority, the figure has increased from Sunday's figure of 2,502. Bodies have been recovered from all 8 affected districts of Nepal as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded. Meanwhile, at least 933 workers are believed to be trapped at a

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। यदि आप खुश हैं तो जिंदगी उत्तम है, और यदि आपकी वजह से लोग खुश हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। जी हाँ, मन भावन शुरू हो चुका है और आ रहे हैं आपके ढेर सारे ईमेल्स। तो ये खुशी हमें दीजिए कि आपके ईमेल्स पढ़ें और आपकी पसंद के गीत भी सुनवाएं। पर पहला गाना हमारी ओर से आपकी तरफ।

FM Gold will never get old. अच्छा एक बात बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा हरदम जवा रखेगी? बताओ, सोचा कभी? सोचा इस बारे में? कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है ये जो मैं प्रवचन देती रहती हूँ ना, आंवला खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ना ना, लव लव मेरी जान, प्यार आपको हमेशा जवान रखेगा. ओ यस, सोच के देखना कभी. अच्छा मन भावन में आपके साथ हैं हम रूमी मलिक, और हम लेते हैं अटेंडेंस. नवाब खान हमारे साथ जुड़े हैं, विजय सुरालकर, बोधराज खोरवाल, आर कुमार, मोहसिन हाशमी, श्री कृष्ण बाथे, मस्कीन दादा, हरजिंदर सिंह भाटिया, सीताराम कागरा, पांडू चंदन, भारत भूषण जी, देखें आगे अकरम हुसैन प्रिंस, किशन वंजानी, मोहम्मद सैयद अब्बासी, पांडू चंदन बोल दिया था ना शायद, दोबारा मिलते हैं ना, रामजी साहू, सुमीरा, परवीन, हाँ, आफ्ताब अंसारी, पी एस नवकर, किशन वंजानी, अनिल कुमार गवानकर, सतीश अनेजा जी, और आगे देखें नेक्स्ट पेज पे जाएं, रामजी साहू, नवाब अहमद, ठीक है ना. तो आई थिंक आप मोर और लेस अटेंडेंस मैंने ले ली है, और मेरे ख्याल से वो भी थी मेरी प्यारी प्यारी बहना दिग्दर्शन कौर जी. अरे भैया आपका ईमेल कहाँ था? मैंने तो देखा था शुरू शुरू में आया था, कल्पना झा, मास्टर खिल्लू परवेज, है ना. मेरी बात सुनो, इतनी बातें करते हो, आपकी बातों में ना वो ही रहता है, क्या बोलते हैं, क्या कहूँ मैं, टाइम का पता ही नहीं चलता. तुलसी मस्कीन जी बोल रहे हैं कि हमें सुनना है आम्रफल फिल्म का गीत. एक सेकंड रुकिए, तुलसी मस्कीन जी की फरमाइश पूरी कर दें ज़रा. आम्रपाली, तुम्हें याद करते करते ये सुनना है, जाएगी रात सारी. अब रात से तो हम बहुत दूर है ना, मेरी बात सुनो, तो कोई और गीत सुन लें, हम नीले गगन की छांव सुन लेते हैं, ठीक है. मस्कीन दादा आपके साथ हैं, वीना जी, आशीष, चैतन्य और मेघा, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना. ओके जी, चलो जी, खुश आओ जी.

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन, नए नए लिसनर्स और नए नए गाने। हाँ जी, राकेश पेट्रो और सानिका पेट्रो हमको लिख रहे हैं कोलकाता से, और ये कह रहे हैं बैजू बावरा फिल्म का गीत सुनना है मन तरपत हरि दर्शन को आज। क्या बात है। अच्छा चलिए, हमारे पास है ये गाना, आइए सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ, तो बिट्टो जी की फरमाइश पूरी हुई और बड़े अच्छी ये बात है, अगर इतनी उत्कंठा है तो हरी मिल ही जाएंगे बिल्कुल, है ना। वो महाभारत के युद्ध में हुआ था ना कि भीष्म पितामह तो परम विष्णु भक्त थे, विष्णु के अवतार कृष्ण जी थे, तो बोले कि प्रभु मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूँगा, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं मैं तो सारथी बनूंगा, मैं तो चलाऊंगा ही नहीं हथियार, है ना। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ऐसा हुआ कि भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए जब धंसा था ना अर्जुन के रथ का पहिया, है ना, तो जब नीचे फंसा था उसके बाद कृष्ण ने उसको निकाला और सुदर्शन चक्र से उस पहिया को जब चलाया तो उनकी जो अलके हैं घुंघराले बाल जो उनके माथे पे आए, आए हाय, है ना, उस पर भीष्म पितामह ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि भीष्म परम भक्त थे। तो कहा जाता है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो अगर आप वास्तव में भक्त हैं तो भक्ति कीजिए, लेकिन निजी रूप से प्राइवेट में कीजिए, मंदिर में गा गा के ना, है ना, जैसे मैं गाती थी ना, नजर लग जाती है सचमुच में, या फिर लोग इतनी तारीफ करेंगे गर्व आसानी से आपको बड़ी आप अहंकारी हो जाएंगे, तो उस सब से बचना है, सच्ची भक्ति करनी है। हाँ जी, आगे बोधराज कोरवाल जी कह रहे हैं फिल्म हीर रांझा का गीत सुना दो, मिलो न तुम तो हम घबराए, घबराओ मत, गाना आ रहा है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

FM Gold, हरियाणा वाले दोस्त कह रहे हैं, नमस्कार जी, आपको मान योग्य आरजे जी लिख रहे हैं खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का। गीत सुनना चाहते हैं, गुम है किसी के प्यार में, आई हाय क्या गाना है, आओ जी सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं मन भावन। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम स्वरूप आनंद सरजल है, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से, और मेरे दोस्त लोग सभी हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है स्वरूप जी, वेलकम टू द शो। मन भावन एक फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। अपने फ्रेंड्स को भी एनकरेज कीजिए कि वो भी हमें अपने नाम से ईमेल करें। अब ये कह रहे हैं कि एक फिल्म आई थी जिंदगी और तूफान, जिसके बोल हैं एक हसरत थी आंचल का मुझे प्यार मिले। बताओ, मैं तो रेवलेशन हो रही है मेरे साथ तो आज तो, भले अच्छी बात है। चलो सुनते हैं ये गीत, है ना, मिल गया है मुझे ये गीत स्वरूप जी।

का कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय रूमी मलिक जी को सब प्रेम नमस्कार। आपका महाभारत संबंधित ज्ञान अत्यंत पसंद आया है, कृपया हमारी पसंद का भी गीत सुना दीजिए। जरूर लिखने वाले हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से। अरे वाह वाह, मधुबनी पेंटिंग तो मैंने सीखी थी या नेशनल म्यूजियम में एक बार सिखाई थी, एक वर्कशॉप हुई थी। अरविंद जी जरूर सुनाएंगे आपका गाना, यहूदी फिल्म से सुना दें, ये मेरा दीवानापन है। भाई ज्ञान तो हमारे पास बहुत है महाभारत से मतलब वाकई में महाभारत एक नीति ग्रंथ है। मेरी बात सुनो, जब शरशैया पे तीरों के बेड पर है ना, शरशैया पर पड़े थे भीष्म पितामह है ना, तो द्रौपदी ने एक सवाल पूछा, भाई युधिष्ठिर ने सवाल पूछा है ना, आपको याद होगा, किम एकम देवतम लोके किम वापिक परायणम सुवंत कम कबरचंत प्राप्त निर्माण व शुभम को धर्म सर्धर्माण पर्व भवत परमो मत किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार वंदनाथ। अब युधिष्ठिर जी तो पूछे ही जा रहे थे कि कौन से एक देवता है जिनकी पूजा करने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, तो उसके रिप्लाई में, उसके जवाब में विष्णु सहस्र नाम, विष्णु भगवान के हजार नाम बोले थे भीष्म पितामह ने, ठीक है ना। तो इसी तरह से सिर्फ युधिष्ठिर अकेले थोड़ी थे, बाकी पांडव बाकी लोग भी तो सवाल पूछ रहे थे। तो द्रौपदी ने जब बोला कि पितामह आप अभी तो इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस समय आपका विवेक कहाँ गया था जब भरी राजसभा में मेरा चीरहरण हो रहा था और मैं पुकार रही थी मदद के लिए, तो क्या जवाब दिया, देखो क्या जवाब दिया था भीष्म पितामह ने कि पुत्री उस समय मैं दुर्योधन के राजमहल में नौकरी करता था, तो उसके दिए पैसे से जो मैं अन्न खाता था, उसके दिए अन्न से खा के मैं दूषित हो गई थी मेरी बुद्धि, तो अब जब तुम देख रही हो ना एरोज के इन तीरों के बेड पे, जब मैं लेटा हुआ हूं इस बिस्तर पर और धीरे धीरे मेरा रक्त टपक रहा है, तो वो जितना भी दूषित रक्त था वो टपक गया है, जो मैंने उसका नमक खाया था, जो मैंने उसका अन्न खाया था, और अब मेरी बुद्धि फिर से वापस आ गई है। तो मित्रों ये इतनी बड़ी बात है, हम लोग आयुर्वेद में भी कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो हम लोग आजकल कहीं पे भी किसी का भी कैसे भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको ये देखना होगा कि बनाने वाले की भावना शुद्ध है, किस भाव से वो आपको खिला रहा है, ठीक है जी। तो आप पूछ रहे थे यहूदी फिल्म का गाना, ये मेरा दीवानापन है, ये सुन लेते हैं अरविंद जी।

ये मेरा दीवानापन है, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए, है ना। देखो हमें बोला है ये आरजे रूमी मलिक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कौन बोल रहे हैं ये? बल्ली मारान से बोल रहे हैं, शबाना भारती, नवाब अहमद भारती, अरहान अहमद, सुफिया नवाब। बल्ली मारान से दरीबे तरक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, ये अमिताभ बच्चन ने गा तो दिया था कजरारे में, लेकिन बल्ली मारा में मिलता क्या है? बहुत ही अच्छे वाजिब दाम पे मिलते हैं चश्मे और चप्पलें। गीत कौन सा सुनोगे? सूरज फिल्म का, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आओ जी, बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ महबूब को, आ जाओ।

रेडियो की आवाज ग्रुप है ये भी बिहार से है। यहाँ ए के झा जी, शेख अल्लाह बख्श जी और लक्ष्मण जगताप जी ये कह रहे हैं कि हमें फिल्म दिल ने फिर याद किया का गीत सुनना है। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा। हाँ जी, तो फिर असली प्यास किस चीज़ से बुझती है? असली चीज़ जो है ना वो दरअसल अपने आप से प्रेम है। आप सचमुच में अब अगर आप अपने आप में संतुष्ट है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे को जैसे ही आपने अपनी खुशी आउटसोर्स कर दी ना, सबलेट कर दी, भाई तू खुश है, तू मुझसे हेलो हाय बोले, हाय मुझे एक लाइक कर दे मेरे स्टेटस को तो मेरी ज़िंदगी बन जाए, तो थोड़ी सी मुश्किल है। कोई बात नहीं, आइए ये गीत सुनते हैं। ये गीत तो अच्छा ही है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापरोफ के बीच बैठक जारी है। दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी

जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापट्टनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण प्रकृति संरक्षण जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में आज भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम का मुकाबला सीरिया से होगा। ये मैच ताशकंद में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से होगा। भारत मेजबान उज्बेकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Kindly send in your applications within 60 days to the Deputy Director Admin, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Suchana Bhavan, CGO Complex, New Delhi, with required certificates. Incomplete or late applications will not be considered. For details, kindly look up the website at www.mib.gov.in. Sainik School, Sambalpur, Odisha, under the aegis of the Ministry of Defence, Government of India, has invited applications from Indian nationals for recruitment to regular and contractual posts. Vacancies include PGD Physics, Chemistry, Biology, Mathematics and Computer Science at Pay Level 8, TGD Social Science, General Science, Mathematics and English at Pay Level 7, and contractual posts at PEM PTI cum Matron Female, Art Master, Lab Assistant Biology and LDC, carrying consolidated remuneration of 70,500, 30,000 and 30,000 per month, respectively. Age limit is 21 to 40 years for PGTs, 21 to 35 years for TGTs, 21 to 50 years for PEM PTI cum Matron, Art Master and Lab Assistant, and 18 to 50 years for LDC as on 31st August 2026. Contractual appointments will initially be for 11 months, extendable subject to performance and institutional requirements, or with the total tenure not exceeding 3 years. Candidates should check the detailed eligibility requirements, application procedures and deadlines on the Sainik School Sambalpur website. The last date for applications is 7th September 2026. For details, kindly look up www.sambalpur.sainikschoolsociety. ICSI Institute of Insolvency Professionals, a subsidiary of the Institute of Company Secretaries of India and an insolvency professional agency registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India, has invited online applications for one post of Managing Director on contractual basis at its corporate office in Noida. The post carries a consolidated annual compensation of approximately 24 lakhs to 30 lakhs with a maximum age of 55 years as on 1st August 2026, relaxable up to 60 years by the Governing Board of ICSI IIP. Detailed qualifications, experience and application requirements are available on the official website. The last date for online applications is 5th September. Applications are to be submitted only through electronic mode. Kindly go on to the website for details, that is at www.icsiip.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाकार के 6 संवर्ग बाह्य पदों को प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इस अवधि को वार्षिक आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी और नियम तथा शर्तों को देखने के लिए देखिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.ssc.gov.in। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रामपुर रजा लाइब्रेरी आमंत्रित कर रही है प्रवर श्रेणी लिपिक के 1 पद को भरने के लिए आवेदन। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 22 अगस्त 2026 से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। दयाल बाग शैक्षणिक संस्थान आगरा आमंत्रित कर रहा है शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र 22 से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र अथवा दयाल बाग शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट www.dei.ac.in।

कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाधिकारी के 4 गैर काडर पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष के लिए भरा जाना है। अधिक जानकारी के लिए देखिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.ssc.gov.in।

0: सकते हैं इस पते पर, कार्यकारी निदेशक आयुध निर्माणी कटनी, जिला कटनी मध्य प्रदेश, पिन कोड है 483504। पद के लिए आवश्यक योग्यता, नियम और शर्तों को देखने के लिए कृपया देखें वेबसाइट ddpdoo.gov.in। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए, ddpdoo.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी का पद उपलब्ध है। रिक्तियां 4 हैं और इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति की शर्तों और नियमों तथा पात्रता मानदंड के लिए देखिए NDMA की वेबसाइट ndma.gov.in। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में कार्बनिक रसायन विज्ञान के युवा पेशेवर को नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखें संस्थान की वेबसाइट nsi.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा के नए अंक में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी आपको लेकर चलेंगे देश भर की परिक्रमा पर और आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो खबर नहीं बनती। साथ ही बात करेंगे साहित्य जगत के एक अमर हस्ताक्षर की, जिन्होंने अपनी कलम से भारतीय इतिहास के सबसे गहरे दर्द में से एक को पन्नों पर उतारा। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: Hello, Sir Firozi. Hello and a very warm welcome to all those tuned into the news magazine program Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is, of course, my co-host Sir Firozi. Well, listeners, is known for his major romantic lead roles, which were massive box office hits. Secondly, he has proven that he could play complex, diverse characters beyond romantic comedies and dramas. He earned critical acclaim and a Golden Globe Award for his role as Billy Flynn in the musical film Chicago. And thirdly, he is known for his global humanitarian activism. He has been a passionate advocate for human rights in Tibet for decades and co-founded the Tibet Fund. He also supports various awareness campaigns, including homelessness around the world. Yes, is none other than the American actor and humanitarian Richard Gere. And today we celebrate his birthday, and we shall talk about him later in a program. But first, we start off with the news headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi meets Armenian counterpart Nikol Pashinyan and President of Iran Masoud Pezeshkian on the sidelines of the SCO summit in Bishkek.
1: सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया।
2: President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage.
1: भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया।
2: Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people still missing.
1: और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से

0: Yes, today we bring you some inspiring stories that remind us that innovation, passion and a little determination can open the doors to new possibilities.
1: और ये उन आम लोगों की कहानियां हैं जो असाधारण काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती, टेक्नोलॉजी, इतिहास के जरिए हो या फिर किसी शौक को आजीविका का जरिया बनाकर.
0: Let's begin with an example from the world of farming. Prime Minister Narendra Modi in his recent Mann Ki Baat program spoke about two individuals who are cultivating avocados and earning additional income through this emerging agricultural opportunity.
1: और इनमें से एक आंध्र प्रदेश के कडप्पा के वरदराज हैं, जबकि दूसरे तमिलनाडु के कोडाईकनाल के चंद्रशेखरन हैं. इनके अनुभव बताते हैं कि किसान कैसे नई फसलों से आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं.
2: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है. इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था. इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है. आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है. हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है. आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है. वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे. एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी. इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई. अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं. आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं. नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है. तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया. उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है.
0: पीएम मोदी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एवोकाडो कल्टीवेशन एमिड कॉफी प्लांटेशंस.
2: कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है. इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है. साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है. यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा.
0: The message is encouraging agriculture is not just about traditional crops. With awareness, experimentation and an understanding of changing markets, farmers can discover new opportunities and increase their earnings.
1: और अब इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाले हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के कृष्णा शेषाद्री से भी बात की, जिन्होंने भारत राज्य नाम की एक अनोखी वेबसाइट बनाई है.
2: आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें. यहाँ आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था. मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा. मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए. मुझे पता चला कि ये काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया. मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com. उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए.
1: मन की बात में इस पहल को स्थान मिलने पर कृष्ण शेषाद्री ने अपनी खुशी व्यक्त की. इस उपलब्धि के बाद उनकी आगे की सोच और वेबसाइट को लेकर उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास.
3: कृष्ण शेषाद्री के करियर की शुरुआत अभियंता के रूप में हुई. बाद में उन्होंने MBA किया और मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन इतिहास के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही रहा. इतिहास को अधिक गहराई से और पाठ्य पुस्तकों के परे जाकर समझने के उद्देश्य से उन्होंने

0: भारतराज्य.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज उनकी ये छोटी सी पहल मन की बात कार्यक्रम में अपनी जगह बना चुकी है। मन की बात में इस पहल का उल्लेख होने पर कृष्ण शेषाद्रि ने खुशी व्यक्त की। सुनते हैं उन्हीं से।
1: जब मैंने ये वेबसाइट बनाना शुरू किया था वो एक छोटा सा एक हॉबी जैसा प्रोजेक्ट की तरह से शुरू किया था, तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी उस वेबसाइट को देखेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बारे में मेरे से पूछेंगे।
0: ये बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद इस वेबसाइट के लिए भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं, ये भी कृष्ण शेषाद्रि ने बताया।
1: पूरा जो हमारा इतिहास है, जितना हमने लिखित में है, जितना रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो वहाँ पे आ जाएगा। दूसरा प्लान ये है कि हमारे जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, लाइक बृहदेश्वर टेम्पल हो या कैलाश टेम्पल हो या गंगेकोंड चोलापुरम टेम्पल हो, उज्जैन टेम्पल हो, उसका हम एक 3D मॉडल बनाए, को एक फ्लैश कार्ड की तरह प्रिंट करके स्कूल या कहीं बच्चों में बांटें, ताकि वो उसे ट्रम्प कार्ड की तरह खेलें और खेल खेल में मजे लेते हुए अपना इतिहास और अच्छी तरह से पढ़ें।
0: मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने कहा है, हम इतिहास के निर्माता नहीं है बल्कि इतिहास हमें बनाता है। और कृष्ण शेषाद्रि की भारतराज्य.com वेबसाइट हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती बल्कि हमारी अपनी कहानी से भी हमारा परिचय कराती है। परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं अंकिता आपटे।
2: और अभिषेक, इस पहल की सबसे खास बात यह है कि ये इतिहास को लोगों के करीब लाती है। छात्र और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग सिर्फ किताबों के जरिए अतीत को जानने के बजाय भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दिलचस्प और इंटरैक्टिव तरीके से इस वेबसाइट के जरिए समझ सकते हैं।
3: एंड दैट मेक्स हिस्ट्री सर फिरोजी नॉट जस्ट समथिंग टू रिमेम्बर फॉर एन एग्जामिनेशन बट समथिंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड।
2: बिल्कुल अभिषेक, और अब आइए इतिहास से हटकर नागालैंड की पहाड़ियों की खूबसूरत कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है फूलों, जुनून और उद्यमिता की।
3: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो हाइलाइटेड द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ वेसालू पुरो फ्रॉम फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड हु ट्रांसफॉर्म अ लव फॉर फ्लावर्स इनटू अ थ्राइविंग लाइवलीहुड।
4: कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैसालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैसालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैसालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। ये सफलता वैसालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैसालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल।
3: Yes, indeed, and Vesalu Puro's story carries a simple but powerful message. A small hobby, when combined with hard work, proper guidance and determination, can become a sustainable source of livelihood.
2: और शायद यही वो बात है जो इन सभी कहानियों को आपस में जोड़ती है, यानी कुछ नया करने का जज्बा।
3: Yes, and whether it's a farmer experimenting with avocado cultivation, a history enthusiast using technology to make the past more accessible,
2: या फिर फूलों के प्रति अपने जुनून को एक बिग में शामिल करने वाली कोई युवा महिला, हर कहानी हमें बताती है कि प्रेरणा किसी भी ऐसी चीज से मिल सकती है जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो।
3: So, dear listeners, perhaps there's a lesson here for all of us. Keep learning, keep experimenting, and never underestimate the potential of a small idea.

और आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में

0: बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।
1: टू पार्टिसिपेट सिंपली डायल द टेलीफोन नंबर्स 0112331 0481, 0112371 7117, 0112371 7106 and 0112331 4444 from 9:30 PM onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
0: श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सबसे पहले चल रहे हैं जयपुर। राजस्थान में आज कजरी तीज का पर्व मनाया जा रहा है। इसे सातुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्थान में आज कजरी तीज का पर्व मनाया जा रहा है। इसे लेकर महिलाओं में खासा उल्लास है। श्रावणी तीज के गुजरने के बाद आती है कजरी तीज। जब भादों बरस रहा होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि होती है, तब कजरी तीज आती है। इसे सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, नीमड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन तीज माता को विशेष रूप से सत्तू का भोग लगाया जाता है। बूंदी जिले में कजरी तीज का विशेष मेला भी भरता है। नवविवाहितों में तीज को लेकर विशेष चाव है। उनके पीहर से सत्तू, कपड़े, पकवान और मिठाइयां भेजी जा रही हैं। सुहागिन महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, लाख के चूड़े पहनकर और 16 श्रृंगार के साथ निर्जल व्रत रख रही हैं। अपने परिवार और सखियों के साथ मिलकर पारंपरिक तीज के गीत गाते हुए झूले झूलकर पर्व की खुशियां मना रही हैं। कजरी तीज की कथा सुन रही हैं। शाम के समय दीवार पर नीम की टहनी रखकर या गोबर से आकृति बनाकर नीमड़ी माता की भी पूजा की जाएगी और चांद के दर्शन तथा पूजन कर पति की लंबी आयु और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। ये बात अलग है कि भादों का चांद बादलों की ओढ़ में छिपकर बैठा रहता है और जरा देर से दर्शन देता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ब्यौरा दे रहे हैं बिश्केक से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
3: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में स्थापित गांधी जी की इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2015 को अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। इस पार्क के पास में स्थित मार्ग का नाम भी महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह स्थल भारत और किर्गिस्तान के संबंधों के सांस्कृतिक और मानवीय पक्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक है। वर्ष 2015 में इस प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि यह प्रतिमा बिश्केक के निवासियों को भारत और किर्गिस्तान के साझा मूल्यों की याद दिलाएगी। परिक्रमा के लिए बिश्केक किर्गिस्तान से मैं विकल्प शुक्ला।
1: When the mighty Mahanadi stretches towards the horizon, the Hirakud Dam stands as a remarkable symbol of Odisha's development journey. Located near Sambalpur, Hirakud is more than an engineering marvel. Since its inauguration in 1957, it has played a vital role in flood control, irrigation and power generation and has become an integral part of the identity of Western Odisha. We have more from a correspondent.
4: Today, Hirakud is looking towards a new chapter. The Odisha government has initiated work on Hirakud Dam Master Plan aimed at the planned development of the region, with special focus on tourism, infrastructure and connectivity. The vast Hirakud Reservoir also holds significant potential for renewable energy. Official assessments indicate an estimated floating solar potential of up to 3,000 megawatts. This is a potential figure, not an already sanctioned project, but it has highlights the possibilities for Hirakud to contribute to Odisha's clean energy transition. As development takes shape, conservation must remain equally important. Irrigation, fisheries, local livelihoods, ecology, tourism, and dam operations all depend on this vast reservoir. For generations, Hirakud has represented the aspirations of the developing Odisha. Now, with a new vision taking shape, it has the opportunity to emerge as a destination where

0: हिस्ट्री नेचर टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम टुगेदर फॉर परिक्रमा सुप्रीति मिश्र आकाशवाणी संबलपुर।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और देवरिया जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बलिया जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान श्री योगी ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 अगस्त को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के 5वें स्थापना दिवस समारोह और रक्षाबंधन के पावन मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में भाई बहन पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। अगले दिन 29 अगस्त को मुख्यमंत्री ने नगर निगम गोरखपुर और गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की कुल 170 विकास परियोजनाओं का सौगात दिया। उन्होंने 3.10 करोड़ रुपए से गोरखपुर जिले में नव निर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने देवरिया जिले के सलेमपुर और भाटपा रानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपए की लागत की 80 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने बलिया जिले में बांसडी बैरिया और बलिया सदर विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। श्री योगी ने इस अवसर पर प्रभावित परिवारों का कुशल क्षेम जाना और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों के लिए केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रों पर भोजन की व्यवस्था की गई है और राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
3: मिशन कर्मयोगी द गवर्नमेंट्स नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एम्स टू क्रिएट अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स थ्रू कंटिन्यूस लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। Jawaharlal Institute of Post Medical Education Research, Puducherry has emerged as one of the top performing institutions under the Ministry of Health and Family Welfare in implementing Mission Karma Yogi. It was among only 8 institutions to receive an achievement certificate for outstanding performance and was also recognized among the top 7 performing institutions for initiatives like RKJSP, APAR linked courses and Sadhana Saptah. We have more from a correspondent.
4: At the center of JIPMO's efforts is the Mission Karmayogi One Course Every Week initiative. So the IGOT Karmayogi platform, employees undertake structured digital learning every week to continuously upgrade their skills and competencies. JIPMO has also established a dedicated capacity building unit and departmental Karmayogi coordinators to implement and monitor the program. Employee-wise progress is tracked regularly with learning activities linked to the annual performance assessment report. The institute also follows a cascade training model where lead trainers train master trainers who subsequently facilitate learning across JIPMO's 3 campuses. Digital courses are supplemented by practical workshops and workplace-based problem-solving sessions. The initiative aims to bring a shift from a rule-based to a role-based approach, creating a more competent, accountable, citizen-centric and empathetic workforce. For Parikrama, this is Bibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
1: श्रोताओं, अब चल रही हैं खेल के मैदान की ओर। सबसे पहले बात फुटबॉल की। भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।
3: एंड ऑन टू सम बिजनेस न्यूज। बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड 0.4% डाउन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 307 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,957। द निफ्टी ड्रॉप 95 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,080। Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%.
1: और अब बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
5: अज आखां वारिस शाह कितों कबरां विचों बोल। अज आखां वारिस शाह कितों कबरां विचों बोल। ते अज किताब

0: पंजाब दी तू लिख लिख मारे बहन वे अज लखां तियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण।
1: अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो थी प्रसिद्ध कवियत्री अमृता प्रीतम की, जो पंजाब की प्रसिद्ध सूफी कवि वारिस शाह के नाम एक कविता के बोल पढ़ रही हैं। ये कविता खुद अमृता ने 1947 के भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई भयानक सांप्रदायिक हिंसा, कत्लेआम और गहरे दुख को बयां करने के लिए लिखी थी। आज अमृता प्रीतम की जयंती है। अमृता प्रीतम की लेखनी में खास तौर पर भारत के विभाजन का दर्द गहराई से झलकता है। इनका पिंजर उपन्यास विभाजन की त्रासदी और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को बयां करता सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पर 2003 में फिल्म पिंजर भी बन चुकी है। इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनाने जा रही है।

चौखेर बाली और रेनकोट जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी। 19 साल के फिल्मी करियर में ऋतुपर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया। और सतिंदर सरताज का भी आज जन्मदिन है। ये पंजाबी सूफी गायक, गीतकार, कवि और अभिनेता हैं जो अपने गहरे अर्थपूर्ण और रूहानी सूफी संगीत और बेमिसाल शायरी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें साल 2010 में आए इनके सुपरहिट सूफी गीत साई से वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली। और इसके अलावा इन्होंने इक्को मिक्के, कली जोटा जैसी लोकप्रिय पंजाबी फिल्मों में काम किया है। इनके कुछ सबसे बेहतरीन गानों में उडारिया, मासूमियत और सजन राजी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की भी समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन

0: आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय बचाव दल चिली में लांगटांग में पानी संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगाई मैदान वाले इलाके, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting today with the President of the Islamic Republic of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, on the sidelines of the SCO summit in Bishkek. The two leaders discussed bilateral ties. They also discussed the recent developments in the West Asia conflict and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Later, the Prime Minister also met President of the Kyrgyz Republic, Sadr Zaparov, today. The two leaders reviewed the progress made in bilateral relations and reaffirmed their commitment to further strengthening the strategic partnership between India and the Kyrgyz Republic. Earlier in the day, Prime Minister Modi met PM of Armenia, Nikol Pashinyan, in Bishkek. The two leaders discussed ways to further strengthen bilateral cooperation across various areas, including defense, economic, pharma, science and technology, culture and education. Tomorrow, PM Modi will address the 26th SCO summit in Bishkek. The government today notified the Semicon India Programme 2.0 with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw released the notifications for all six pillars of the Semicon 2.0 scheme while addressing a press briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
2: The CAPEX support is at a particular level. That's a globally competitive support level. The interest of the entire industry in making India as the base, because of its talent, because of its policy certainty, because of the ease of working here, all those factors have contributed to our decision-making.
1: President Draupadi Murmu today said that textile and apparel sector is not only an important part of India's cultural heritage, but also provides livelihood to millions of people. The president was addressing the convocation ceremony of the National Institute of Fashion Technology in Delhi today. The Indian Navy today commissioned INS Nipun, the second diving support vessel of the Nistar class, at Naval Dockyard, Mumbai. Speaking at the commissioning ceremony, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan said, amid a period of strategic churn, Nipun will be a powerful addition to the Navy's specialized underwater capabilities required for multi-domain deep water operations at sea.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत वीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किए जा रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय है 25 ईयर्स ऑफ SCO टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। SCO मध्य एशिया और यूरेशिया का एक प्रमुख बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सदस्य हैं। भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था और तब से संगठन के एजेंडे में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे में बिश्केक शिखर सम्मेलन भारत के लिए मध्य एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। SCO सम्मेलन और भारत किर्गिस्तान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री वीरेंद्र सिंह यादव। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान यात्रा के दौरान SCO समिट में शामिल होंगे और ये 26th समिट है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये समिट भारत के लिहाज से?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है, ये प्राइमरी इज टू पार्टिसिपेट इन द 26th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द SCO एंड इंडिया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ क्लाउड इन द ग्लोबल एरिना एंड इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रांग एंड रिस्पेक्टेड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट global economies growing at very fast rate enjoys a considerable interest or I'd rather say influence amongst the other member states on what India's stand is on various issues. In that respect, everybody is looking forward to Honorable Prime Minister's statement during the SCO summit and wherein he would be highlighting what the India's priorities would be. And I think this visit is also an opportunity to strengthen our bilateral relationship with the Kyrgyz Republic and the warm and friendly ties between our two countries which are based on historical and civilized

0: रीजनल फाउंडेशन।
1: सर, यदि भारत और किर्गिस्तान के संबंधों की बात करें तो किस तरह से आप इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे?
0: बहुत ही वार्म और फ्रेंडली पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच, और बोथ द कंट्रीज शेयर अ सिमिलर ग्लोबल विजन एंड वी कोऑपरेट वेरी क्लोजली नॉट ओनली बायलैटरली बट ऑल्सो इन द मल्टीलेटरल फोरम। एंड जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के देयर सिमिलर चैलेंजेस, और बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट ईच अदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड टू कंटिन्यू इन देयर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू देयर रिस्पेक्टिव सिटीजन्स।
1: सर, आपने जो चुनौतियों की बात की तो दोनों ही देश, भारत भी और किर्गिस्तान भी, एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें टेररिज्म भी है, सेपरेटिज्म भी है और रेडिकलाइजेशन भी है, तो किस तरह से आपस में मिलकर इनसे निपटने की रणनीति तैयार होगी?
0: हमारा बहुत ही स्ट्रांग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है किर्गिज गणराज्य के साथ, एंड वी कंडक्ट एनुअली अ बायलैटरल एक्सरसाइज खंजर विच वुड बी हैविंग इट्स 14th एडिशन इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड वी ऑल्सो कोऑपरेट वेरी क्लोजली इन द capacity enhancement through participation of Kyrgyz official in the defense ITEC programs and by curating tailor-made courses as per their specific requirements. And the joint working group meets annually and they chalk out a plan of action, and all this is to enhance the capacities and share each other's experience to prepare for the meeting common challenges which you have listed.
1: Sir, Kyrgyzstan jo hai wo Bharat ka ek extended neighborhood hai. Yadi hum Central Asia के साथ में भारत के संबंधों की बात करें तो कितना महत्व रखता है भारत के लिए किर्गिस्तान?
0: अगर आप देखें तो बिश्केक से दिल्ली 3 घंटे से कम समय लगता है थ्रू एन फ्लाइट, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम कितने करीब हैं। और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल एशिया और किर्गिज रिपब्लिक इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में आता है, दिस इज अ वे to closely cooperate with the region and including the Kyrgyz Republic. And this engagement is through the political dialogue, through the established institutional mechanisms in the field of defense and security, enhancing the trade and economic cooperation, and also having an excellent people-to-people linkages and cultural cooperation. And Kyrgyz Republic also hosts more than 16,000 Indian medical students, and they ensure that they have a safe and secure environment to study.
1: Sir, Bharat aur Kyrgyzstan ka bahut hi purana itihas raha hai sambandhon ka. इसमें जो दोनों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में और क्या कदम उठाए जाएंगे?
0: 2019 के बाद जो हमारा बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर है वो पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो गया है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको और ऊंचाई तक कैसे ले जा सके। उसके लिए हम व्हाट आर द न्यू एरियाज वेयर वी शुड फोकस ऑन, एंड लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस डेलीगेशंस दे विजिट किर्गिज रिपब्लिक, सिमिलरली फ्रॉम here they participate in various exhibitions, and we are trying to explore how the bilateral trade turnover could be increased and how the mutual investments can be promoted between the two countries.
1: जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में, तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें और स्ट्रेंथन करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
0: The Indian diaspora always is an asset because they are the organic bridges between the two countries, and they help in creating an image of the country, and we are very proud that the Indian diaspora and the Kyrgyz Republic has lived up to that reputation, and they act as a facilitator or medium to enhance the people-to-people linkages.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किर्गिस्तान की ये तीसरी यात्रा है, इसके पहले भी वो 2019 में एसियो समिट में भी शामिल होने की आ चुके हैं, ये यात्रा का कितना महत्व है?
0: प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है, वो भले ही पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो। प्रधानमंत्री की यात्रा से बायलैटरल रिलेशंस को एक फिलिप मिलता है, एक सुदृढ़ता मिलती है और नए आयाम एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान जो वर्ल्ड नोमैड गेम्स है उसके शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी का उसके शुभारंभ समारोह में शामिल होना कितना महत्व रखता है और इस पूरे रीजन के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
0: The organization of the 6th World Nomad Games is very significant for the Kyrgyz Republic because the games are returning to the Kyrgyz Republic after a little gap, and they have been preparing extensively for organization of these games. They have built a new beautiful stadium, which is the biggest stadium in the Central Asia in the form of traditional yurta. And the World Nomad Games is an opportunity for them to promote and propagate their rich cultural nomadic heritage. And there is a participation from India also, and we have a 73 strong contingent which is participating in archery, in wrestling, in other forms of game. And Honorable Prime Minister, he would be participating in the inauguration of the World Nomad Games, which is also a reflection of both the countries respecting their rich heritage, cultural heritage and way of life in case of India, which has been in existence for many, many centuries.
1: Thank you so much, sir. Akashvani Samachar se baat karne ke liye.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। इल्जाम पता है कैसे होने चाहिए? कि तुम बहुत प्यार करते हो, अरे तुम बहुत ख्याल रखती हो, जिंदगी हो ऐसे खूबसूरत पलों से भरी हुई, मीठी मीठी सुंदर खूबसूरत। गाते गुनगुनाते के सफर में आज आपके साथ हैं हम रूमी मलिक।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप। मोहब्बत जबान से बयां होती है, ऐसा है क्या? नहीं, दिल की जुबान नहीं होती, आंखों से उल्फत झलकती है। लव इज कम्फर्ट, चैन मिलता है दूसरे के पास होने से, फिर कभी कुछ कहो या ना भी कहो। इन्हीं शब्दों के साथ रूमी मलिक को दीजिए इजाजत, गाते गुनगुनाते का सफर रहेगा जारी कुछ देर और। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: लाल लाल दानों में छिपी सेहत की मिठास और स्वाद ऐसा कि फलों की थाली में जगह बनाए और खूबियां ऐसी कि पोषण की बात हो तो नाम आए अनार का। हेलो फार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल और मेरे साथ हैं
2: रजनीश।
1: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और हेलो फार्मर्स एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर जुड़ते हैं हमारे फार्मर्स और जानते हैं अपनी खेती को किस तरीके से वो नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं, ज्यादा लागत कम करके आप ज्यादा उत्पादन किस तरीके से कमा सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे अनार के बारे में। क्यों रजनीश
2: जी? और देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें जिसका मुझे लगता है कि ना केवल हमारे किसान भाई बहन बल्कि सबको बहुत फायदा होगा कि जब हम फलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ हमारा ये उद्देश्य भी रहता है कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें। लेकिन कैसे लें, तो यही इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन आज बातें सिर्फ अनार खाने की नहीं होंगी, इसे उगाने वाले किसानों की भी होंगी, क्योंकि भारत में अनार की खेती कहां और कितने बड़े क्षेत्र में हो सकती है या होती है, कौन सी किस्में किसानों को बेहतर उत्पादन दे सकती हैं, बाजार दे सकती हैं, कैसी जलवायु मिट्टी इसके लिए मुफीद मानी जाती है, और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर अनार को सिर्फ फल के रूप में बेचने की बजाय उसे कई तरह से वैल्यू एडिशन अगर उसमें कर दी जाए, उसके अलग अलग उत्पाद बना दिए जाएं, तो उससे हमारे किसानों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से उनकी आमदनी बढ़ सकती है, ये सारी तमाम जानकारियां आपको आज के इस कार्यक्रम हेलो फार्मर्स में मिलने वाली है। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ शाम 6 बजे तक।
2: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, जैसा कि विषय बताया कोमल ने, अनार के विभिन्न उत्पाद और निर्यात की संभावनाएं, और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एनवी सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
3: धन्यवाद। धन्यवाद जी।
1: और डॉक्टर साहब से हमारे तो बहुत सारे सवाल है रजनीश, लेकिन हमारे सुनने वाले जो है ना, वो भी इंतजार करते हैं कि वो कब अपने सवाल जो है डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं हमसे, और कौन कौन से वो टेलीफोन नंबर्स हैं जिनके माध्यम से आज वो अपने सवाल यहाँ पर सीधे जो स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकते हैं?
2: और देखिए, जो भी अगर कोई भी आपकी इस विषय से जुड़ी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो दिल्ली से बाहर के जो भी हमारे श्रोता है वो दिल्ली का जो एसटीटी कोड है 011 वो लगाकर हमें फोन कर सकते हैं। और हमारा फोन नंबर है 23 42 10 81 2342 1081, और दूसरा नंबर है 23 42 10 83 2342 1083। तो इन नंबरों पर फोन करके आप अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अनार से के विषय से जुड़ा जो भी आपका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। और जैसा कि विषय पता ही है आपको, अनार के विभिन्न उत्पाद और निर्यात की संभावना है।
1: बिल्कुल, खेती की बात तरक्की के साथ हेलो फार्मर्स।
4: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो कोमल, जैसे कि हम सभी ने अनार तो हम खाते हैं और अनार को अगर हम देखें तो बहुत खूबसूरत फल लगता है, उसके छोटे छोटे लाल लाल दाने की स्वाद की दृष्टि से तो अनार अच्छा होता ही है। तो डॉट साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि अगर हम उसे आहार और पोषण की दृष्टि से देखें तो अनार हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये बताइए।
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं एक अनार सौ बीमार।
5: जी, जी।
4: तो पहले तो हम इसलिए बोलते थे कि अनार सबके लिए उपलब्ध नहीं था, बहुत एक स्कार्स फ्रूट माना जाता था, जब किसी की बहुत तबीयत खराब है तभी अनार खाते थे। पर आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि एक अनार सौ से ज्यादा बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है। इसका चाहे आप फल की बात करें, चाहे इसके बीज से जो तेल निकलता है उसकी बात करें, चाहे आप इसके छिलके की बात करें, इसका हर एक भाग जो है फल का वो अत्यंत लाभकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और ये विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब तो हमारे सभी फलों में होते ही हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत से फाइटोकेमिकल्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं। जैसा हम बोलते हैं कि आप अनार खाते रहिए और आप जवान दिखते रहिए, तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट है। बहुत से इसमें फिनॉल्स हैं, एलेजिटेनिन्स हैं और कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड हैं, जो आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए, विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए और आपकी त्वचा के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। तो विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल, इसके साथ साथ जो लगभग सारे ही फल देते हैं, इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा स्रोत है आपको एंटीऑक्सीडेंट का, फाइटोकेमिकल्स का, न्यूट्रास्यूटिकल्स का। और आप सभी अनार को चबा के खाएं, इसके बीज को, मैं देखता हूं लोग जूस पीते हैं और बीज इसका थूक देते हैं, नहीं, बीज को भी चबा के उसको अच्छे से खा लें। बीज के अंदर भी एक बहुत अच्छा औषधि गुणों वाला तेल होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ही लाभकारी है।
5: जी, यानी कि एक अनार सौ बीमार नहीं बल्कि एक अनार सौ बीमारियों का इलाज। और डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं अनार की और जब हम आज अनार के विषय को इतना लेकर के आए हैं वृहद रूप से, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी जो खेती है वो करने के लिए कौन सा क्षेत्रफल भारत में जो है, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो है किसान इसकी बहुत अच्छे से खेती कर सकती है, क्योंकि हमारा देश जो है हर तरह की जलवायु समेटे हुए है अपने अंदर। तो आज के समय में हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनार की खेती कर सकते हैं किसान?
4: जी, बहुत अच्छा और वाजिब प्रश्न है आपका। और पहले तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अनार एक टेम्परेट फ्रूट है, परंतु ये भारत के विभिन्न भागों में बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया गया है।
5: जी,
4: और शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र जो होते हैं, जिसको हम एरिड या सेमी एरिड कंडीशन बोलते हैं, वो इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है।
5: जी।
4: इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी भी रही तो भी अनार उसमें आप एक व्यावसायिक फसल उसमें ले सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि भारी मिट्टी अनार के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जो काफ़ी समय तक पानी रोक के रखती हो, जैसे काली मिट्टी हो गई, अदरवाइज दोमट हो गई, बलुई दोमट मिट्टी हो गई, ये सब अनार के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। अनार को तो डायमंड ऑफ रॉकी लैंड ही बोलते हैं।
5: अगर कम पानी में भी इसकी
4: कम पानी में ये आप समझ लीजिए कि ये ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप की तरह भी है, आप जहां पानी की कम उपलब्धता है, क्योंकि अगर एक बार आपका फसल चक्र पूरा हो गया तो हम इस पे, इसका नेचुरल प्रोसेस है, हम पानी रोक के इसको स्ट्रेस देते हैं, तो उस समय पानी की जरूरत नहीं है। वैसे भी अनार कम पानी जो रिक्वायर्ड क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, उसमें से आता है, और इसलिए ये आपका शुष्क तथा अर्धशुष्क, जिसको एरिड या सेमी एरिड रीजन बोलते हैं, वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। मिट्टी जहाँ पूरी मिट्टी तैयार भी नहीं हुई है, मुरुम टाइप जिसको मृदा हम लोग बोलते हैं, पार्शली विदर्ड सॉयल जिसको बोलते हैं, वहाँ भी आप अनार को बहुत अच्छे से उत्पादन इसका ले सकते हैं। कुछ हद तक क्षारीय मृदा में भी आप अनार का उत्पादन लिया जा सकता है। तो अगर आपकी मृदा तथा वातावरणीय परिस्थितियां जो हैं बहुत अनुकूल नहीं हैं, तो उस स्थिति में भी आप अनार के उत्पादन को वहां ले सकते हैं। हमारे देश में मुख्यतः महाराष्ट्र नंबर एक राज्य है, गुजरात बहुत तेजी से बढ़ के आया है पिछले 4 से 5 वर्षों में और ये द्वितीय स्थान पर भी आ गया है। लगभग 30 से 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल अनार का गुजरात में है, इसके साथ साथ कर्नाटक है और राजस्थान का आपका जो बाड़मेर बलोत्रा एरिया है, सिरोही का एरिया है, उधर भी काफ़ी तेजी से अनार बढ़ रहा है। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आप कुल्लू में कभी जाएंगे तो कुल्लू में चाहे आप बजोरा तालुका में जाएं, चाहे भुंतर में जाएं, चाहे बंजार में जाएं, हर तरफ अनार है, जंगली वाला अनार ही वहां मिलता है। तो आप हिमाचल से लेके कश्मीर के कुछ भागों में अनार है, मुख्यतः केवल जो बहुत आपके जहां बरसात बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपका गोवा का क्षेत्र ले लें, इन क्षेत्रों को छोड़ दें क्योंकि वहां आप अनार में बहुत सी परेशानियां आएंगी, फ्लावरिंग का दिक्कत आएगा, अदरवाइज आप भारत के शुष्क क्षेत्रों और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनार बहुत सफलतापूर्वक ले सकते हैं।
3: तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा बड़ा विस्तृत रूप से बताया, लेकिन अनार के उत्पादन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ हम किस तरह की किस्में लगाएं तो जो हमारे किसान भाई बहनों को अच्छी पैदावार भी दें और पौष्टिक फल भी मिले,
4: ये आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जैसे कि आप बाकी व्यावसायिक किस्मों की बात करें, जैसे अनार के क्षेत्रफल की बात करें, बहुत तेज़ी से क्षेत्रफल बढ़ रहा है और आप ये मान के चलिए भारत एक अनार क्रांति को, अभी हम लोग के समय भारत में अनार क्रांति चल रही है, जिस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल हो, चाहे उत्पादकता हो, चाहे उत्पादन हो, 4 से 5 गुना हमारा उत्पादन बढ़ गया है पिछले 20 सालों में, क्षेत्रफल हमारा 2 से 3 गुना बढ़ गया है, उत्पादकता हमारी दुगनी हो गई है, हमारा जो निर्यात है वो लगभग 4 से 5 गुना बढ़ गया है, 18,000 मेट्रिक टन से हमारा लगभग 1,00,000 मेट्रिक टन के आसपास पहुंचने वाला, लगभग हम लगभग 700 करोड़ का अनार निर्यात करते हैं विभिन्न देशों में। तो इसके साथ साथ जो हमारी किस्म के विकसित किस्मों की बात की जाए तो फिर भी हमारा सारा अनार लगभग एक ही किस्म पे निर्भर कर रहा है, जो भगवा है, आप सभी उसका नाम जानते होंगे। भगवा जैसे रंग से ही पता चल रहा है कि बाहर से लाल रंग होगा, इसके दाने लाल रंग होंगे, बहुत ही अच्छी किस्म है, परंतु किसी भी फ्रूट प्रोडक्शन के सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि 7 से 8-10 किस्में अच्छी किस्में हों जो हर वातावरण के लिए सुटेबल हों, तो इसमें हमें और भी कार्य करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई की भी एक किस्म अनार में रजिस्टर हो चुकी है PPFRA के थ्रू, जिसका नाम शरद किंग है, जो भगवा से सेलेक्ट करके बनाई गई है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र की एक किस्म है सोलापुर लाल, इसके बाद काजरी की किस्म है काजरी विशाल, कई किस्में हैं, मृदुला अरक्ता रूबी है, बेसिन सीडलेस है, पुरानी किस्म हमारी गणेश थी अभी भी है, कुल्लू की तरफ जाएंगे तो आपको कांधारी किस्म मिलेगी, परंतु 80 से 85% एरिया आज के दिन में भगवा के अंदर है, बहुत ही अच्छी किस्म है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया था कुछ वर्षों पहले, और ये सालाना आप देखेंगे तो ये लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ की किस्म है, बहुत अच्छी है, पर हमको और भी उन्नत किस्में लानी चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, मैं यह टोकना चाहूंगा, एक बाजार में कंधार नाम के से बहुत अनार बिकता है, तो ये किस्म है, अगर ये किस्म है तो इसकी क्या कुछ खास विशेषता होती है दूसरी किस्मों के बनिस्पत?
4: जैसा मैंने बताया कि कुल्लू क्षेत्र में आप जाएंगे तो कांधारी किस्म, कांधार अफगानिस्तान का पुराना नाम था, वहां से, क्योंकि वो एरिया

0: हम देखेंगे तो आप अनार का भी वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है एक पार्ट ऑफ ओरिजिन है अनार का भी, तो आप जो कांधार के आसपास से ये किस्म आई, जो कांधारी कुल्लू में भी है, ये बड़े साइज की होती है पर इसका बीज थोड़ा कड़ा होता है और थोड़ा अम्लता ज्यादा होती है, पर कांधारी किस्म जो है वो कांधार अफगानिस्तान के आसपास की है और भारत में कई जगहों पर इसको मुख्यतः कुल्लू जो है आपका हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ कांधारी की पैदावार की जाती है।
1: जी कार्यक्रम चल रहा है हेलो फार्मर्स, और हेलो फार्मर्स में आज हम बातचीत कर रहे हैं अनार के विभिन्न उत्पाद और निर्यात की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो इस विषय पर यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन सभी के लिए खुल चुकी है, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं वो टेलीफोन लाइन्स हैं 2342-1081 और 2342-1083। दिल्ली के बाहर के श्रोता जो भी हमें कॉल कर रहे हैं वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेलो फार्मर्स में, और दोस्तों हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, तो हमें इंतजार है हमारे बाकी के श्रोता भी हमारे साथ जुड़े। तो डॉक्टर साहब सुनते हैं कि क्या है इनका प्रश्न। हेलो
5: जी, नमस्कार सभी को।
6: जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे
5: हैं? मैं एडवोकेट डिबलू सिंह मुंडन बोल रहा हूँ जी, स्याना विधानसभा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से।
6: जी
5: मैंने अपने घर में अनार के पेड़ लगा रखे हैं 3-4, तो अब उन पे फूल आता है और गिर जाता है जी, वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें?
1: जी डॉक्टर साहब।
0: जी देखिए, अनार में पहले उसके फसल चक्र को हमें समझना पड़ेगा। हम मुख्यतः क्या करते हैं, जब अनार में पुष्पन शुरू होता है उस समय उसकी देखरेख शुरू करते हैं, उसमें खाद पानी उस समय डालना शुरू करते हैं, परंतु ऐसा नहीं, आपको जब पुष्पन चाहिए तो उससे 2 से 3 महीने पहले ही आपको उसमें खाद पानी की व्यवस्था करनी है। कुछ समय के लिए इसमें पानी रोक के इसको स्ट्रेस डाला जाता है, जिसको हम स्ट्रेस फेज बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली जहां हम बाहर रेगुलेशन करते हैं उन क्षेत्रों में करते हैं, पर किचन गार्डन के लिए आपको करना है तो ये एकदम कंपलसरी नहीं है, आप बिना स्ट्रेस दिए भी, पर जब आपको पुष्पन चाहिए तो कुछ समय के लिए आप पानी रोक दें, पर पुष्पन से आने से 3 से 4 महीने पहले आपको इसमें जो भी रिकमेंडेड जो फर्टिलाइजर है और जो आपको खाद पानी इसमें देना है उसको देने के बाद लगभग आप 15 से 20 दिन पानी रोक के रखें ताकि पौधे को थोड़ा स्ट्रेस मिले, उसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इससे पुष्पन आएगा। और जो खाद आप 3 से 4 महीने पहले पौधे को देते हैं, ऐसा नहीं कि खाद तुरंत केवल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर छोड़ के, ऐसा नहीं कि खाद तुरंत पौधे को मिल जाता है, पौधे को उसको मिलने में समय लगता है। इसीलिए जब आप फल पकड़ने का सोचें, पुष्पन पकड़ने का सोचें, आप ये देखें कि पौधे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं, तो इस ये मुख्य वजह है पुष्प गिरने का। इसके बाद अगर पुष्पन के समय में आपका बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो भी फ्लावर ड्रॉप का एक मेजर इशू आता है, और कई वजह है, पर अगर आप न्यूट्रिएंट इसका पोषक तत्व इसका ध्यान रखते हैं, और बरसात में तो बहुत सी बीमारियां भी ऐसी आती हैं जिससे फल धब्बे है, फलों का सड़न है, जो छोटे छोटे फल होते हैं वो गिर जाते हैं, बहुत सा आपका इसमें फ्रूट बोरर का ही प्रॉब्लम आता है, तो इन सब के लिए आप चाहें तो अगर आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, कीटनाशक यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, 10,000 ppm का आता है, 3 ml/L के हिसाब से।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो
7: हेलो
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फार्मर्स में, अपना नाम बताएं, परिचय दें और अपना सवाल करें।
7: जी मैं रोहित यादव प्रतापगढ़ प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
1: जी
7: जी मेरा ये सवाल है कि क्या हम अनार की खेती अपने साइड यहाँ प्रतापगढ़ साइड में कर सकते हैं, प्रयागराज साइड में कर सकते हैं?
0: देखिए किसान भाई,

0: हमारा क्या है कि जहाँ पे भी जैसे बनारस का भी बनारस के आसपास जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ नहीं कर सकते। जैसे मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है जहाँ थोड़ा कम बरसात होती है, जहाँ मिट्टी थोड़ी हल्की प्रकार की है। तो ये आपका लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आप ये देख लीजिए कि अगर आपके यहाँ 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से वर्षा कम हो रही है और साथ में आपकी मिट्टी जो है बलुई टाइप की है, दोमट मिट्टी है, तो वहाँ आप खेती कर सकते हैं। अगर आपकी काली मिट्टी है, लाल मिट्टी बहुत अच्छी है अनार की खेती के लिए, तो पर अगर आपके यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे 1200-1300 मिलीमीटर हो रही है तो उस, और आपकी मिट्टी थोड़ी भारी है, जैसे खेत में भी हम देखते हैं जो नीचे वाला खेत है जहाँ पे स्लोप है, जहाँ नीचे के साइड है, वहाँ अनार न लगाएं। जो खेत का ऊपर का भाग है जहाँ पानी जमा नहीं होता हो, वो क्षेत्र आपके लिए अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा मैंने बताया कि भारत के विभिन्न प्रांतों में अनार की खेती की जाती है। अगर आपके खेत में भी और ये जो बरसात का मैंने बताया और मिट्टी का रिक्वायरमेंट बताया, अगर ये फुलफिल होता है तो आप कर सकते हैं। और यूपी के कुछ भागों में खेती अनार की भी जा रही है।
1: जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता, उनके सवाल का जवाब उन्हें मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आपने कई बार बोला कि पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी रुकना नहीं चाहिए, और अनार की खेती में पानी की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी का सही प्रबंधन। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अनार की फसल में जो सिंचाई है उसका सही प्रबंधन किस तरीके से करें हमारे किसान भाई।
0: अगर आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे कि अनार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अनार में अगर थोड़ा बहुत पानी कम हो गया तो थोड़ा फसल नुकसान हो सकता है, फ्रूट क्रैकिंग हो सकता है। पर अगर आपने पानी ज्यादा दे दिया तो इसमें विल्ट की प्रॉब्लम आती है, फ्लावर ड्रॉप हो सकता है, बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। तो जल प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि अनार फल फसलों में हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय में फ्लावरिंग ले रहे हैं या क्या सीजन चल रहा है। तो प्रति हफ्ता जल की जो सिंचाई की मात्रा है वो बदलती रहती है। अगर गर्मी का समय है तो आपको ज़्यादा सिंचाई करना पड़ेगा। पर कोई भी फल फसल, पर्टिकुलरली जैसे अनार है, अंगूर है, जो व्यावसायिक फसलें हैं जहाँ आप ज़्यादा इनपुट लगा रहे हैं, मेरा यही रिकमेंडेशन होगा, बहुत सी सरकारें आपको ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी दे रही है, तो आप जो है ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत ही अनार की खेती करें और बूंद सिंचन से आपका जो जल प्रबंधन है वो बड़ा ही उत्तम होगा। और इसी के बेसिस पे आप इसके साथ आप फर्टिलाइजर भी, फर्टिगेशन भी कर सकते हैं इसी जल के माध्यम से। तो आप जल प्रबंधन के अगर आप तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप फ्लडिंग ना करके और सिंचाई की पद्धति ना अपना के आप बूंद सिंचन का इस्तेमाल करें।
2: और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी, आप अपना नाम बताइए और आप अपना प्रश्न पूछिए।
3: अरुण बोल रहा हूँ दिल्ली से।
2: जी, सवाल
3: मेरे ना हाइब्रिड लगा रखा है मैंने अनार का
0: जी,
3: और उसके अंदर आ गए हैं 15-20 अनार, लेकिन उस पर अपना गिर रहे हैं, बार बार ही गिर जाता, पूरा नहीं हो पा रहा
0: जी।
1: जी,
0: तो जैसा मैंने इस पहले वाले प्रश्न में जवाब दिया था कि आपको उसके पोषण तत्वों को देना है, उसके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है। और जिस समय फल आ रहा है, फूल आ रहा है, उस समय ही न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके फूल आने के 3 से 4 महीने पहले आपको पोषण तत्व उसमें देने हैं ताकि वो पौधा अच्छे से अपने अंदर ले सके और वो पुष्पन और फ्रूट सेटिंग के उसमें हेल्प कर सके। साथ में आपको जब फ्रूट सेट भी हो रहा है तो उस समय अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं तो कम से कम साल में 2 बार बरसात में पर्टिकुलरली आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से जैविक उर्वरक आते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉम आजकल आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें बहुत से रोग, कीट और बीमारियां भी आती हैं जो आपका फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप के रिस्पॉन्सिबल हैं। जल प्रबंधन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इसका। तो आप उसके लिए अगर आप घर के इस्तेमाल के लिए पेस्टिसाइड का नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने बताया पोंगेमिया करंज के तेल का है, नीम सीड ऑयल है, बहुत से बोटैनिकल आजकल मार्केट में आ गए हैं, उनके इस्तेमाल से आपको थोड़ा इसको निरोगी भी रखने की जरूरत है। तो आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है और साथ में आपका जो इंटीग्रेटेड डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट है इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वाटर मैनेजमेंट के बारे में तो मैंने विस्तार से आप लोग को बताया ही है।
2: डॉक्टर सिंह, बहुत सारे सवाल आए कि शौकिया तौर पर तो किचन गार्डन में लोग अपने अनार के पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रगतिशील किसान, युवा किसान एक अनार के बाग को कमर्शियल तौर पे लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, मिनिमम उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी कितनी होगी और कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी देखिए, कोई भी फल फसल, अनार ही नहीं, कोई भी फल फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको लगाने से पहले की सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लगाने के बाद जानकारी लेने आते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और कोई भी गलती जो आपने पहले कर दी है उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और वो जब तक वो बाग रहेगा 20 साल 30 साल 40 साल जब तक रहेगा तब तक वो आपको हर समय कष्ट देता रहेगा। तो आप पहले तो जैसा मैंने बताया कि जलवायु मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हल्की मिट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बरसात जहाँ पे 1500 2000 मिलीमीटर बरसात हो रही है औसतन वार्षिक वर्षा है वहाँ पे आप अनार न चूज़ करें, अदर दूसरी फ्रूट क्रॉप चूज़ करें जहाँ पे 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उस या उससे नीचे है वो अनार के लिए अच्छा एरिया है। आपकी बलुई मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ा मिट्टी अगर आपकी हल्की है पर उसमें छारी भी है तो भी चल जाएगा, पर भारी मिट्टी में अनार लगाने की कोशिश न करें। साथ में गड्ढे सही समय पे आपको गर्मी में गड्ढे खोद देने हैं ताकि शौरीकरण से बहुत से जो मिट्टी में आपके जो बहुत से पैथोजन होते हैं उनका लोड कम हो पाए। तो कई इसमें बिंदु हैं, इस पे तो एक दो घंटे भी ऐसे बताया जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा आज का विषय है कि अनार के विभिन्न उत्पाद, तो अगर हम उत्पादों की बात करें तो आखिर अनार के दानों से, अनार से ऐसा क्या क्या बनाया जा सकता है जिससे किसान की जो है आय बढ़े, किसान अनार की खेती की तरफ प्रेरित हो, और अनार में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का जो है वो हम निर्माण कर सकते हैं, जैसे जूस हुए, कॉन्सेंट्रेट हुआ, सिरप हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसानों की जो है आमदनी बढ़ाने के स्रोत हो सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं।
0: जी, प्रोडक्ट तो बहुत से हो सकते हैं, जो आज के समय में व्यावसायिक मूल्य संवर्धित उत्पाद चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। जैसा आप सभी जानते हैं कि जूस RTS, जूस में जब कोई कुछ मात्रा में हम पानी मिलाते हैं उसका TSS एक लेवल तक मेंटेन करते हैं तो उससे रेडी टू सर्व बिवरेजेस बन जाता है। इसके बाद जो एक कमर्शियल स्तर पर चल रहा है मिनिमली प्रोसेस्ड एरियल इसको बोलते हैं, और भारत की बहुत सी कंपनियां इसमें इस कार्य को कर भी रही हैं, भारत सरकार का भी सहयोग है। तो इससे क्या होता है, हम दाने को छिल के जो दाना है वो यहां से यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है और ये जो है दूसरे से तीसरे दिन एयर लिफ्ट होकर जाता है। तो मिनिमली प्रोसेस्ड एरियल में आप अगर ऊपर से अनार में कुछ दाग भी लगे हुए हैं तो छिलका हटाने के बाद अगर आपका दाना अच्छा है तो मिनिमली प्रोसेस कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती है। परंतु ये है कि इसको मशीन से नहीं, इसको हाथों से ही किया जाता है तो हाइजीन का और इसका इशू होता है, अदरवाइज मशीन में अगर इसका दाना डैमेज हो गया तो इन्फेक्शन आने का चांस होता है। तो इसको मिनिमली प्रोसेस डेरियल है, जूस है, कंसनट्रेट है, सीड ऑयल के बारे में जैसा मैंने बताया कि पोमग्रेनेट सीड ऑयल लगभग 20-25% तक अनार के सूखे बीज में तेल है और ये बहुत हाई वैल्यू ऑयल होता है। बहुत से आपका जो ऑनलाइन कमर्शियल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी ये बीज तेल आपको वर्जिन पोमग्रेनेट सीड ऑयल के नाम से मिल सकता है, बहुत महंगा उत्पाद है।
2: डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि मूल्य संवर्धन कैसे हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे किसान भाई बहनों के लिए बाजार, तो एक तो जो फल है उसका बाजार कौन कौन सा हो सकता है, साथ ही मूल्य संवर्धन के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसके बाजार कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे हम अपनी बिक्री कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
0: सब कुछ तो आके पैसे पे ही टिकता है, बहुत जरूरी प्रश्न ये आपने पूछा। इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ पोमग्रेनेट हमारा कहाँ एक्सपोर्ट होता है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में होता है, वॉल्यूम की बात करें। सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा पैसे का हम एक्सपोर्ट करते हैं तो गल्फ कंट्रीज में करते हैं, परंतु अगर बात करें प्रति किलो प्रति यूनिट सबसे ज्यादा आमदनी किधर एक्सपोर्ट करने से मिलता है तो हमारा यूरोप और यूएस में है। तो अगर क्या होता है, अगर आपका जो थोड़ा कम अच्छा माल है वो आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो उससे बेहतर माल है आप गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो सबसे ए ग्रेड आपका पोमग्रेनेट निकल रहा है उसको आप यूरोपियन कंट्री में यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएस में भी हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छा हमको रिवेन्यू आता है, और हम सालाना जो पहले लगभग 2010-11 में बात करें उसके आसपास की तो हम 18,000 टन के आसपास निर्यात करते थे, और आज के दिन में हम 80 से लेके लगभग 1,00,000 टन तक निर्यात करते हैं, कई बार ये 70 भी होता है, कई बार 99 भी हो जाता है, और जो हमें इससे जो फॉरेन रिवेन्यू मिलता है वो लगभग 700 करोड़ के आसपास का फॉरेन रिवेन्यू हम अनार में ये जनरेट करते हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि जो मिनिमली प्रोसेस डेरिल है वो इंडिया से बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, वो यहां से शिप से नहीं जा सकता, वो एयर लिफ्ट होता है, वो दूसरे से तीसरे दिन वहां पहुंच जाना चाहिए और उसकी सेल्फ लाइफ 14 दिन के आसपास होती है। तो इससे भी आप अनार का जो दाम है, जो आप 100 रुपए किलो अनार देख रहे हैं, अगर दाना निकाल के आप बेचते हैं तो वो लगभग 5-7 इवन 10 गुना तक बढ़ जाता है। जो सीड ऑयल मैंने बताया, सीड ऑयल का आप दाम देंगे तो वर्जिन पोमग्रेनेट सीड ऑयल लगभग लगभग 700-800 रुपए का 50-60 ml मिलता है। तो अगर आपका मान लीजिए फ्रूट खराब हो गया है जिसको आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं या ऊपर से बहुत ज्यादा दाग आ गया है तो उसके सीड को कभी आप तेल निकाल के एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है, सही क्षेत्र और पौध सामग्री का सही चुनाव, वैज्ञानिक खेती, गुणवत्ता पर जोर और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और बाजार की समझ, इन सभी को अगर आप साथ लेकर के चलेंगे तो अनार की खेती से आप अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकते हैं हमारे किसान भाई बहनों। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया, हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। और रजनीश, इससे पहले कि हमारे कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त हो और हमें इजाजत लेनी हो, इससे पहले बस हम यही कहना चाहेंगे कि लाल दानों वाला ये जो फल है ये सिर्फ सेहत की कहानी नहीं कहता बल्कि ये किसान की समृद्धि की कहानी भी लिख सकता है। तो खेतों में सही किस्मों का इस्तेमाल करें, वैज्ञानिक तकनीक से आप समझ से इस खेती को करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं, यही हमारा भी आप सभी के लिए प्रयास होता है। तो आज के इस अंक हेलो फार्मर से मुझे यानी कोमल
2: और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए,
1: नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया।

0: said the comprehensive approach can significantly deepen India's semiconductor capabilities. Meanwhile, 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, ISP, recorded year-on-year expansion in June this year, with 8 posting double-digit growth. The draft electoral roll for Delhi was published today after the completion of the Special Intensive Revision SIR, which began on the 20th of June and culminated on the 17th of August. According to the draft electoral roll, out of 1,45,10,299 electors, a total of 97,53,577 voters have submitted their enumeration forms. The electoral body stated that 47,56,722 enumeration forms could not be collected due to absent, shifted, dead or duplicate electors found during house-to-house visit by booth-level officers. Citizens can download the draft rule from ceodelhi.gov.in. In table tennis, India's Ankur Bhattacharjee won his maiden men's singles title at the WTT Feeder Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denis Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's doubles gold with compatriot Akash Pal, defeating Hungarian-Polish pair of Saba Andras Sansosi and Alan Kulsiki Zalewski 3-1 in the final. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम का विषय है शंघाई सहयोग संगठन 25 वर्षों की यात्रा और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका। एशिया और यूरेशिया के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO आज एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच बन चुका है। आज SCO के 10 सदस्य हैं। इनका संयुक्त क्षेत्रफल करीब 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी 3,40,00,000,000 से अधिक है। संगठन के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 25% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 15% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन SCO की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है। इस संगठन की शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों से हुई थी। धीरे धीरे इसका दायरा सुरक्षा से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था, व्यापार, संपर्क, संस्कृति, ऊर्जा, पर्यावरण, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क तक पहुंचा। और आज जब SCO अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित हो रहा है। भारत भी इस शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सुरक्षा, संपर्क तथा अवसरों से जुड़े भारत की प्राथमिकता वाले मुद्दों को सामने रखेंगे। तो आखिर SCO की शुरुआत कैसे हुई, पिछले 25 वर्षों में ये संगठन किस तरह बदला और इसमें भारत की भूमिका किस तरह विकसित हुई, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
3: शंघाई सहयोग संगठन की कहानी को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में वापस जाना होगा। उस समय चीन और उसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में विश्वास बढ़ाना और सैन्य तनाव कम करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से वर्ष 1996 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस और ताजिकिस्तान ने सीमा क्षेत्र में सैन्य विश्वास निर्माण से जुड़ा समझौता किया। इसके बाद 1997 में सीमा क्षेत्र में सशस्त्र बलों की पारस्परिक कमी से संबंधित समझौता हुआ। इन 5 देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की व्यवस्था को शंघाई 5 कहा गया। फिर 4 जुलाई 2000 को दुशांबे घोषणा में शंघाई 5 को विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग की एक व्यापक क्षेत्रीय संरचना में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी दौरान उज्बेकिस्तान भी इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और इसके ठीक 1 साल बाद आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने इस पूरी प्रक्रिया को एक नए संगठन का रूप दिया। 15 जून 2001 चीन के शंघाई शंघाई शहर में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान

0: और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की स्थापना की घोषणा की। संगठन ने स्पष्ट किया कि वो किसी दूसरे देश या क्षेत्र के खिलाफ बनाया गया सैन्य गठबंधन नहीं है, इसके बजाय ये खुलेपन, संवाद और विभिन्न देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के सिद्धांत पर काम करेगा। इसके बाद SCO के संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया। 7 जून 2002 को सेंट पीटर्सबर्ग में SCO चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, जो संगठन का मूलभूत दस्तावेज है। ये 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यहीं से SCO की यात्रा एक सुरक्षा केंद्रित समूह से एक व्यापक बहुपक्षीय संगठन की ओर बढ़ने लगी।
1: SCO की स्थापना के शुरुआती वर्षों में सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता प्रमुख विषय रहे, लेकिन समय के साथ संगठन ने आर्थिक और मानवीय सहयोग को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। 2004 में स्थायी संस्थाओं के गठन के बाद 2005 का अस्ताना शिखर सम्मेलन भी संगठन के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
2: SCO के विकास की कहानी कई महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों से होकर गुजरती है। 2005 का अस्थाना शिखर सम्मेलन इस विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उस समय तक SCO सेक्रेटेरिएट और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी RATS काम कर रहे थे और संगठन अपने बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। समय के साथ SCO में आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग की व्यवस्थाएं विकसित हुई। SCO की संस्थागत संरचना में राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के अलावा सरकार प्रमुखों यानी प्रधानमंत्रियों की परिषद, विदेश मंत्रियों की परिषद, राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद और विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेंसियों की बैठकें शामिल है। यानी SCO केवल सालाना शिखर सम्मेलन तक सीमित संगठन नहीं है, इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बैठकें और कार्यतंत्र चलते हैं। जून 2017 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में भारत को संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। भारत के प्रवेश के बाद SCO का भौगोलिक और राजनीतिक दायरा काफी बढ़ गया। इसके बाद संगठन के एजेंडे में मध्य एशिया के साथ साथ दक्षिण एशिया से जुड़े मुद्दों की प्रासंगिकता भी बढ़ी। 2023 में ईरान SCO का पूर्ण सदस्य बना, जबकि बेलारूस को पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और 2024 में बेलारूस संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया। SCO अब केवल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का मंच नहीं है, ये विभिन्न स्तरों पर निरंतर संवाद और सहयोग की एक संस्थागत व्यवस्था बन चुका है। और इसी क्रम में 2025 का तियानजिन शिखर सम्मेलन भी महत्वपूर्ण रहा। चीन की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन में राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उद्योग, सतत विकास और नई तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सम्मेलन में SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अंटिल 2035 समेत 24 दस्तावेजों को मंजूरी दी गई।
1: भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना, लेकिन सदस्य बनने के कुछ ही वर्षों बाद भारत ने संगठन की अध्यक्षता भी संभाली। सितंबर 2022 से जुलाई 2023 तक भारत ने पहली बार SCO की अध्यक्षता की। भारत की अध्यक्षता का प्रमुख संदेश था टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर यानी S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और E फॉर एनवायरनमेंट। अब सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
3: भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में SCO की रोटेटिंग चेयरमैनशिप संभाली। इसके बाद भारत की पहली अध्यक्षता के दौरान 134 बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 14 मंत्री स्तरीय बैठक शामिल थी। भारत ने अध्यक्षता के दौरान संगठन के एजेंडे में कुछ नए सहयोग क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाया। इनमें स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे क्षेत्र शामिल थे। भारत की अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू था SCO सहयोग को केवल सरकारों के बीच संवाद तक सीमित न रखना। इसके लिए संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को भी महत्व दिया गया। वाराणसी को 2022-23 के लिए SCO की पहल कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया। वाराणसी में SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मार्च 2023 में SCO टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग और टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक भी वाराणसी में हुई। इन बैठकों में SCO टूरिज्म ब्रांड को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और मेडिकल तथा हेल्थ टूरिज्म में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पर्यावरण भी भारत की अध्यक्षता के प्रमुख क्षेत्रों में रहा। अप्रैल अप्रैल 2023 में एससीओ देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने मिशन लाइफ और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने सहयोग

0: पर जोर दिया। एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में स्वास्थ्य सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था, संयुक्त शोध और आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के इस्तेमाल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत की अध्यक्षता का समापन 4 जुलाई 2023 को हुआ एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट के साथ। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने तथा डिजिटल परिवर्तन में सहयोग से जुड़े संयुक्त वक्तव्य भी जारी किए गए।
1: 25 वर्षों की एससीओ यात्रा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत सीमा क्षेत्रों में विश्वास और सुरक्षा से हुई, लेकिन समय के साथ ये बहुआयामी क्षेत्रीय सहयोग के एक बड़े मंच में बदल गया। और इसी बदलते परिदृश्य में भारत की भूमिका एक ऐसे सदस्य देश की है जो सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, तकनीक, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को भी क्षेत्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण आधार मानता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, today, friends, being a Monday, we shall be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. And the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, please add a prefix of 011 as a code to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले STD कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड, हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी.
1: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग.
0: हाँ जी, थैंक यू सुबोध. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे. वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100. इंडियाज रियल GDP ग्रोज बाय 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा. निफ्टी 24,100 से नीचे पहुंचा. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल.

0: फॉर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन।
1: जी लालिमा, अब खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चलते हैं एक कॉलर के पास जो जुड़ गए हैं।
0: जी जी,
1: दिल्ली से सतीश हमारे साथ है। स्वागत है सतीश आपका, सवाल पूछे।
0: जी सतीश, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज।
2: यस, माय क्वेश्चन इज मैम कि गोल्ड और सिल्वर का अभी आउटलुक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में?
3: सतीश जी, गोल्ड में अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा करेक्शन आया था, उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी लोगों के लिए, लेकिन अब चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें कि क्राइसिस फिर जो है थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है और उसको लेके कंसर्न्स हैं, हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं प्रेशियस मेटल्स के अभी और बढ़ें। तो आप जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा जो है प्रेशियस मेटल्स का रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है दोनों प्रेशियस मेटल्स की वो काफी अच्छी है।
0: एंड गोल्ड एंड सिल्वर लव जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
3: एब्सोल्युटली।
1: चलिए राइट जी, खबरों का सिलसिला शुरू करें। हम पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या रहा। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957 पर बंद हुआ। निफ्टी 95 अंक नीचे 24,080 पर आ गया। एनएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा। मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 0.7% नीचे आ गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कारोबार की शुरुआत से ही सूचकांकों में कमजोरी रही। पूरे सत्र में अधिकांश सेक्टर्स पर बिकवाली का दबाव बना रहा।
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. The Sensex declined 307 points to close at 76,957. The Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investor sentiment. Both the indices witnessed selling pressure across most sectors throughout the session.
1: और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर आज कैसे परफॉर्म किया। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें। अडानी पोर्ट्स में 4.1%, ITC में लगभग 3.7% और भारती एयरटेल में लगभग 2.8% की गिरावट देखी गई। इसके उलट सन फार्मा में 1.9%, ICICI बैंक में 1.7% और एक्सिस बैंक में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई।
0: Let's take a look at the sectoral indices now. And on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, utilities decreased 2.6%, metal lost 2.4%, services dipped 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt rose over 1.2%. Mid-small private banks gained 1.2%, and Bankex added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,572 companies declined, 1,858 advanced, and 250 remained unchanged.
1: अगले कॉलर के पास जाने से पहले बता दे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे बढ़कर 95.17 रुपए पर बंद हुआ।
0: एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू बिहार वेयर टिंकू राय इज ऑन द लाइन। जी टिंकू जी, सवाल पूछिए अपना। जी
4: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
3: नमस्ते टिंकू जी,
4: मेरा मेन यही दो सवाल है। एक जो PPF अकाउंट जो खुलता है वरिष्ठ नागरिक के लिए, वो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है, ब्याज इंटरेस्ट या अंतर है? और एक ये है जो ATM कार्ड हम किसी बैंक से लेते हैं, क्या इसके साथ इंश्योरेंस मिलता है या ऐसी अफवाह है? कोई बताता है 2 लाख का इंश्योरेंस इसका फ्री रहता है इस पर? यही मेरा दो सवाल का जवाब चाहिए
3: टिंकू जी। आपने जो

0: सवाल किया है आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। पीपीएफ में थोड़ी सी बंदिश रहती है, वो लॉक्ड इन रहता है, थोड़े बेटर रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं वहाँ पर, फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं जो सरकार नोटिफाई करती है, सरकार की तरफ से वो ब्याज दरें तय होती हैं,
1: टैक्स नहीं लगता उस पर,
0: और टैक्स भी नहीं लगता है,
1: दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
0: दूसरा चीज है कि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स में रेट में फ्लक्चुएशन जिस तरह से होता है वो उतार चढ़ाव का गुंजाइश रहता है।
1: All right, and now he asked another question.
0: इंश्योरेंस की बात आपने कही थी, इंश्योरेंस के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंश्योरेंस का है।
2: एटीएम कार्ड के साथ इन्होंने पूछा है कि एटीएम कार्ड के साथ इंश्योरेंस है या नहीं।
0: एटीएम कार्ड के साथ
2: एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस जो बैंक्स ऑफर करते हैं आजकल हर अकाउंट के साथ,
0: ज्यादातर बैंक्स करने लगे हैं वो, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो एटीएम कार्ड के साथ आपको सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस दिया जा रहा है।
2: जी चलिए अगली खबर, आज की बड़ी खबर है जीडीपी। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को तृतीय क्षेत्र ने प्रमुख रूप से मजबूती प्रदान की है। इस क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी गई। इसमें मुख्य योगदान वित्त, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं का रहा, जिनमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। द्वितीय क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें मुख्य योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा, जिनमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई।
1: So, how would you? All right, I think we go ahead and see the Prime Minister's reaction. Well, the Prime Minister has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions, and global uncertainties. And before we go any further, we have Nitin online calling us from Delhi. Yes, Nitin ji, yeah, sawal puchhiyega apna ji.
3: Dhanyawad ji.
1: Ji.
3: Madam, mera ye puchna hai ki main senior citizen hoon aur mere abhi ek mahine baad meri maturity ho jayegi, abhi meri mature ho jayegi. To lagbhag achhi khasi hai, 30-35 lakh ki hai. तो इसमें ये मुझे
0: बताइए कि
3: हमें मार्केट में पैसा लगाने की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या और से बेस्ट सब्जी से क्या मिल सकता है, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड कहाँ हम इस चीज के लिए सोचे हैं? क्योंकि बच्चों के लिए, अगर बच्चे करते हैं तो इसके लिए तो वो कर सकते हैं।
2: तो आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं?
3: लगभग जैसे हम हर साल एक एक साल की एफडी होती है, 2 साल की भी होती है, तो अभी 1 साल की मेरी मैच्योर हो जाएगी और 2 साल की मेरी अगले साल मैच्योर होगी कुछ एफडियां, तो हम उसमें जाते हैं और सीधा हो जाता है, इसमें कोई सिद्धि नहीं हमें महसूस होती। शेयर मार्केट के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव और क्या कैसा उसका तरीका
0: है। एकदम आपने सही कहा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए और इसीलिए मार्केट मंत्रा में आपको हम जानकारी देते हैं। आपकी एफडी जो है, एक तो आप कम

0: अवधि के लिए उसको बैंक के साथ रखते हैं नितिन जी, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे लंबी अवधि तक रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसमें ब्याज भी बेहतर मिलेगा। अगर आप बाज़ार की तरफ आप उसमें कुछ अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, तो जो थोड़े सेक्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, जहाँ पर आपको लगता है, और जो कंपनीज जो जहाँ पे बहुत मजबूत हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, आप उस हिसाब से उनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप वो देखिएगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको बेहतर उसमें रिटर्न्स मिल पाएंगे।
1: Yeah, considering the fact he's a senior citizen, so risk appetite should be low.
0: Low, exactly. I mean, short-term investment is good. You have money in hand.
2: Yes. और उन्हें FD पर रेट भी ज़्यादा मिलता है.
0: Exactly.
2: जी. जी. दीपशिखा, आज की अब बड़ी खबर पे लौटते हैं हम. GDP के आंकड़े हैं जो बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं.
0: बहुत ही बेहतर आंकड़े जो हैं वो आए हैं, क्योंकि
2: खासकर जब दुनिया ऐसी चुनौतियों से गुजर रही थी,
0: हमने देखा
2: उस बीच हमारे देश का प्रदर्शन
0: जो है, दो ढाई महीना जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था ये, तो उस दौर में, और अगर आप आंकड़े भी देखें GDP के, तो निवेश में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कहना चाहिए सेक्युलर ग्रोथ है। अगर आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में भी जो एवरेज ग्रोथ चल रही है उसी हिसाब से है, तो आंकड़े जो हैं बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही बेहतर आंकड़े हैं, और उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं, क्योंकि ये आशा नहीं थी कि ये क्वार्टर जो है हमारा इतना मजबूत रहेगा।
1: एंड द सर्विसेज सेक्टर एज ऑलवेज वी डू
0: सर्विसेज सेक्टर हैज ऑलवेज डन वेल एंड सो इट हैज रिमेन्ड यू नो इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, बट आई थिंक द important or I think the fact which is leaping out is you know how investment has grown and how it is doing now. Indications are that maybe you know private investment is starting to show some positive signs. So which is a very positive indication coming out from the data.
2: जी, खबरों और चर्चा का सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी चले अगले कॉलर के पास। दिल्ली से सतपाल सिंह हमारे साथ है। सतपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार सतपाल जी।
3: हाँ
1: जी, सवाल पूछे।
3: मेरा क्वेश्चन ये है कि आज का जो अमेरिका ईरान का जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, काफी टाइम से 6 महीने हो गए हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी आगे चल सकता है इस सिचुएशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस का कैसे रहने वाले हैं अगले 6 महीने में?
0: सतपाल जी, देखिए, जो जियोपॉलिटिकल संकट है वो तो हमने आज भी देखा, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया में। वहाँ पर समाधान जो है, एक कहना चाहिए जैसे ड्यूरेबल पीस जो है, वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आपने कहा कुछ एक क्षेत्र, अगर हम देखें आज के हमारे GDP के आंकड़े आए हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है इकॉनमी का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आगे जाने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है तो क्रेडिट का डिमांड रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र आप देख सकते हैं, सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्चा कर रही है, तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, डिफेंस में आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जाती है कि ये आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे। आपने कहा गोल्ड जो है, चूँकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से चल रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप उसको देखिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो।
1: राइट, वी कनेक्ट टू भोपाल नाउ एंड शंकर जी हैज जॉइंड अस। यस शंकर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, माय क्वेश्चन इज अबाउट निफ्टी व्हिच हैज बीन होवरिंग एट 24,000 फॉर लास्ट 3 years कंसेक्यूटिवली, 24, 25 एंड नाउ 26. The major reason could be FII is pulling out, and FII has pulled out because they fear that dollar will rise and they have to withdraw in dollar, and dollar will rise because of the international situation. So in this scenario and all

0: So we have imposed, you know, there are dollar fluctuation ke alawa ek aur problem hai ki they are taxed here at 12.5% on long term capital gain and short term capital gain. Isn't it time to for government to think something about this, because okay, economy is doing well, but market is not performing, so it is not reflecting in our countries, you know, one of the major factor which is basically indicator.
1: Very interesting question, Shankar ji. You know, a lot of investors have been representing to the government, but we saw they did, you know, give some relaxation with regard to investment for foreign portfolio investors in government securities. You know, it's a wider issue. Taxation is a wider issue, and there is a give and take. There is a lot of demand. Government has to carry out a lot of social expenditure. So I'm sure if they feel compelled to take this decision, they will at some juncture. I'm sure the policymakers are examining it.
2: जी, अगले कॉलर है कोलकाता से अतनु साहा, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्र सर। माय क्वेश्चन इज मैम, दिस इज हेजिंग अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी अदर देन गोल्ड, व्हाट वुड बी मैम? थैंक यू।
2: और क्या हो सकता है?
1: बिल्कुल, आप जो है अगर मार्केट के हिसाब से हेज करना चाहें तो आपको कम रिटर्न्स पे बैंक्स देखने पड़ेंगे, एफडीज देखने पड़ेंगे। यू एक्चुअली हैव टू लुक एट अ मोर बैलेंस पोर्टफोलियो इन विच यू हैव यू नो ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज मिक्स, विच विल गिव यू सम हेज अगेंस्ट very sharp fluctuations or very sharp fall in markets.
4: All right, let's go ahead with some more news. 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, that's ISP, recorded year-on-year expansion in June 2026, with 8 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial, ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, today, real estate led the pack with growth of 24.7%, followed by retail trade at 18%. Wholesale trade grew by 15.1%, administrative and support services rose 14.4%, and IT and computer related services increased 13.5%. Meanwhile, air transport was the only subsector to contract, falling 6% from a year earlier. Moving ahead, the government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, said this while addressing the media in New Delhi today. After releasing the notifications for all the six pillars of the Semicon India Program 2.0, Mr. Vaishnav noted that there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
2: इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी है। India Electronics and Semiconductor Association ने आज Semicon 2.0 की आधिकारिक अधिसूचना का स्वागत किया। ये कार्यक्रम Semicon India Program की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि सेमीकॉन 2.0 का व्यापक दृष्टिकोण भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को काफ़ी मजबूत कर सकता है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और लालिमा, एक खबर जो अभी हमने आपने पढ़ी थी आईएसपी की, उस पर शायद हमें कुछ और गौर करने की जरूरत है। दीपशिखा, क्या कहना आपका?
1: देखिए, हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे। सर्विस क्षेत्र जो है काफी रोबस्ट स्थिति में है, उसका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, बेहतर कर रहा है। ये इंडेक्स जो है अभी थोड़ा नया इंडेक्स है, इसका ट्रायल पीरियड ही चल रहा है,
2: जी, जी, जी।
1: तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट हाँ, काफी हद तक कैप्चर करता है ये सर्विस क्षेत्र का परफॉर्मेंस।
2: अच्छे संकेत
1: तो है। अच्छे संकेत हैं।
4: All right, now we are joined by Amit Jha from Delhi. Ji, Amit Ji, sawal.

0: पूछिए जी।
1: हाँ नमस्कार लालिमा मैम, आपका नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी जी।
1: आप रेनबो पे आते हैं तो अच्छा लगता है, हिंदी बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपका।
0: जी जी थैंक यू।
1: दीपशिखा मैडम से नमस्कार मैडम
2: जी। नमस्ते अमित जी, बताइए।
1: मैडम आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे जीडीपी का आंकड़े पे तो आप लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब हमने टारगेट ले रखा है, तो क्या ये जीडीपी का वृद्धि दर इतने प्रतिशत के हिसाब से हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे, या वृद्धि दर और तेज करने की जरूरत है? अगर है तो किन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस करना? धन्यवाद।
2: अमित जी देखिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए चहुमुखी विकास ज़रूरी होगा। विकसित देश बनने के लिए आपको वृद्धि ग्रोथ तो चाहिए ही, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया हुआ है और इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है
3: जी। अगली खबर है अब एशियाई और यूरोपीय बाज़ारों की। एशियाई बाज़ारों में साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 1% पढ़कर बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 0.1% नीचे आ गया। यूरोपीय बाज़ारों में कुछ देर पहले तक लंदन का फुटसी 0.2% ऊपर था, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.7% नीचे कारोबार कर रहा था।
0: And let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices rose over 3% today amid renewed geopolitical tensions. United States struck Iranian military targets on Larak Island in the Strait of Hormuz last night, and Tehran said it had retaliated. Brent crude was trading 3% up at $90.78 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% higher at $86.31 per barrel when reports last came in.
3: और सोने और चांदी का हाल तो देखे, लेकिन दीपशिखा ये जो अभी लालिमा बता रही थी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बातें, जब तक लगता है जो अशांति है, और हम अभी पश्चिम एशिया की बात करें उससे भी पहले से अगर हम देखें तो जो सीधे हमारे क्रूड सप्लाई को उतना प्रभावित नहीं कर रहा था रूस और यूक्रेन, उसके बाद और अभी ये पश्चिम एशिया तो खैर पता नहीं रह रह कर ये चल ही रहा है। इसके साथ लगता है अब कहाँ, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें जितनी लोगों को आशंकाएं थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इतनी क्राइसिस हो जाएगी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
2: बहुत। आप देखिए जो जीडीपी के आंकड़े हैं, इसमें इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। आप देखिए सप्लाई चेन हमारी, उसको बना के रखना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उनका सप्लाई जो है उनके इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, हॉर्मुज से आता है, उस क्षेत्र से आता था। तो उसके बावजूद हम जो है सप्लाई कायम रख पाए, अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट दे पाए, और इसीलिए अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, खड़ी हुई है। और एक बहुत ही गहरा संकट था उस वक्त, अब हालांकि अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये संकट जो है उस हद तक थोड़ा सप्लाईज वहाँ से आने लगा है, तो हो सकता है कि आगे जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत बने, आगे चलकर
3: बेहतर प्रदर्शन करें।
2: हालांकि मॉनसून को लेके आशंकाएं हैं कि कंजम्पशन इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अब स्प्रेड जो है काफ़ी हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम शायद अगला क्वार्टर भी हमारा उतना ही मजबूत रहे।
0: एंड यू थिंक दीपशिखा वी डिड द वाइज थिंग टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ ऑयल बिकॉज ऑफ द स्टिकी पॉइंट एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट फॉर मेनी अदर थिंग्स विद इम्पोर्ट, वी जस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मूव टू अदर कंट्रीज एंड नॉट गॉट स्टक एट वन और टू एज बिफोर।
2: एब्सोल्युटली लालिमा, एंड आई थिंक दिस इज वॉट इंडिया डिड। You know, we are trying to cut dependence on single source of supply, not just for energy, but for all raw materials. And that is what government is also advising, suggesting to the industry, that they should not be dependent on single source for their supplies. So have a wider basket of suppliers, so that if something happens to one part of, you know, in one area of geography, your supplies are still sort of remains.
0: Yes. Yes.
3: Or

0: देखिए, सोने चांदी का हाल। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2.3% से ज़्यादा गिरकर 155,835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2.7% नीचे 237,199 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। और दीपशिखा, आज वक्त इतना ही है, नहीं तो सवाल और भी हैं चर्चा करने के लिए, विषय भी बहुत सारे हैं।
1: धन्यवाद सुबोध जी,
0: जी आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आंकड़े जो हैं वो वैसे ही आई थिंक अपलिफ्ट कर रहे हैं,
0: सबका मूड अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। India's real GDP grows by 7.8% in first quarter of current financial year, and global crude oil prices surge. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
4: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है।

0: on the 17th of August. According to the draft electoral roll, out of 1,45,10,299 electors, a total of 97,53,577 voters have submitted the enumeration forms. In table tennis, India's Ankur Bhattacharjee won his maiden men's singles title at the WTT Feeder Olomouc tournament at Cheku. The world number 78 defeated third seed Denis Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's doubles gold with compatriot Akash Pal, defeating Hungarian-Polish pair of C. András Santosi and Alan K. Jalowski 3-1 in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: Surkhiyon mein. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का समसामयिक कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर हैं, जहां वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत मध्य एशिया के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बना रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के व्यापक कूटनीतिक और सामरिक महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राहुल मिश्रा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुबोध जी।
2: राहुल जी, सबसे पहले अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री की जो किर्गिज गणराज्य यात्रा है, उसे आप भारत की विदेश नीति के हिसाब से किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मध्य एशिया भारत के लिए अब लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
3: जी बिल्कुल, देखिए सुबोध जी, मध्य एशिया के जो तमाम देश हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सोवियत सेंट्रल एशिया या सोवियत मध्य एशिया के ये पांच गणराज्य बने, जिनके साथ भारत ने 1991-1992 से ही अपने कूटनीतिक संबंध, अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। और भारत की बहुत प्रमुख नीतियों में से एक लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अलावा, अगर हम एक रीजन को लेकर के, एक खास क्षेत्र को लेकर के अगर भारत की कोई विदेश नीति को देखें, तो इस लिहाज से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मध्य एशिया के देशों को भारत ने हमेशा से एक प्रमुख स्थान दिया है। इस संदर्भ में मध्य एशिया के देशों के साथ, हालांकि हमारी कनेक्टिविटी की जो डायरेक्ट लिंकेज की जो बात है, वो एक बड़ा प्रश्न है और एक अनसुलझा हुआ सवाल है। और इसी वजह से एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने अपने एक मित्र को दिया था कि दिल्ली से कोची जाने में आपको करीब करीब 3.5 घंटे लगते हैं, और इतना ही समय अगर आप दिल्ली से ताशकंद जाना चाहें तो आपको लगेंगे। तो सेंट्रल एशिया हमारे इतने नजदीक है, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अब हमारे और उस क्षेत्र के बीच में इतनी कनेक्टिविटी नहीं। हजारों साल पुराना है हमारे संबंध जो है वो इन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से कहीं थोड़े से कमजोर हो गए हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के तहत और पिछले 12 वर्षों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य एशिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की बहुत कोशिश की। इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो उनकी यात्राएं हैं इस क्षेत्र को लेकर, चाहे इस क्षेत्र में चाहे उज्बेकिस्तान हो या किर्गिस्तान हो या कजाकिस्तान हो, करीब करीब इन तमाम मध्य एशिया के देशों की उनकी यात्राएं 4 या उससे ज्यादा बार हो चुकी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है जो कि किर्गिस्तान में हो रही है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन अगर द्विपक्षीय संबंधों को हम देखें तो किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं, और उसमें रक्षा क्षेत्र बहुत ही आम लोगों में जाने वाली बात नहीं है, लेकिन किर्गिस्तान के साथ भारत के रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत है और वो मध्य एशिया में भारत को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं।
2: जी, जैसा आपने कहा अभी कि SCO का आपने उल्लेख किया, तो प्रधानमंत्री अभी 26वें SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और अब उसकी स्थापना के जो 25 साल पूरे हो गए हैं, तो भारत के लिए इस मंच की अभी क्या प्रासंगिकता है और भारत इसमें अपनी भूमिका को

0: इस तरह देखता है।
1: एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पे भारत के लिए एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। पहला इस वजह से कि ये पूरे जो कॉन्टिनेंटल एशिया जिसको हम कहते हैं, जो लैंड बेस जमीनी जो एशिया है जो कि समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके केंद्र में एससीओ है, और जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, और ये पांच जो गणराज्य हैं मध्य एशिया के वो तो इसमें मेंबर्स हैं। तो इस लिहाज से, और भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें सदस्य हैं, तो इस लिहाज से एससीओ की बड़ी केंद्रीय भूमिका है कॉन्टिनेंटल एशिया की जो भू राजनीति और उसके जो सामरिक और आर्थिक कनेक्टिविटी के जो सवाल हैं उनको सुलझाने के लिए। तो एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को ये इस क्षेत्र में, खास तौर से चीन और रूस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद जैसी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ कैसे हमारे तमाम देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़े और इस पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका और तमाम देशों की भूमिका जो है वो प्रासंगिक रहे, इसके लिए एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये अगर हम उदाहरण या कंपैरिजन के तौर पे अगर हम क्वाड को देखें जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उसके मुकाबले ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि वो देश हैं जिनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति है उसको भी ये एक तरह से पूरी तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो एससीओ इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत जो कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल एशिया से जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है पूरे एशिया से, और दूसरी तरफ वो अपने हिंद महासागर और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की वजह से समुद्रिक रास्तों से जुड़ा है, तो भारत जिसके पास ये दोनों ही एक तरह से कहें कि प्लस पॉइंट्स हैं, उस लिहाज से एससीओ की सदस्यता उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की।
0: राहुल जी, भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच केवल रणनीतिक हितों तक ही संबंध नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है वो, और हमारे इन दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क भी, ये भी आपसी रिश्ते का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पुराने संबंधों को आधुनिक कूटनीति में किस तरह अब एक नई ऊर्जा दी जा सकती है?
1: किर्गिस्तान की जो एक बहुत ही खास बात है कि हमेशा से ही भारत और किर्गिस्तान के संबंध द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ, एक अगर हम इनको दो स्तंभ माने तो द्विपक्षीय के साथ साथ रीजनल जो संस्थान है, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एससीओ के जरिए हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इन दोनों में ही भारत और किर्गिस्तान के बीच में संबंध इन दोनों ही तरीकों से बहुत आगे बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार हालांकि 1 बिलियन के आसपास ही पहुंचता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध, जैसा कि सेंट्रल एशिया के बाकी देशों के साथ भी समस्या है, कनेक्टिविटी एक बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट ना होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है एयर कनेक्टिविटी का। तो आर्थिक मामलों में मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सी दिक्कतें पेश आई हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और किर्गिस्तान के बीच में पिछले बहुत वर्षों से खंजर नाम की एक्सरसाइज होती रही है, जिसका 13वां संस्करण अभी फरवरी 2026 में हुआ था। आईटेक प्रोग्राम्स को ले लें, या जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं किर्गिज सिविल सर्वेंट्स की और उनके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस को लेकर के, कल्चरल कनेक्ट को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में सहयोग के बहुत सारे रास्ते तलाशे गए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक आईटी सुपर पावर के रूप में और खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ लेकर चलने वाले आईटी सुपर पावर के तौर पे भारत ने अपनी एक बड़ी भूमिका तलाश ली है और दुनिया के तमाम देश उसको मान रहे हैं। तो इस लिहाज से भी किर्गिस्तान में एक आईटी सेंटर, भारत ने हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के तहत एक आईटी सेंटर बनाया है जिस पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, हायर एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल तो खैर बहुत बड़ा क्षेत्र दोनों देशों के बीच में हमेशा से रहा है, तो ये तमाम क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में सहयोग रहा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध आपसी विश्वास, परस्पर संबंधों में एक अटूट विश्वास के साथ साथ दोनों देशों के हितों में और उनकी जो डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रामाणिक दोनों देशों के बीच में दोस्ती रही है। तो हमेशा से ही किर्गिस्तान को भारत ने मध्य एशिया के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखा। हालांकि दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग उतना बड़ा नहीं है, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग की वजह से इस देश की महत्ता भारत के लिए बढ़ती है। एक बड़ा एंकर है ये, जिसे कहते हैं कि भारत को मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक बड़े दोस्त, एक बड़े एंकर, एक बड़े होस्ट के तौर पर किर्गिस्तान को आंका जा सकता है।
0: जी।

0: आपकी इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, तो क्या लगता है कि जो मध्य एशिया के अन्य देश हैं उनको मिलाकर भारत एक अपनी मध्य एशिया की अलग रणनीति विकसित कर रहा है? अभी जो हर देश के साथ एक द्विपक्षीय संबंध अलग अलग है, उससे परे है जो सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की बात है, क्या ऐसा कुछ भविष्य दिखाई देता है आपको?
1: जी बिल्कुल, भारत की एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही दीर्घकालिक रणनीति है मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर काम करने की, जिसको हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन कनेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ साथ भारत ने यह भी कोशिश की है कि हम सिर्फ कनेक्टिविटी, कॉमर्स, काउंसुलर रिलेशंस और कम्युनिटी, ये जो चार सीज हैं, इनसे बाहर निकलकर हम उस क्षेत्र को ही इस ढंग से रखें अपने विदेश नीति के दीर्घकालिक जो हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो सेंट्रल एशिया को कैसे इस डायरेक्शन में लाया जाए कि दोनों ही पक्षों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर संबंध बने और दोनों ही पार्टीज इसमें प्रॉस्परस और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा म्यूचुअली एडवांटेजियस सिचुएशन में पहुंचे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया के माध्यम से भारत ने ये एक रणनीति बनाई तो बहुत साल पहले थी, और 90 के दशक से ही भारत ने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जो मेजर फंडामेंटल किस्म के जो हमारे पास समस्याएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हैं, उनको दूर करने में थोड़ी सी हमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण समस्या है कनेक्टिविटी, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो ईरान की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, रूस के साथ मिलकर भी हमने कोशिश की कि सेंट्रल एशिया के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत की एक नई रणनीति बने। बहरहाल, भारत की कोशिश ये है कि मध्य एशिया के देशों को हम आइडियोलॉजी के तौर पर, एक विचारधारा के संदर्भ में, हम उसे ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र अपनी उज्बेकिस्तान की यात्रा में पहले ही कर दिया है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि हम रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स या IT कोऑपरेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो लिंकेजेस हैं, इंटरनेट, टेलीफोनी और तमाम चीजों के जो सॉफ्ट कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी चीज है कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मध्य एशिया के देश एक विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में जिम्मेदार दोस्त की
0: जी
1: भूमिका निभा सकते हैं, और उसमें क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल
1: मध्य एशिया के तमाम देश हैं जो क्रिटिकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काफी बड़ा हिस्सा रखते हैं, उनके पास बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात सोर्सेज हैं
0: जी
1: पोटेंशियली, जिसमें बहुत सारे सोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। चीन ने इसमें तमाम कोशिश की है। तो भारत की अब ये रणनीति है, जो सवाल आपने पूछा उसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं, तो भारत की रणनीति ये है कि विकसित भारत 2047 के संदर्भ में मध्य एशिया के देशों को कैसे अपनी नीति से ऐसे अलाइन किया जाए कि उनका भी भला हो और भारत का विकास हो और 2047 में हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।
0: जी मतलब भारत के व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश, इन सब के लिए इस क्षेत्र में भी प्रबल संभावनाएं हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। मैं ये मानता हूं कि 90 के दशक से ही मध्य एशिया ऐसे तमाम जंजालों में उलझा रहा, जियोपॉलिटिकल, जिसमें अफगानिस्तान की भी समस्या है, मध्य एशिया के तमाम देशों की अंदरूनी बहुत सी समस्याएं रही। तो ये सही समय भारत और मध्य एशिया के बीच में संबंधों का जो सही, उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने का नहीं आया। बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे कि मध्य एशिया की वाकई में कितनी बड़ी भूमिका इस भू राजनीतिक व्यवस्था जो एशिया की है उसमें है, और SCO जैसे संगठन के माध्यम से कैसे उनकी एक तरह से केंद्रीय भूमिका होती है, जब वो महाशक्तियों के साथ, भारत, चीन और रूस के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और तीसरा, भारत का जब विकास हो रहा है इतनी तेज रफ्तार से और भारत एक विकसित महाशक्ति बनने की राह पर है 2047 तक, तो हम आगे आने वाले 10 सालों में देखेंगे कि मध्य एशिया कैसे इसमें एक बड़ा योगदान देता है। और जो हमारी 1000 साल का जो एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है दोनों ही पक्षों के बीच में संबंधों का, मुझे लगता है इस पूरी यात्रा के दौरान, 10 और आगे आने वाले समय की यात्रा के दौरान, इन तमाम बातों को फिर से हम रेखांकित कर पाएंगे और अपने इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे।
0: जी राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य यात्रा, SCO की भूमिका और भारत मध्य एशिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अपने सार्थक विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: इसके साथ आज के सुर्खियों में कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम

0: का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सांस झले का। सांस झले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

0: जी हाँ, जाने कहाँ होके बाहर आई, लेकिन बाहर आ चुकी है। और ये बाहर कहीं नहीं थी, बाहर हमेशा आपके भीतर होती है, आपके अंदर होती है। यानी कि जो सुख शांति की हम तलाश कर रहे होते हैं ना इधर उधर, सच कहें तो उसका जरिया हम ही होते हैं। बात ज़रा गहरी है, इसलिए एक शब्द में आपको समझना होगा। फिलहाल एक और बेहतरीन सा नगमा आप सभी के लिए।
1: ला ला ला।

भाई बद्दूर, भाई बद्दूर, अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बद्दूर, भाई बद्दूर।

जी हाँ, कभी चलना नहीं रोकना चाहिए। चलने से भले ही ऐसा लगे कि अब थक गए हैं, हम पैर अब आराम करना चाहते हैं, थोड़ा हम सस्ताना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, लेकिन पता है यदि हमने चलना छोड़ दिया और कोशिशें करनी छोड़ दी तो ज़िंदगी ठहर सी जाती है, और ठहरा कभी ज़िंदगी नहीं होती। देखिए, FM गोल्ड हमेशा आपको बेहतरीन नगमों के साथ एक नए पंख देने की कोशिश करता है। इन नगमों के साथ आपको अच्छा लगता होगा सुन के, और आपका मन थरकता ज़रूर होगा, एक खुशी ज़रूर होती है प्यारे से संगीत के साथ, जिसका वादा FM गोल्ड हमेशा आपसे करता है।

जी हाँ, अभी आपने जो गीत सुना फिल्म 9/11 से था, और आंखों की हलचल पहचानना हर किसी की मुश्किल बात नहीं होती, बस वही पहचान पाता है जो आपके बहुत करीब होता है। फिलहाल एक और गीत फिल्म पिया का घर से, आइए सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ, कैसा लगा ये गीत आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगता है ना कि जब बेहतरीन म्यूज़िक होता है और ये जब एकदम रिदम बन जाता है तो लगता है कि बस अब कहीं कोई ब्रेक ना हो और बस ऐसे ही हम प्यारे प्यारे नगमे और इन फिल्मों के बारे में जानकारी लेते रहें। लेकिन रुकना ज़रूरी है, विराम देना ज़रूरी है बहुत बार, क्योंकि कई बार जब हम रुकते हैं ना तो शायद तेज से दौड़ने के लिए और कुछ और बेहतरीन तैयारी के साथ। फिलहाल आप थोड़ी देर बाद सुनेंगे समाचार। मैं फिलहाल के लिए अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
4: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम ने निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। उसके 18 वर्ष बाद एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। आज करीब 4000 छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की मसौदा सूची आज प्रकाशित की गई। SIR इस वर्ष 20 जून को शुरू हुआ और घर घर जाकर गिनती 30 जून को शुरू की गई। मतदाता सूची में मतदाता के नाम, EPIC नंबर, आयु, पता और रिश्तेदार के नाम आदि का विवरण है। एक रिपोर्ट।
6: मसौदा मतदाता सूची के अनुसार 1,45,10,299 मतदाताओं में से कुल 97,53,577 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। इनमें मुख्यतः पुरुष 49,88,993, महिलाएं 47,64,137 और 18 से 19 वर्ष के बीच 1,03,870 मतदाता हैं। नागरिक CO

0: mydelhi.gov.in से मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दावे और आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती है। यदि कोई निर्वाचन निर्दिष्ट अवधि 30 जून से 17 अगस्त 2026 के भीतर अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करने में असमर्थ रहा हो तो वह दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान शामिल किए जाने के लिए निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र 6 दाखिल कर सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाली मौजूदा पेपर बेस्ड पिंक टिकट व्यवस्था को अगले महीने की 17 तारीख तक बढ़ा दिया है। ये फैसला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आधारित सिस्टम में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने और आने वाले त्योहारों के दौरान महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस बढ़ी हुई व्यवस्था से महिलाएं ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी मुफ्त बस यात्रा का फायदा उठा सकेंगी और इसके बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 19 लाख महिलाओं ने पहले ही इस कार्ड के लिए अप्लाई या रजिस्टर कर लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत दो निजी कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईओवरों के नीचे और उनके आसपास मौजूद उपेक्षित या कम उपयोग वाले स्थानों को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और नागरिकों के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: इस साझेदारी के अंतर्गत स्वच्छता, हरियाली, सौंदर्यकरण, सुरक्षा, पैदल आवागमन को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पहली कंपनी के पहल के अंतर्गत दीपाली चौक से मंगोलपुरी मार्केट तक 2.5 किलोमीटर के स्थानों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित सामुदायिक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं दूसरी कंपनी द्वारा मथुरा रोड और MP मार्ग के आसपास के करीब 2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट के विकास और दीर्घकालिक रखरखाव की पहल की जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ पहलों से दिल्ली के प्रमुख कॉरिडोर की सुंदरता और पहचान बेहतर होगी, हरियाली बढ़ेगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे। वहीं दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार अकेले सारा काम नहीं कर सकती है और अगर सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी हो तो काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
4: सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, सरकार के साथ में पब्लिक पार्टनरशिप भी हो तो और काम अच्छे से हो सकता है। बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो दिल्ली को सुंदर बनाना चाहती हैं और ये हमारा पहला MOU नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे PSUs के साथ में MOU किया और हर जगह पे आप ये देख रहे होंगे, दिल्ली की जनता को फर्क दिखाई दे रहा होगा कि रोड के साइड में नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है और अच्छा उसको सुंदर बनाया जा रहा है।
3: श्री सिंह ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और निजी क्षेत्र की यह साझेदारी आगे भी इस प्रकार से मजबूत होती रहेगी, साथ ही मिलकर दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के संकल्प को नई गति मिलेगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में निगम के स्वच्छता सुपरवाइजर कर्मचारियों के साथ ओपन हाउस बैठक की। इस बैठक में स्वच्छता कर्मचारियों ने आयुक्त के समक्ष शहर को स्वच्छ बनाए रखने से संबंधित अपनी समस्याएं, सुझाव और विचार रखे। इस अवसर पर श्री खिरवार ने कहा कि वर्तमान मानसून का सीजन MCD के लिए बेहतर रहा और पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ये निगम के लिए सबसे अच्छे मॉनसून सीजन में से एक रहा है। उन्होंने मॉनसून के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने में योगदान के लिए स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। राजधानी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने आज दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने विजय कैंप में निर्माणाधीन फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को फिक्स्ड कॉम्पैक्टर को जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ई वेस्ट के बेहतर प्रबंध को लेकर सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को मॉडर्न सुविधाओं से लैस स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली में ई वेस्ट के सही कलेक्शन, सेमिग्रेशन, डिसमेंटलिंग और रिसाइक्लिंग के लिए साइंटिफिक फैसिलिटी स्थापित करने के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज टोडापुर के यातायात पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और जाम वाले स्थानों पर समय रहते जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के राजा विहार नया रास्ता में नई सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस नई सीवर लाइन के निर्माण से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय निवासियों को सीवर संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। जाफराबाद स्थित एक निजी डे केयर और प्ले स्कूल में 3 वर्षीय बच्चे के साथ कथित दुष्कर्म मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित स्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित बच्चे के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी तो दिल्ली सरकार उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बवाना क्षेत्र में 3 वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ दुष्कर्म पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इस मामले में स्कूल बस चालक के कथित रूप से शामिल होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अदालत ने ये निर्देश एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर चिंता के बीच दिया है। वर्ष 2013 में भी एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। साउथ दिल्ली के लिए अंकित डबास 34 गेंद पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अंकित डबास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कला संस्कृति और भाषा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में पुस्तकालय की सेवाओं को अधिक जन उपयोगी बनाने और नए विचारों को धरातल पर उतारने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDAV कॉलेज और लॉ सेंटर के छात्रों ने दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मुलाकात कर उनसे संवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खुली बातचीत, विचारपूर्ण सवालों और नए विचारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज के युवा लोकतंत्र को लेकर जिज्ञासु हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा सूची जारी की।

0: दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के आसपास मौजूद उपेक्षित स्थानों को उपयोगी बनाने के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादरो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता को नई आशा और उत्साह से भर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सभी भारतीय श्री पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
5: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है मधुरिमा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधुरिमा में हम किसी न किसी राग के बारे में जिक्र करते हैं और उस राग पर आधारित गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो आज जिस राग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में वो राग है राग भीम पलासी, और इस राग के साथ मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, राग भीमबलासी की अगर हम थाट की बात करते हैं तो यह इसका जो थाट है वो काफ़ी है। इसकी जाति ओड़म संपूर्ण है, वादी स्वर माँ और संवादी स्वर सा है। गाने का जो समय है दिन का तीसरा पहर है। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित एक और बेहतरीन संगीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, राग भीमपलासी का जिक्र है मधुरिमा में आज। तो अगर हम राग भीमपलासी के आरोह की बात करें तो नी सा ग म प नी सा और अवरोह सा नी द प म ग रे सा पकड़ नी सा म म

जी हाँ, और अब इस प्रोग्राम को समेटने की बारी आ चुकी है, लेकिन जाते जाते एक और जानकारी हम आपको इस राग के बारे में देना चाहते हैं। यह राग काफ़ी थाट से निकलता है और इसके आरों में रे और ध नहीं लगता, अवरों में सभी स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति ओड़व संपूर्ण मानी जाती है और इसमें नी जो स्वर है वो कोमल लगता है। और अब इस प्रोग्राम का अंतिम गीत सुनेंगे। मैं फिलहाल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की, जहां पर भारत महिला क्रिकेट टीम ने थाईलैंड पर 94 रन से दमदार जीत दर्ज करते हुए महिला T20 एशिया कप में अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। वहीं हॉकी के मैदान पर जर्मनी बन गया है नया विश्व विजेता। फाइनल में स्पेन पर 1-0 की शानदार जीत के साथ जर्मनी ने अपना चौथा विश्व कप खिताब जीत लिया है। फुटबॉल के मैदान से भारतीय युवा टीम एक खुशखबरी लेकर के आई, जहां AFC U20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में आज अपने पहले मुकाबले में भारत ने सीरिया पर दर्ज की है 1-0 की एक जीत। और विश्व नोमैड गेम्स आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में मौजूद और एक भव्य उद्घाटन समारोह इस समय किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रहा है। टेनिस के कोर्ट पर डाली जाएगी नजर, जहां US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच हो गए हैं बड़े उलटफेर का शिकार। पहले ही दौर में ये दिग्गज खिलाड़ी हारकर हो गया है बाहर। और बैडमिंटन की दुनिया की बात की जाएगी तो चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से होगा शुरू। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर होंगी सबकी नजरें। तो आज के खेल की दुनिया की शुरुआत की जाएगी क्रिकेट की मैदान के साथ, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने थाईलैंड पर 94 रन से दमदार जीत दर्ज करते हुए महिला T20 एशिया कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। दुबई में खेले गए मुकाबले में भारत ने दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत थाईलैंड पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
1: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए। भारत को सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टीम को मजबूत शुरुआत दी और 36 गेंद में 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से सर्वाधिक 64 रन बनाए। शेफाली को स्मृति मंधाना ने बखूबी दिया। स्मृति 10 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद आई प्रतिका रावल ने 22 रन का योगदान दिया। यहां से टीम के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और एक अच्छी शुरुआत के बाद भी टीम का स्कोर बोर्ड 159 रन पर रुक गया। थाईलैंड की तरफ से सुलिपोर्न लाउमी ने 3 और सुनीता चातुरोंग रातन ने 2 विकेट निकाले। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई थाईलैंड की टीम विमेंस इन ब्लू के गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आई। थाईलैंड की पूरी टीम 23 गेंद शेष रहते 65 रन के स्कोर पर सिमट गई। नन्ना पद कोंचारो एनकाई के 41 रन को छोड़कर टीम का कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 7 गेंदों में बगैर कोई रन दिए 3 विकेट निकाले। इसी के साथ दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 171 विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति के अलावा नंदनी ने 3, श्री चरणी ने 2 और क्रांति गौड़ ने 1 विकेट अपने नाम किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को हांगकांग से खेलेगी, जबकि अंतिम ग्रुप मैच में शनिवार को भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जैसी उम्मीदें थी वैसा मिला है भारतीय टीम को आगाज़, और अपने अभियान का शानदार आगाज़ करने के बाद टीम के खिलाड़ी बेहद खुश नज़र आए। आइए सुनते हैं अपने बल्ले से कमाल करने वाली शेफाली वर्मा ने क्या कहा।
2: आई थिंक टीम को अपने साइड से बेस्ट देके ओबियसली बहुत अच्छा लगता है एंड उसके साथ साथ टीम की भी नो और ज्यादा खुशी का माहौल हो जाता है। एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द गेम, वी ऑल नो द कंडीशंस, वी ऑल नो व्हाट वी हैव टू डू एंड आई एम सो हैप्पी सभी प्लेयर्स ने उन सब ने किया एफर्ट किया एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट द विन।
0: शेफाली की साथी खिलाड़ी नंदिनी शर्मा ने भी टीम की प्रशंसा की है। टीम की परफॉर्मेंस पे नंदिनी ने क्या कहा ये भी सुनते हैं।
3: ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलना और हर मैच पर परफॉर्म करना तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है और वो करते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा था मेरा फर्स्ट एशिया कप, हम लोग जीते हैं तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। बॉलिंग वाइज थोड़ा सा मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और डिफिकल्ट भी था क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। विकेट अच्छा था पर बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए भी अच्छा था, बहुत अच्छा था।

0: बिल्कुल सही की, एक शानदार विकेट था जिसका प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया और थाईलैंड की टीम के 11 में से 10 खिलाड़ी 10 खिलाड़ी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके। और वो स्पेल जो वर्षों वर्षों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद याद किया जाएगा, जो दीप्ति ने फेंका कोई रन ना देते हुए, वो शानदार 3 विकेट जिसने भारतीय टीम की जीत पक्की की। और क्रिकेट के मैदान से एक और खबर, जहां साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हराया। टीम के लिए जीत के हीरो बने अंकित डबास, जिन्होंने नाबाद 62 रन की पारी खेली और साथ ही एक विकेट हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: DPL के फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 182 रन बनाए। टीम के लिए समर्थ सिंह ने 27 गेंद में सर्वाधिक 51 रन बनाए, जबकि कप्तान जोंटी सिद्धू ने 19 गेंद पर 36 और युगल सैनी ने 29 गेंद पर 32 रन का अहम योगदान दिया। साउथ दिल्ली के लिए दिवांश रावत ने 3 और विजन पांचाल ने 2 विकेट लिए। वहीं अंकित दबास, प्रांशु विजयरन और अंशुमन हुडा ने 1-1 विकेट हासिल किया। 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। प्रणव पंत के 13 के स्कोर पर आउट होने के बाद अंकित डबास ने सलामी बल्लेबाज अनमोल शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 89 रन जुटाकर टीम को जीत की राह पर ला दिया। अनमोल ने 41 गेंद पर 62 रन बनाए, जबकि अंकित 34 गेंद पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। सेंट्रल दिल्ली की ओर से अंकित यादव, केशव डबास और गवनीश खुराना ने 1-1 विकेट निकाला। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले अंकित डबास को फाइनल मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अंकित के बल्ले से निकली दिल्ली की ये जीत और एक और टूर्नामेंट जो लगातार खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देने का काम कर रहा है और जिससे निकलते हुए खिलाड़ी अब धीरे धीरे एक टीयर और बड़ी लीग्स में निकलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं और भारत को एक बेहतर और मजबूत पूल क्रिकेट के लिए दिन ब दिन तैयार होता हुआ। और अब बात की जाए हॉकी के मैदान की, जहां जर्मनी पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का विजेता बन गया है। बेल्जियम के वावरे में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हरा करके अपना 4th विश्व कप खिताब जीता। प्रस्तुत है जर्मनी की शानदार जीत पर ये रिपोर्ट।
2: हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मैच के शुरुआती 2 क्वार्टर गोल रहित रहे, इसके बाद तीसरे क्वार्टर में एकमात्र गोल आया। मुकाबले के हीरो स्टुथॉफ मिशेल ने 44वें मिनट में मैच जिताऊ गोल किया। 1998 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल में खेल रहे स्पेन ने लंबे समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखा और उसे कई मौके भी मिले, लेकिन वो जर्मन डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। 4 बार की चैंपियन जर्मनी ने वर्ष 2002 में पहला खिताब जीता था। इसके बाद 2006 और 2023 में जर्मनी ने खिताब अपने नाम किया। कल ही तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को 2-1 से मात दी। महिलाओं के वर्ग में शनिवार को अर्जेंटीना ने 1-1 से ड्रॉ के बाद रोमांचक शूटआउट में नीदरलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो चैंपियन की तरह खेली जर्मनी की टीम, हालांकि उतने गोल देखने को नहीं मिले, लेकिन कितना मजबूत डिफेंस एक फाइनल मुकाबले में हो सकता है, इसकी झलक कल वावरे में देखने को मिली बेल्जियम के, जहां लगातार दोनों टीमों ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन हर टीम के मजबूत डिफेंस के आगे वो भेदने में नाकाम रहे। और फिर वो गोल जिसने जर्मनी को 4th बार बना दिया है चैंपियन, और सफलतापूर्वक जर्मनी ने ये खिताब अपना बरकरार रखा। इस शानदार जीत के बाद जर्मन टीम के कप्तान टॉम ग्रैम्बुश ने कहा कि ये एक बेहद कड़ा मुकाबला था और वे अपनी टीम के प्रदर्शन से गौरवान्वित हैं।

0: एक कड़ा मुकाबला जिसके कड़े परिणाम, और वो जोश और जज्बा नज़र भी आया टीम के कप्तान की बातों में, उनके पूरे हौसले में, और जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया। और अब हॉकी के बाद रुख करते हैं फुटबॉल का, जहां AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगागयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल दागा। भारत को मेज़बान उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। सभी 8 ग्रुप के विजेता और इन ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली 7 सर्वश्रेष्ठ टीमों को क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा 2027 के अंडर 20 एशियाई कप के लिए। भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेज़बान उज्बेकिस्तान से खेलेगी। और अब बात की जाए वर्ल्ड नोबैड गेम्स की, जो आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इस पारंपरिक आयोजन के भव्य उद्घाटन समारोह में उपस्थित हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाले इन खेलों में भारत की तरफ से एक बड़ा दल हिस्सा ले रहा है, और आज से शुरू हो रहा यह आयोजन 6 सितंबर तक चलेगा। और मध्य एशिया के बीच में बेहद प्रचलित ये गेम घुमांतू या खानाबदोश ओलंपिक के नाम से भी प्रचलित हैं, और भारतीय टीम भी यहाँ पे हिस्सा ले रही है। और इस समय आज जब भारतीय दल इस पूरे फोरम पे पहुँचा, इस मैदान पे पहुँचा, तो जोश और जज्बा देखने लायक था। तो तीरंदाजी, कोकबूरू, कुछ ऐसे गेम जो शायद पारंपरिक तौर से बहुत लोग जिनसे प्रचलित ना हो, घोड़े पे बैठ के खेले जाने वाला एक पोलो का खेल, जहाँ पे पारंपरिक कुश्ती देखने को मिलती है कुरूश और गोरोश के फॉर्मेट की, जिनसे काफ़ी हद तक लोग परिचित नहीं होंगे। और कुछ बोर्ड पे लगाए जाने वाले दावपेच, जहाँ पर कुछ दिमागी खेल देखने को मिलते हैं। इस तरह के आयोजन इन खेलों में किए जाते हैं, और उम्मीद होगी कि भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के साथ यहाँ पर भी भारत का झंडा आसमान में ऊंचा करते नजर आएंगे। और अब रुक करते हैं टेनिस का, जहाँ साल का 4th ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस टूर्नामेंट अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। आज एक बड़े उलटफेर में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के पहले ही दौर से बाहर हो गए। अर्जेंटीना के मारियानो नोवेन ने उन्हें 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से हराया। ये पहला मौका है 19 पहले दौर के मुकाबले में जहां जोकोविच को हार के साथ बाहर का मुंह देखना पड़ा, जबकि महिला सिंगल्स में वीनस विलियम्स ने अपने 26वें US ओपन के पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई। 46 वर्षीय अमरीकी खिलाड़ी को साथ ही अमरीकी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी सोफियाना कैनिन से सीधे सेटों में 6-2, 7-6 से हार का सामना करना पड़ा। और अब बात बैडमिंटन की, जहां चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू होने जा रहा है। 6 सितंबर तक चलने वाली इस BWF सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
1: लक्ष्य सेन पहले दौर में नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले फ्रांस के एलेक्स लेनियर के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करेंगे। इनके अलावा किदांबी श्रीकांत भी भारतीय पुरुष सिंगल्स टीम का हिस्सा है। विश्व नंबर 5 और सिंगापुर बैडमिंटन ओपन की चैंपियन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी पर भी नजरें होंगी। वहीं MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भी इस वर्ग में चुनौती रखेंगे। महिलाओं के सिंगल्स की बात की जाए तो यहां भारत की युवा टीम कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। ताइपे ओपन की विजेता तन्वी शर्मा, थाईलैंड ओपन की विजेता देविका सिहाग और युवा उन्नति हुड्डा, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु की गैर मौजूदगी में खिताब के लिए दांव लगाएंगी। तीनों खिलाड़ी आगामी एची नागोया एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला टीम का हिस्सा है। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। एशियाई खेलों के लिए भारत की 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम के कई सदस्यों के लिए अभ्यास सत्र के रूप में भी काम करेगा। 2005 में टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से किसी भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब नहीं जीता है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी बड़ी जीत दर्ज करते हुए एशियाई खेलों की तरफ रुख करना चाहेंगे। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो इस वर्ष युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कई नए कीर्तिमान अपने खाते में जोड़े हैं। क्या कि वो देविका सिहाग हो जिन्होंने थाईलैंड ओपन जीता, या फिर ताइपे ओपन जीतने वाली तन्वी शर्मा। एक बड़ा टूर्नामेंट, BWF 750 लेवल का ये टूर्नामेंट होगा। और सबसे बड़ी और ख़ास बात कि एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का इससे बेहतरीन मौका शायद इन खिलाड़ियों के लिए नहीं होगा। हालांकि कुछ और स्टार खिलाड़ी यहां पर आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जिसमें दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी जैसे मेंस सिंगल्स खिलाड़ी खेलते हुए नहीं उतरेंगे। तो कहा जा सकता है कि कुछ खिलाड़ियों के लिए अभ्यास और कुछ खिलाड़ियों के लिए आराम का ये मंच। और श्रोताओं, अब धीरे धीरे घड़ी की सुइयां हमें अनुमति नहीं दे रही हैं आगे बढ़ने का, और समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम

0: इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल की दुनिया की तमाम खबरों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से

0: मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित

0: बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई

0: चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331041 और 23717117 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों, हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ,
2: स्वागत। सवाल यही था जो हम लोग को जब दिव्यांग है हम लोग, हेलो।
0: जी जी,
2: हम लोग जब दिव्यांग है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को OTP भी बताना चाहिए? अगर OTP बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या ये सब हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि OTP नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे OTP की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। OTP केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको OTP खुद आपको डालना है और उसी से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है ATM पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, OTP तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना OTP जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में, कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं, QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास, उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा, अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
0: जी।
3: ये जो चीज हुआ है, लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं, समझते हैं कि बटुए में पैसे रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का, जो पुराने समय का, जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी,
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज के रुपये का शायद, रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है
0: जी। शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए, देखिए, जनधन योजना, मुद्रा लोन, PM स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को, इन योजनाओं ने प्रभावित किया है?
1: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इससे, वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई LPG की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लेंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लेंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट पीएमजेडीवाई के वो भी खुल रहे हैं।
0: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहाँ ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60-66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
0: जी जी,
1: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है, और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
4: जी नमस्कार, जितेंद्र विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ, और मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें कुछ चार्जेस से कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर जितना, जैसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं इसका, इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इस पर थोड़ा सा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे। जी
1: हाँ, ये जो चल रहा है अब ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए हैं, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है, अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे।
0: जी, तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है आपका प्रश्न? जी जी कहिए सवाल।

0: ये मैंने फाइनेंस में भी वहां से सेक्रेटरी को चिट्ठी दिया, उसका कोई जवाब नहीं है।
1: आपका
0: आम पब्लिक के लिए
1: जी, तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं, वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
2: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नहीं सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफाल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
1: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे। जी
2: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं, तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
1: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में, क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
4: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस।
1: जी
4: ये एआई के मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को, यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
1: महत्वपूर्ण जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से है लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
5: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
1: जी
5: सर, मैंने पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक से प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि तो वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
1: जी जरूर जरूर
2: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहाँ से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप RBI के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहाँ से अपना शिकायत का निवारण करा सकते हैं।
1: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा, और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई हैं।
4: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
1: जी,
4: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
1: जी।
4: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना डिटेल देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज
1: जी जी जी
4: संभव होगा।
1: महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AII के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं।

0: से प्रकाश राउत, कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
1: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
1: क्रेडिट कार्ड अच्छा वो होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा, उसके ज्यादा दंड होते हैं, ज्यादा चार्जेस लगते हैं, उस पर जीएसटी बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
2: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
0: जी। एक और सवाल हमारे पास आया है हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल है।
2: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या ओटीपी किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
0: जी। देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में, वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीज़ें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
3: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में कुमार साहब ने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उस के जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
0: जी, जो
3: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
0: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की, आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें जरूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग

0: संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांत के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जपारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the

0: 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कीन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अपनी किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इन द्विपक्षीय बैठकों में आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते संपर्कों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्ड डी वेवर बुधवार से 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन स्वाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक बचाव उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है, जबकि 4247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री बलिंद्र शाह ने बाढ़ को अभूतपूर्व और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जीतने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 66वीं मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित और लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आरएस रघु विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense. Says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Also meets Kyrgyz Republic and Armenian leaders. India's GDP jumps to 7.8% in first quarter of current fiscal, despite global headwinds. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by

दे दिया है वो दिल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल ने, क्योंकि आप भी तो एफएम गोल्ड को अपने दिल में बसा कर रखते हैं, है ना। तो ये जो गीत आपने सुना सलमान खान और ट्विंकल खन्ना पर फिल्माया गया है, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, और कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़, और इस गीत को संगीत से सजाया जतिन ललित ने और कलमबद्ध किया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, प्यार में सबसे खूबसूरत बात ही यही होती है कि जब कोई हमारे दिल के करीब आ जाता है तो हमारी दुनिया थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है, उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी हंसी अच्छी लगती है, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है जब उसको याद करते हैं, है ना। और फिर एक दिन दिल पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और शायद यही वो पल होता है जब कोई धीरे से हमारे दिल से ये पूछता है,

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ रितिका और ये है कार्यक्रम आपका मनपसंद हर श्रृंगार।

पहली पहली बार की तो बात भी अलग होती है, है ना। ये गीत आपने सुना फिल्म संघर्ष से। जी हाँ, इस गीत को आवाज दी श्रद्धा पंडित और सोनू निगम ने, जतिन ललित का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। पहली पहली बार चीजें अलग होती हैं, है ना। दिल में हल्की सी घबराहट, आंखों में ढेर सारे सपने, और सुबह पर आने से पहले ही दिल में तैयार हो जाती हैं बहुत सारी बातें। लेकिन प्यार में हर बात जोर से कहे वो जरूरी तो नहीं ना। कभी कभी दिल की बात बस धीरे से कह देने का मन होता है, बिल्कुल किसी मीठे गीत की तरह।

जुबैदा फिल्म का आपने ये गीत सुना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, एआर रहमान का संगीत और जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। तो दोस्तों, अगले गीत के साथ आप सभी को छोड़े जाती हूँ हर श्रृंगार में। आज बस इतना ही, 11 बजे समय रहेगा समाचार का और 11:10 पर आप सुनेंगे रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ मार्केट मंत्रा, और उसके बाद आपका मनपसंद कार्यक्रम, जी हाँ मार्केट मंत्रा, ओ मार्केट मंत्रा नहीं, जी हाँ गीत मेरे मनमीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।

0: देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
0: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
0: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गयी। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
0: यूक्रेन के विषय पर

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, today, friends, being a Monday, we shall be taking your calls on your market-related queries. But please do remember that we do not address stock or company-specific queries. And the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, please add a prefix of 011 as a code to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331

0: 1-800-410-481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड, हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सुबोध जी।
0: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा नेचा टैंग।
2: हाँ जी, थैंक यू सुबोध। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे। वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोज बाय 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज।
0: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा, निफ्टी 24,100 से नीचे पहुंचा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल।

0: Well, before we move ahead with more financial news, friends, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: जी लालिबा,
0: अब
1: खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चलते हैं एक कॉलर के पास जो जुड़ गए हैं.
0: जी जी,
1: दिल्ली से सतीश हमारे साथ है. स्वागत है सतीश आपका, सवाल पूछे.
0: जी सतीश, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज.
2: यस, माय क्वेश्चन इज मैम कि गोल्ड और सिल्वर का अभी आउटलुक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में?
3: सतीश जी, गोल्ड में अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा करेक्शन आया था. उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी लोगों के लिए, लेकिन अब चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें कि क्राइसिस फिर जो है थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है और उसको लेके कंसर्न्स हैं, हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं प्रेशियस मेटल्स के अभी और बढ़ें. तो आप जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें. अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा जो है प्रेशियस मेटल्स का रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है दोनों प्रेशियस मेटल्स की वो काफी अच्छी है.
0: एंड गोल्ड एंड सिल्वर लव जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी.
3: एब्सोल्युटली.
1: चलिए राइट जी, खबरों का सिलसिला शुरू करें. हम पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या रहा. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957 पर बंद हुआ. निफ्टी 95 अंक नीचे 24,080 पर आ गया. एनएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा. मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 0.7% नीचे आ गया. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कारोबार की शुरुआत से ही सूचकांकों में कमजोरी रही. पूरे सत्र में अधिकांश सेक्टर्स पर बिकवाली का दबाव बना रहा.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. The Sensex declined 307 points to close at 76,957. The Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index gained 0.2%, while the small-cap 100 index dipped 0.7%. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investor sentiment. Both the indices witnessed selling pressure across most sectors throughout the session.
1: और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर आज कैसे परफॉर्म किया. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे. सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें. अडानी पोर्ट्स में 4.1%, ITC में लगभग 3.7% और भारती एयरटेल में लगभग 2.7%

0: 8% की गिरावट देखी गई। इसके उलट सन फार्मा में 1.9%, आईसीआईसीआई बैंक में 1.7% और एक्सिस बैंक में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई।
1: Let's take a look at the sectoral indices now. And on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, utilities decreased 2.6%, metal lost 2.4%, services dipped 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt rose over 1.2%. Mid-small private banks gained 1.2%, and BankEx added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,572 companies declined, 1,858 advanced, and 250 remained unchanged.
0: अगले कॉलर के पास जाने से पहले बता दे रुपए का हाल।
1: हाँ जी, जी।
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे बढ़कर 95.17 रुपए पर बंद हुआ।
1: And now let's connect to Bihar where Tinku Rai is on the line. जी टिंकू जी, सवाल पूछिए अपना। जी
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: नमस्ते टिंकू जी,
2: मेरा मैम यही दो सवाल है। एक जो PPS अकाउंट जो खुलता है वरिष्ठ नागरिक के लिए, वो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है, ब्याज इंटरेस्ट या अंतर है, और एक ये है जो ATM कार्ड हम किसी बैंक से लेते हैं, क्या इसके साथ इंश्योरेंस मिलता है या ऐसी अफवाह है? कोई बताता है 2 लाख का इंश्योरेंस इसका फ्री रहता है इस पर, यही मेरा दो सवाल का जवाब चाहिए।
3: टिंकू जी, आपने जो सवाल किया है, आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। PPF में थोड़ी सी बंदिश रहती है, वो लॉक्ड इन रहता है, थोड़े बेटर रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं वहाँ पर, फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं जो सरकार नोटिफाई करती है, सरकार की तरफ से वो ब्याज दरें तय होती हैं,
1: टैक्स नहीं लगता उस पे।
3: और टैक्स भी नहीं लगता है,
1: दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
3: दूसरा चीज है कि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स में रेट में फ्लक्चुएशन जिस तरह से होता है वो उतार चढ़ाव का गुंजाइश रहता है।
1: All right, and now he asked another question.
3: Insurance की बात आपने कही थी, insurance के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ seniors वरिष्ठ नागरिकों के लिए insurance का है।
0: ATM कार्ड के साथ इन्होंने पूछा है कि ATM कार्ड के साथ इंश्योरेंस है या नहीं है।
3: ATM कार्ड के साथ
0: एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस जो बैंक्स ऑफर करते हैं आजकल हर अकाउंट के साथ,
3: ज्यादातर बैंक्स करने लगे हैं वो, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो ATM कार्ड के साथ आपको सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस दिया जा रहा है।
0: जी चलिए अगली खबर, आज की बड़ी खबर है GDP। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल GDP में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के GDP के तिमाही अनुमान जारी किए। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को तृतीय क्षेत्र ने प्रमुख रूप से मजबूती प्रदान की है। इस क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी गई। इसमें मुख्य योगदान वित्त, रियल एस्टेट, IT और प्रोफेशनल सेवाओं का रहा, जिनमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। द्वितीय क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें मुख्य योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा, जिनमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई।
1: So

0: How would you? All right, I think we can go ahead and see the Prime Minister's reaction. Well, the Prime Minister has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions, and global uncertainties. And before we go any further, we have Nitin online calling us from Delhi. Yes, Nitin ji, yeah, sawal puchhiyega apna ji.
1: Dhanyawad ji.
0: Ji.
1: Madam, mera ye puchna hai ki main senior citizen ho aur mere abhi ek mahine baad meri maturity ho jayegi, FD meri mature ho jayegi. To lagbhag अच्छी खासी है, 30-35 लाख की है. तो इसमें ये मुझे बताइए कि हमें मार्केट में पैसा लगाने की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या और से बेस्ट एफडी से क्या मिल सकता है, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, कहाँ हम इस चीज के लिए सोचे हैं? क्योंकि तो बच्चों के लिए, अगर बच्चे करते हैं तो इसके लिए तो वो कर सकते हैं.
2: तो आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं?
1: लगभग जैसे हम हर साल एक एक साल की एफडी होती है, 2 साल की भी होती है. तो अभी 1 साल की मेरी मैच्योर हो जाएगी और 2 साल की मेरी अगले साल मैच्योर होगी कुछ एफडियां. तो हम उसमें जाते हैं और सीधा हो जाता है, इसमें कोई सिद्धती नहीं हमें महसूस होती. शेयर मार्केट के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव और क्या कैसा उसका तरीका
3: जी. एकदम आपने सही कहा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए और इसीलिए मार्केट मंत्रा में आपको हम जानकारी देते हैं. आपकी एफडी जो है, एक तो आप कम अवधि के लिए उसको बैंक के साथ रखते हैं नितिन जी, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे लंबी अवधि तक रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसमें ब्याज भी बेहतर मिलेगा. अगर आप बाज़ार की तरफ आप उसमें कुछ अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, तो जो थोड़े सेक्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, जहां पर आपको लगता है, और जो कंपनीज जो जहां पे बहुत मजबूत हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, आप उस हिसाब से उनमें आप निवेश कर सकते हैं. लेकिन आप वो देखिएगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको बेहतर उसमें रिटर्न्स मिल पाएंगे.
0: Yeah, considering the fact he's a senior citizen, so risk appetite should be low.
3: Low, and, exactly. I mean, short-term investment is good. You have money in hand.
2: Yes. और उन्हें FD पर रेट भी ज़्यादा मिलता है.
3: Exactly.
2: जी. हाँ हाँ. जी. दीपशिखा, आज की अब बड़ी खबर पे लौटते हैं हम. GDP के आंकड़े हैं जो बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं.
3: बहुत ही बेहतर आंकड़े जो हैं वो आए हैं, क्योंकि
2: खासकर जब दुनिया ऐसी चुनौतियों से गुजर रही थी,
3: हमने देखा
2: उस बीच हमारे देश का प्रदर्शन
3: जो है, 2-2.5 महीना जो है, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था ये. तो उस दौर में, और अगर आप आंकड़े भी देखें जीडीपी के, तो निवेश में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कहना चाहिए सेक्युलर ग्रोथ है. अगर आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में भी जो एवरेज ग्रोथ चल रही है उसी हिसाब से है. तो आंकड़े जो हैं बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही बेहतर आंकड़े हैं और उम्मीद से बहुत ही बेहतर आए हैं, क्योंकि ये आशा नहीं थी कि ये क्वार्टर जो है हमारा इतना मजबूत रहेगा.
0: एंड द सर्विसेज सेक्टर एज ऑलवेज वी डू
3: सर्विसेज सेक्टर हैज ऑलवेज डन वेल एंड सो इट हैज रिमेन्ड यू नो इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल. बट आई थिंक द important or I think the fact which is leaping out is you know how investment has grown and how it is doing now. Indications are that maybe you know private investment is starting to show some positive signs. So which is a very positive indication coming out from the data.
2: जी, खबरों और चर्चा का सिलसिला तो चलता रहेगा. अभी चले अगले कॉलर के पास. दिल्ली से सतपाल सिंह हमारे साथ है. सतपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: नमस्कार जी.
2: नमस्कार
3: सतपाल जी.
0: जी सवाल पूछें.
4: मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तो जो अमेरिका और ईरान का जो ये चल रहा है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है काफी टाइम से, 6 महीने हो गए हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर भी आगे चल सकता है इस सिचुएशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस कैसे रहने वाले हैं अगले 6 महीने में?
3: सतपाल जी, देखिए जो

0: जियोपॉलिटिकल संकट है वो तो हमने आज भी देखा, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया में। वहाँ पर समाधान जो है एक कहना चाहिए जैसे ड्यूरेबल पीस जो है वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आपने कहा कुछ एक क्षेत्र, अगर हम देखें आज के हमारे GDP के आंकड़े आए हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है इकॉनमी का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आगे जाने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है तो क्रेडिट का डिमांड रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र आप देख सकते हैं, सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्चा कर रही है तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं, डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, डिफेंस में आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जाती है कि ये आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे। आपने कहा गोल्ड जो है, चूँकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से चल रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप उसको देखिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो।
1: राइट, वी कनेक्ट टू भोपाल नाउ एंड शंकर जी हैज जॉइंड अस। यस शंकर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या
2: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, माय क्वेश्चन इज अबाउट निफ्टी व्हिच हैज बीन होवरिंग एट 24,000 फॉर लास्ट 3 years कंसेक्यूटिवली, 24, 25 एंड नाउ 26. The major reason could be FII is pulling out, and FII has pulled out because they fear that dollar will rise and they have to withdraw in dollar, and dollar will rise because of the international situation. So in this scenario, and also we have imposed, you know, there are dollar fluctuation ke alawa ek aur problem hai ki they are taxed here at 12.5% on long term capital gain and short term capital gain. Isn't it time to for government to think something about this, because okay, economy is doing well, but market is not performing, so it is not reflecting in our countries, you know, one of the major factor which is basically indicator.
0: Very interesting question, Shankar ji. You know, a lot of investors have been representing to the government, but we saw they did, you know, give some relaxation with regard to investment for foreign portfolio investors in government securities. You know, it's a wider issue. Taxation is a wider issue, and there is a give and take. There is a lot of demand. Government has to carry out a lot of social expenditure. So I'm sure if they feel compelled to take this decision, they will at some juncture. I'm sure the policymakers are examining it.
3: Ji, agle caller hai Kolkata se Atanu Saha. Swagat hai aapka, sawal puchhe.
4: Good evening, sir. Good evening to everybody. Good evening to Market Mantra, sir. My question is, ma'am, this is hedging against market volatility other than gold. What would be, ma'am? Thank you.
3: और क्या हो सकता है?
0: बिल्कुल, आप जो हैं अगर मार्केट के हिसाब से हेज करना चाहें तो आपको कम रिटर्न्स पे बैंक्स देखने पड़ेंगे, FDs देखने पड़ेंगे. You actually have to look at a more balanced portfolio in which you have, you know, all kinds of instrument as mix, which will give you some hedge against very sharp fluctuations or very sharp fall in markets.
1: All right, let's go ahead with some more news. 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, that's ISP, recorded year-on-year expansion in June 2026, with 8 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial, ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, today, real estate led the pack with growth of 24.7%, followed by retail trade at 18%. Wholesale trade grew by 15.1%, administrative and support services rose 14.4%, and IT and computer related services increased 13.5%. Meanwhile, air transport was the only subsector to contract, falling 6% from a year earlier. Moving ahead, the government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information

0: Technology, Ashwini Vaishnav said this while addressing the media in New Delhi today. After releasing the notifications for all the six pillars of the Semicon India Program 2.0, Mr. Vaishnav noted that there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
1: इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने आज सेमीकॉन 2.0 की आधिकारिक अधिसूचना का स्वागत किया। ये कार्यक्रम सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि सेमीकॉन 2.0 का व्यापक दृष्टिकोण भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता को काफ़ी मजबूत कर सकता है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और लालिमा, एक खबर जो अभी हमने आपने पढ़ी थी आईएसपी की, उस पर शायद हमें कुछ और गौर करने की जरूरत है। दीपशिखा, क्या कहना है आपका?
2: देखिए, हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे। सर्विस क्षेत्र जो है काफी रोबस्ट स्थिति में है, उसका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, बेहतर कर रहा है। ये इंडेक्स जो है अभी थोड़ा नया इंडेक्स है, इसका ट्रायल पीरियड ही चल रहा है,
1: जी।
2: तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट हाँ, काफी हद तक कैप्चर करता है ये सर्विस क्षेत्र का परफॉर्मेंस।
1: अच्छे संकेत
2: तो है। अच्छे संकेत हैं।
0: ऑल राइट, नाउ वी आर जॉइंड बाय अमित झा फ्रॉम दिल्ली। जी अमित जी, सवाल पूछिए। जी
3: हाँ, नमस्कार लालिमा मैम, आपका नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
3: आप रेनबो पे आते हैं तो अच्छा लगता है, हिंदी बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपका।
0: जी थैंक यू।
3: दीपशिखा मैडम से नमस्कार। मैडम
2: जी नमस्ते। अमित जी बताइए।
3: मैडम, आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे जीडीपी का आंकड़े पे तो आप लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब हमने टारगेट ले रखा है, तो क्या ये जीडीपी का वृद्धि दर इतने प्रतिशत के हिसाब से हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे, या वृद्धि दर और तेज करने की जरूरत है? अगर है तो किन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस करना? धन्यवाद।
2: अमित जी, देखिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए चहुमुखी विकास जरूरी होगा। विकसित देश बनने के लिए आपको वृद्धि, ग्रोथ तो चाहिए ही, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया हुआ है और इस दिशा में काफी काम किया जा रहा है।
1: जी, अगली खबर है अब एशियाई बाजारों की। एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 1% पढ़कर बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 0.1% नीचे आ गया।
0: And let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices rose over 3% today amid renewed geopolitical tensions. United States struck Iranian military targets on Larak Island in the Strait of Hormuz last night, and Tehran said it had retaliated. Brent crude was trading 3% up at $90.78 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% higher at $86.31 per barrel when reports last came in.
1: और हाँ, सोने और चांदी का हाल तो देखे, लेकिन दीपशिखा, ये जो अभी लालिमा बता रही थी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बातें, जब तक लगता है जो अशांति है, और हम अभी पश्चिम एशिया की बात करें, उससे भी पहले से अगर हम देखें तो जो सीधे हमारे क्रूड सप्लाई को उतना प्रभावित नहीं कर रहा था रूस और यूक्रेन, उसके बाद और अभी ये पश्चिम एशिया तो खैर पता नहीं, रह रह कर ये चल ही रहा है। इसके साथ लगता है अब कहाँ, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें, जितनी लोगों को आशंकाएं थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतनी क्राइसिस हो जाएगी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
2: बहुत। आप देखिए, जो जीडीपी के आंकड़े हैं, इसमें इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। आप देखिए, सप्लाई चेन हमारी, उसको बना के रखना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उनका सप्लाई जो है, उनके इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, हॉर्मुज से आता है, उस क्षेत्र से आता था।

0: तो उसके बावजूद हम जो है सप्लाई कायम रख पाए, अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट दे पाए, और इसीलिए अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, खड़ी हुई है। और एक बहुत ही गहरा संकट था उस वक्त, अब तो हालांकि अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये संकट जो है उस हद तक थोड़ा सप्लाईज वहाँ से आने लगा है, तो हो सकता है कि आगे जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत बने, आगे चलकर
1: बेहतर प्रदर्शन करें।
0: हालांकि मॉनसून को लेके आशंकाएं हैं कि कंजम्पशन इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अब स्प्रेड जो है काफ़ी हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम शायद अगला क्वार्टर भी हमारा उतना ही मजबूत रहे।
2: एंड यू थिंक दीपशिखा, वी डिड द वाइज थिंग टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ ऑयल बिकॉज ऑफ द स्टिकी पॉइंट एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट फॉर मेनी अदर थिंग्स विद इम्पोर्ट, वी जस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मूव टू अदर कंट्रीज एंड नॉट गॉट स्टक एट वन और टू एज बिफोर।
0: एब्सोल्युटली लालिमा, एंड आई थिंक दिस इज वॉट इंडिया डिड। You know, we are trying to cut dependence on single source of supply, not just for energy, but for all raw materials. And that is what government is also advising, suggesting to the industry, that they should not be dependent on single source for their supplies. So have a wider basket of suppliers, so that if something happens to one part of, you know, in one area of geography, your supplies are still sort of remain.
2: Yes.
1: और देखिए सोने चांदी का हाल, भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2.3% से ज्यादा गिरकर 155,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2.7% नीचे 237,199 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और दीपशिखा, आज वक्त इतना ही है, नहीं तो सवाल और भी हैं चर्चा करने के लिए, विषय भी बहुत सारे हैं।
0: धन्यवाद सुबोध जी,
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जीडीपी के आंकड़े जो हैं वो वैसे ही आई थिंक अपलिफ्ट कर रहे हैं,
1: सबका मूड अच्छा है।
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100, इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोज बाय 7.8% in first quarter of current financial year, and global crude oil prices surge. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself Lalima Aneja Dang and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं रितिका स्वागत करती हूं आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत।

तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, राखी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन समेत एससीओ के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित

0: किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दसलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामयुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted

कहते हैं कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर गुजरते साल के साथ और गहरे और खूबसूरत होते जाते हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतर जाती हैं, और कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होती है उनकी कहानी। आज ऐसी ही एक कहानी का जश्न है। आज एक ऐसे साथी का जन्मदिन है जो पिछले 25 वर्षों से आपकी सुबहों, आपकी दोपहरों, आपकी शामों और आपकी रातों का हिस्सा बना हुआ है। जी हाँ, आज FM गोल्ड का जन्मदिन है। 1 सितंबर 2001 वो तारीख जब FM गोल्ड ने अपने सफर की शुरुआत की थी, और आज 1 सितंबर 2026 देखते ही देखते इस सफर को पूरे हो गए हैं 25 साल। 25 साल यानी ढाई दशक की यादें, हजारों गीत, अनगिनत किस्से, सैकड़ों आवाजें और सबसे बढ़कर आपका साथ। आज FM गोल्ड के इस खास दिन पर हम सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मना रहे, हम मना रहे हैं इस रिश्ते का जश्न।

जो 25 वर्षों से एफएम गोल्ड और उसके श्रोताओं के बीच बना हुआ है। आज अपनी 25वीं सालगिरह पर हम अपने सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस रिश्ते को इतने वर्षों तक प्यार दिया। ये रिश्ता यूं ही बना रहे, गीत यूं ही बजते रहें और एफएम गोल्ड की आवाज हमेशा आपके दिलों तक पहुंचती रहे। वक्त हुआ है 12:12 और 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

धरती कहे पुकार के फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चल कहीं दूर निकल जाएं। इस पंक्ति में जैसे रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ी देर दूर जाने, सुकून के किसी अनजान ठिकाने को तलाशने की चाह छिपी है, जहां ना कोई जल्दबाजी हो ना कोई शिकवा, बस साथ हो खुला आसमान हो और रास्तों में बिखरी हुई खामोशियां। कभी कभी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए सचमुच कहीं दूर निकल जाना चाहिए अपने ही ख्यालों के साथ। आपने सुना दूसरा आदमी फिल्म का गाना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

कामचोर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कुछ रिश्ते जिंदगी में यूं ही नहीं होते, वो हमारे सफर को अर्थ देते हैं, हमारी खामोशियों को आवाज और हमारी तन्हाइयों को एक खूबसूरत साथ। सोचिए, अगर उस सफर में कोई अपना हमराही ना होता तो शायद रास्ते वहीं होते, मंजिलें भी वहीं। मगर सफर में वो खूबसूरती कहाँ होती, तभी तो दिल से निकलता है, ऐसा ना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही अगर तुम न होते। आपने जमीन आसमान फिल्म का गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जब किसी के चेहरे में चांदनी, उसकी जुल्फों में शाम और उसकी आंखों में समंदर नजर आने लगे, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर इसी सवाल से होती है, आखिर ये खूबसूरत अजनबी है कौन? और शायद इसी मासूम जिज्ञासा में प्यार की पूरी कहानी छिपी होती है। सागर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

ये प्यारा सा गीत रिश्तों की उस अनकही डोर की बात करता है जिसे नाम देना आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते बिना किसी वादे और बिना किसी पहचान के भी दिल के बेहद करीब हो जाते हैं। बस साथ होने का एहसास ही उन्हें खास बना देता है, एक ऐसा बंधन जो अनजाना होकर भी मन को अपना सा लगता है। एक दूजे के लिए फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हेलो, मैं हूं नासिर अब्दुल्ला। आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 पर। आज FM गोल्ड का बर्थडे है। आप सब सुनने वालों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकिन समेत SCO के कई नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का

0: समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलुओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारों के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर होता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि हुई है और 2,911 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बताया है। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

जिंदगी से भरी ये आंखें जब सामने हों तो उदासी भी ठहरने का बहाना ढूंढने लगे। इन आंखों की चमक में ऐसा जादू है कि इंसान तमाम शिकवों को भूलकर फिर से जीने की वजह तलाशने लगे। सफर फिल्म का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदेवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

आनंद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। कभी कभी किसी की मौजूदगी हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाती है कि उसके बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। मन कहीं ठहरता नहीं, दिल किसी और बात में लगता नहीं, बस एक ही एहसास भीतर गूंजता रहता है, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना।

नदिया किनारे की वो प्यारी सी शाम, हाथों में खनकते कंगन और दिल में किसी अनाड़ी साजन की मीठी सी उलझन। प्रेम शायद ऐसा ही होता है, जहां छोटी सी बात भी याद बन जाती है और हर खनक में किसी अपने की आहट सुनाई देने लगती है। अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर बोल रहा हूँ। मैं सभी बहनों और भाइयों को और खास तौर से आकाशवाणी एफएम गोल्ड दिल्ली के उन सभी साथियों को जो आपके लिए इतने खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं, उन्हें भी एफएम गोल्ड के इस जन्मदिन के खास मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और कहता हूं कि आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड यूं ही आवाज की दुनिया की बुलंदियों की सीढ़ियां जो है ना चढ़ता ही जाए।

वक्त हुआ है 1:30 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किसी के आने का इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है। आंखें राह देखती हैं, दिल उम्मीद सजाए बैठा रहता है और वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। बस मन यही पूछता रहता है, आखिर वो खास पल कब आएगा, जब इंतजार खत्म होगा और सपनों को उनका अपना हमसफर मिल जाएगा। आराधना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

दिल भी बड़ी अजीब चीज है, इसे हमेशा अकेला रख पाना कहाँ मुमकिन होता है। जिंदगी की राह में कभी कोई अपना बनकर मिलता है, कभी कोई अनजान दिल के बेहद करीब आ जाता है, और फिर लगता है कि शायद किसी न किसी से कभी न कभी कहीं ना कहीं दिल लगाना ही पड़ता है। कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। SH बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

कभी किसी गीत में शरारत होती है, कभी नज़ाकत और कभी किसी को करीब बुलाने की मासूम सी बेचैनी। ये गीत भी उसी चंचल अंदाज का खूबसूरत उदाहरण है, जहां सितारों से सजी शाम, किसी हसीन चेहरे की आहट और दिल की बेकरारी मिलकर माहौल को और भी रंगीन बना देती है। बस दिल कह उठता है, जरा नजदीक आइए, शायद इस बेचैन दिल को कुछ चैन मिल जाए। प्रिंस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में।

इस रंग बदलती दुनिया में हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में दिखाई देता है। जमाना बदलता है, लोगों के अंदाज बदलते हैं और कभी कभी नीयत भी बदल जाती है। इसलिए जरा संभल कर चलिए जनाब, क्योंकि खूबसूरती भले ही सादगी से सजी हो मगर दुनिया की नजर की नीयत हमेशा साफ हो ये जरूरी नहीं। राजकुमार फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

गाइड फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन, एसएससीओ के कई नेता ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वही राष्ट्रपति

0: पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। कोलकाता में कल चार संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठनों ने शहरयार कबीर, प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत, वकील राणा दास गुप्ता और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की। संगठनों ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 के राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the SCO. Prime Minister Narendra Modi, along with the leaders of SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on Monday evening. the biennial event

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। रात सुरमई सी है, आसमान पर चांद की हल्की सी रोशनी है और हवाओं में जैसे दिन भर की थकान को सुकून में बदल देने की फुर्सत। दिन की भागदौड़ थम गई है, आवाजें काफी धीमी हो गई हैं और दिल को अपने ही ख्यालों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिल गया है। ऐसी रातों में पुराने फिल्मी गीत और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। कोई धुन बीती हुई यादों का दरवाजा खोल देती है, कोई बोल चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और कई गीत चुपचाप दिल की बात कह जाते हैं।

वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, मगर कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। कभी किसी गीत की धुन उन्हें फिर से जिंदा कर देती है, कभी कोई पुरानी तस्वीर उन दिनों की खुशबू लौटा लाती है। सच तो यही है, बीते हुए दिन लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं। पुराना मंदिर फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। इसे लिखा अमित खन्ना ने और संगीत दिया अजीत सिंह ने।

इस रात की सुबह नहीं, फिल्म से ये गाना आपने सुना। एमएम करीम और चित्रा की आवाज में निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया एमएम करीम ने।

नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। आप सभी सुनने वालों को FM गोल्ड के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

वक्त हुआ है 2:32 और ठीक 45 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किसी की याद ने, किसी के इंतजार ने, कुछ अधूरे ख्वाबों ने, कुछ अनकहे प्यार ने हमें खामोश रहने कहा दिया, हर एहसास को अल्फाज देकर शायर बना दिया। ये इश्क नहीं आसा फिल्म से आपने ये गाना सुना। अनवर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कभी कभी किसी अपने की आवाज में छुपे दो मीठे बोल ही दिल को सुकून देने के लिए काफी होते हैं। मोहब्बत में हर बार इजहार के लिए लंबे लंबे जुमलों की जरूरत नहीं होती। कभी एक प्यारी सी आवाज, एक अपनापन भरा लहजा और दो मीठे शब्द ही दिल को छू जाते हैं। सोहणी महिवाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।

कुछ यादें ऐसी होती हैं जो रात की खामोशी में और भी गहरी हो जाती हैं। नींद आंखों से दूर रहती है और बीते हुए लम्हे बार बार दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। फिर पूरी रात कभी यादों में, कभी खामोशियों में और कभी नम आंखों की झिलमिलाहट में गुजर जाती है। गमन फिल्म से आपने ये गजल सुनी छाया गांगुली की आवाज में। इसे लिखा मखदूम मोहिउद्दीन ने और संगीत दिया जयदेव ने।

अर्थ फिल्म से आपने ये गजल सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। वक्त हुआ है 2:58 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना गोयल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति

0: में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाके अब चपेट में आ गए हैं, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. Prime Minister Narendra Modi, along with the other SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on Monday evening. The biennial event celebrates the rich sporting traditions, culture and heritage of nomadic civilizations, bringing together countries in a vibrant celebration of their shared culture. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire accident that occurred in Kaushambi district of Uttar Pradesh. At least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, President

कुछ रिश्ते अल्फाजों के मोहताज नहीं होते, कुछ लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, रात के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपकी हम सफर दोस्त अर्चना गोयल। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम हमराही, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आज है एफएम गोल्ड का जन्मदिन। हर साल 1 सितंबर को हम एफएम गोल्ड का जन्मदिन मनाते हैं। 25 सालों का ये सफर बेहद शानदार रहा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको नित नए संगीत के कार्यक्रमों से रूबरू कराते रहें। फिलहाल आज की रात उनके नाम, जिनकी याद आते ही चेहरे पर मुस्कान भी आती है और आंखों में हल्की सी नमी भी। आज बात होगी उन खूबसूरत पलों की जो बीत तो गए मगर दिल से कभी नहीं गुजरे।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी बेटी। कहते हैं ना कि पहली मुलाकात कभी पुरानी नहीं होती, कितने साल बीत जाएं, लेकिन उस दिन की जगह वो मौसम, वो कपड़े, वो मुस्कुराहट, सब कुछ याद रहता है। किसी को याद रहता है कि पहली बार उसने क्या कहा था, किसी को याद रहता है कि वो सामने आया तो दिल की तितेज धड़कने लगा था। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहली मुलाकात की पूरी बातचीत याद नहीं रहती, बस सामने वाले का चेहरा याद रहता है। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी ऐसी ही होती है, बातों से नहीं, एहसास से।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था, फिल्म थी महबूब की मेहंदी।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: मैं हूँ आपका दोस्त शम्मी नारंग। आज हिंदुस्तान के जाने माने चैनल एफएम गोल्ड की सालगिरह है। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से एफएम गोल्ड की पूरी टीम को हैप्पी बर्थडे एफएम गोल्ड।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: दोस्तों, कभी कभी किसी की हंसी याद आती है, कभी उसका यूं अचानक चुप हो जाना, कभी साथ चलते हुए हाथों को छू जाना, और कभी बस यूं ही एक दूसरे के सामने बैठकर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना। शायद ऐसे ही कुछ पल हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ठहर जाते हैं।

तेरी यादों की खुशबू कुछ ऐसी बसी है दिल में, तेरी यादों की खुशबू कुछ ऐसी बसी है दिल में, जैसे रात की रानी महकती हो चांदनी में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और हमराही के साथ मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: वो मुलाकात कुछ ऐसी थी कि भूल ना पाए। वो शख्स सामने था और हम खुद को भूल गए। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी पहली मुलाकात है तो जरा आंखें बंद कीजिए और उस शाम को फिर से महसूस कीजिए। दोस्तों, कभी कभी ये एहसास ही पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है।
2: रेशम की डोरी

कहते हैं कि प्यार बड़े बड़े वादों से नहीं मिलता। कभी प्यार मिलता है एक कप चाय में, कभी प्यार मिलता है भीड़ में चलते हुए हाथ थाम लेने में, और कभी किसी की पसंद का गीत बिना पूछे चला देने में। यही कुछ छोटी छोटी सी प्यारी सी बातें हैं जो बाद में बड़ी यादें बन जाती हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म वासना से। दोस्तों, कुछ शामें भी कमाल की होती हैं। सूरज ढल रहा होता है और आसमान का रंग बदल रहा होता है, हवा में एक अजीब सी नरमी होती है, और अगर उस शाम साथ हो कोई अपना तो लगता है जैसे दूरी दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई है। शायद आपने भी कभी ऐसी शाम देखी होगी, साथ बैठे थे, बातें बहुत थी मगर कहने को कुछ नहीं। वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही जाए तो छोटी लगती हैं, लेकिन महसूस की जाए तो पूरी दुनिया जितनी बड़ी।

बारिश का मौसम हो और किसी की याद ना आए, ऐसा तो शायद ही होता है। बारिश की हर बूंद जैसे कोई पुरानी कहानी लेकर आती है। आज फिर बारिश ने कुछ याद दिलाया है, आज फिर बारिश ने कुछ याद दिलाया है, भीगी मिट्टी ने तेरा नाम दोहराया है।

0: बोलो।
1: ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा।
2: रात के इस पहर में शायद सबसे ज्यादा याद आती है, काश काश उस दिन थोड़ी देर और साथ बैठते, काश उस आखिरी मुलाकात में जल्दी न करते, काश वो बात कह देते जो दिल में रह गई, काश उस आखिरी मुस्कुराहट को थोड़ा और देर तक देख पाते। लेकिन जिंदगी में काश का कोई कैलेंडर नहीं होता, बीते पल कभी वापस नहीं आते।

रही। अपनी दोस्त अर्चना गोयल को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का 6वां संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत का 87 सदस्य दल शामिल है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकिन समेत एससीओ के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना और दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे भी इस अभियान में सहयोग कर रहा है। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन के दौरान कल श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे अधिकारी स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4वां भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region, reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy, calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce. Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Today, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the SCO. Prime Minister Narendra Modi, along with the other SCO leaders, participated in the official opening ceremony of the 6th World Nomad Games in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. On Monday evening, the biennial event celebrates the rich sporting traditions, culture and heritage of nomadic civilizations, bringing together countries in a vibrant celebration of their shared culture. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire accident that occurred in Kaushambi district of Uttar Pradesh. At least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, President conveyed condolences to the families of those who lost their lives in this unfortunate incident. President Murmu also prayed for the speedy recovery of the injured. Prime Minister also expressed grief over the loss of life in the mishap. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year against the growth of 6.9% during the same period of the previous financial year. The Ministry of Statistics and Program Implementation yesterday released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सवेरे के 4:11 और 8 सेकेंड और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा। मैं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। अरुणिमा एक ऐसी सुबह जो अपने साथ सिर्फ उजाला ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी लेकर आती है।

कहते हैं हर सुबह इस बात का संकेत है कि जिंदगी में हमें कुछ और मौका दिया है, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा सोचने का और कल से बेहतर बनने का। तो क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत गीत से की जाए।

दोस्तों, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है। इसलिए बीते कल की गलतियों को बोझ बनाकर मत रखिए, उन्हें अनुभव बनाइए और आज को एक नई शुरुआत दीजिए।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:29:51। कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं हूं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं विभोर चौधरी और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 पर। आज एफएम गोल्ड का बर्थडे है, आप सभी को शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे।

दोस्तों, सुबह होने से पहले का ये समय हमें बहुत सुंदर सीख देता है। सूरज हर दिन उगता है, चाहे कल का दिन कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो। वो कभी ये नहीं कहता कि कल बादल थे इसलिए आज नहीं निकलूंगा। वो बस निकलता है, अपनी रोशनी बिखेरता है और दुनिया को फिर से जगाता है। हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ना।

आज अपने मन से बस इतना करिए, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने प्रयासों पर विश्वास रखता हूँ और आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। दोस्तों, जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ों में से है, एक है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है।

कई बार हम अपनी क्षमताओं पर इसलिए शक करने लगते हैं क्योंकि किसी और ने हमें कम समझ लिया। लेकिन याद रखिए, दूसरों की राय आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, और आपको अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है जो कहती है एक बार कोशिश करके तो देखो। हो सकता है पहली कोशिश में सफलता ना मिले, दूसरी में भी ना मिले, लेकिन हर कोशिश आपको उस मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाती है।

दोस्तों, आज की दुनिया में हम सबसे ज़्यादा परेशान शायद इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों की ज़िंदगी से करने लगते हैं। याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। पेड़ और फूल एक ही समय पर नहीं खिलते। किसी की सफलता जल्दी आती है और किसी की देर से। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कल से तुलना कीजिए। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं।

अक्सर हम कहते हैं कि कल से मेहनत करेंगे, कल से व्यायाम करेंगे, कल से खुश रहेंगे, कल से अपने लोगों को समय देंगे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा कल से नहीं होती दोस्तों, ज़िंदगी तो आज से है। इसलिए आज किसी अपने को फ़ोन कीजिए, आज किसी को धन्यवाद कीजिए, आज किसी की मदद कीजिए, आज अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, और सबसे ज़रूरी आज खुद को माफ़ कीजिए। आप इंसान हैं, आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन आपकी गलती आपकी पूरी पहचान नहीं है।

दोस्तों, आपके जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह वही हो सकती है जिस सुबह आपने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। तो मुस्कुराइए, आज का दिन आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आज आप अपने लिए एक नई उम्मीद बन जाएं।

और अब मैं अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ इस विश्वास के साथ कि आपका आज आपके कल से बेहतर हो। आपसे फिर मिलेंगे 5:10 पर कार्यक्रम भोर सुहानी में, क्योंकि अब वक्त हुआ है समाचारों का। आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने बिश्केक में वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमैड गेम्स का 6ठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत का 87 सदस्य दल शामिल है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन समेत SCO के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे भी इस अभियान में सहयोग कर रहा है। नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड के उद्घाटन के दौरान अधिकारी स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। इस मौके पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी स्पेशल ट्रेन को भी रवाना किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ में भुटकेशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टीन स्नाइडर इस मंच पर की सह अध्यक्षता करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से शुरू होने वाले 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में

हे प्रभु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया, कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा करने का और किसी के जीवन में मुस्कान बनने का। नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रही हैं भोर सुहानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, मैं आज अर्चना गोयल आपके साथ लेकर चल रही हूँ कुछ खूबसूरत बातें प्रकृति की, जिंदगी की, उम्मीद की और उस सकारात्मक सोच की जो हमारे पूरे दिन को बदल सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत ईश प्रार्थना से, तो आइए सुनते हैं।

सुबह का समय अपने आप में एक संदेश लेकर आता है। आकाश का बदलता रंग कहता है हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाट कहती है कि जिंदगी में सुर हमेशा तलाशे जा सकते हैं। ओस की बूंदें कहती हैं कि खूबसूरती बड़ी चीज़ों में नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। और सूरज की पहली किरण जैसे कहती है उठिए आज फिर से शुरुआत कीजिए।

आज की सुबह का एक छोटा सा विचार। हर दिन जिंदगी हमें एक खाली पन्ना देती है, ये हम पर निर्भर करता है कि उस पर शिकायत लिखनी है या उम्मीद की एक खूबसूरत कहानी। हम अक्सर बीते हुए कल को लेकर परेशान रहते हैं, किसी ने क्या कहा, क्या नहीं मिला, कहाँ गलती हुई, कौन हमारे साथ नहीं रहा। लेकिन सुबह हमें याद दिलाती है कि बीता हुआ कल हमारी किताब का एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी और मैं हूँ आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:27 और ठीक 12 सेकेंड और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: हेलो एवरीवन, मैं हूं हैदर रिजवी और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आज FM गोल्ड का बर्थडे है, आइए मिलकर मनाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: प्रकृति हमारी सबसे खूबसूरत शिक्षक है। एक पेड़ को देखिए, वो धूप में खड़ा रहता है, बारिश सहता है, आंधी झेलता है, फिर भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जीवन में कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन अगर हमारी सोच की जड़ें मजबूत हैं तो हम हर मौसम में खड़े रह सकते हैं। इसे कहते हैं किसी के काम आना।
1: शील, शील, कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखे, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।